नमस्कार अम्बाला, आप सभी श्रोताओं का स्वागत और अभिनंदन है आज के प्रसारण में। आज है 27 सितंबर 2026 दिन रविवार, अश्विन कृष्ण पक्ष प्रतिपदा 2083 विक्रम संवत। अम्बाला में सूर्योदय होगा 6:14 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:13 पर।

उजाले से भरपूर होकर इस आत्मा इस मन को रोशन करके जीवन सफर को तय करना जरूरी है। इसी से धरती का रूप निखरेगा, ये धरती जन्नत बनेगी। इसी में ही सारी मानव जाति का

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

रेडियो वितस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज पर घर घर की आवाज रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर

0: ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਰਾਮ ਰਾਮ। ਤੁਮ ਸੁਣ ਰਹੇ ਰੇਡੀਓ ਵਿਤਸਤਾ ਅਮ ਸਫ਼ਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾ। ਮੈਂ ਹੂੰ ਥਾਰੇ ਸਾਥ ਥਾਰੀ ਰੇਡੀਓ ਸਖੀ ਨੇਹਾ ਦਾਕੜ, ਔਰ ਥਾਰਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੂੰ ਹੂੰ 90.0 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਕੇ ਕਾਰਿਆਕ੍ਰਮ ਮਾ। ਮਾਰਾ ਆਜ ਕਾ ਕਾਰਿਆਕ੍ਰਮ ਆ ਆਓ ਗਾਓ ਚਲੇ। ਆਜ ਹਮ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਰਜਾਪੁਰ ਖੇਲਣ ਗਾਂਵ ਮਾ, ਜਹਾਂ ਆਜ ਹਮ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੋ ਰਾਮ ਰਾਮ ਸਰਪੰਚ ਜੀ, ਆਪ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਬਤਾਓ ਥੋੜਾ ਸਾ।
1: ਮੇਰਾ ਗਾਂਵ ਰਜਾਪੁਰ ਔਰ ਨਾਮ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਗਾਂਵ ਪੰਜਾਬ ਮੈਂ ਪੜਤਾ ਹੈ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੋਹਾਲੀ ਹੈ ਔਰ ਤਹਿਸੀਲ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਹੈ। ਔਰ ਖੇਲਣ ਦੋਵੇਂ ਗਾਂਵ ਇਕੱਠੇ ਆਏ 1983 ਮੈਂ। ਸਰਗੀ ਸ਼੍ਰੀ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਜਾਪੁਰ ਕੀ ਪੰਚਾਇਤ ਅਲੱਗ ਕਰਾ ਦੀ, ਔਰ ਜਬ ਸੇ ਹਮਾਰੀ ਔਰ ਖੇਲਣ ਕੀ ਅਲੱਗ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤ ਬਣਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਟਰਨ ਵੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੋਣੇ ਵਾਲਾ, 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਹਮਾਰਾ ਗਾਂਵ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਤਮਾਈ ਗਾਂਵ ਹੈ ਔਰ ਯਹਾਂ ਕੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਨੇਚਰ ਕੇ ਹੈ ਸਭੀ। ਔਰ ਇਹ ਅੰਬਾਲਾ ਕੈਂਟ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪੜਤਾ ਹੈ। ਅੰਬਾਲਾ ਕੈਂਟ ਕਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਲਾ ਲਓ, ਯਹਾਂ ਸੇ ਕੋਈ 8-1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੇ ਕਰੀਬ ਪੜੇਗਾ। ਔਰ ਪੜਤਾ ਹੈ ਹਮਾਰਾ ਗਾਂਵ ਪੰਜਾਬ ਮੇਂ ਹੈ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੋਹਾਲੀ ਹੈ। ਬਸ ਯਹੀ ਹੈ ਗਾਂਵ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੋ ਪਹਿਚਾਣ ਤੋ ਇਤਨੀ ਕੀ ਹੈ।
0: ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਂਵ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਤਾਇਆ ਵੀ ਕੈਂਟ ਕੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਆ, ਤੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਕੀ ਤਹਿਸੀਲ ਆ ਜਾਂ ਆਪਕਾ ਡਾਕਖਾਨਾ, ਤੋ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਮਾਂ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਮਾਂ? ਮੈਂ
1: ਪੰਜਾਬ ਮੇਂ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹਮਾਰਾ ਖਾਣਾ ਦਾਣਾ ਤੋ ਹਰਿਆਣਾ ਸੇ ਹੈ, ਖਾਏ ਕਮਾਏਂਗੇ ਤੋ ਹਮ ਹਰਿਆਣਾ ਸੇ, ਔਰ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਮ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਮੇਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੇਂ ਤਹਿਸੀਲ ਪੜਤੀ ਹੈ ਡੇਰਾਬੱਸੀ, ਯਹਾਂ ਸੇ ਤਕਰੀਬਨ 35 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਔਰ ਮੋਹਾਲੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ ਜੋ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੇ ਕਰੀਬ ਪੜ ਜਾਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਜਿਸ ਸਭੀ ਗਾਂਵ ਵਾਲੇ, ਏਕ ਮੇਰਾ ਹੀ ਗਾਂਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜੋਧਪੁਰ ਹੈ, ਮਾਲਣ ਹੈ, ਅੰਟਾਲਾ, ਸਾਰੰਗਪੁਰ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਗਾਂਵ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟਾ ਸਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਗਾ ਤਾਂ 35 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਧਰ ਪੜ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਤੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਹੀ 5-6 ਗਾਂਵ ਕੋ ਇਸ ਕੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਰੇ ਕੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਹਮਾਰੀ ਕਿ ਹਮਾਰਾ ਅਗਰ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਕੇ ਸਾਥ ਟੱਚ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੋ ਸਾਰੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹਮਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜੋ ਵੀ ਹਮਾਰੀ ਜੀਨਸ ਹੈ ਜਾਂ ਸੌਦਾ ਪੱਤਾ ਘਰ ਕਾ ਖਰੀਦਣਾ ਤੋ ਹਰਿਆਣੇ ਸੇ ਖਰੀਦਣਾ, ਹਮਨੂੰ ਸਾਰੀ ਵਾਰ ਹਮਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਮੇਂ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਮ ਕੇ ਲੀਏ ਅਲੱਗ ਸੇ ਟਾਈਮ ਨਿਕਾਲਣਾ ਪੜੇਗਾ 35 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਣੇ ਕੇ ਲੀਏ, ਜਿਸ ਪੇ ਵਹੀਕਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਣੇ ਕੇ ਲੀਏ, ਔਰ ਫਿਰ ਖਰਚਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏਗਾ ਵਹੀਕਲ ਕਾ, ਔਰ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨਿਕਲ ਹੀ ਜਾਏਗਾ, ਯਹਾਂ ਜੋ 1 ਘੰਟੇ ਕਾ ਕਾਮ ਹੈ ਵਹਾਂ ਸੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੱਗਤਾ ਹੈ। ਹਮਾਰੀ ਯਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਸੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਸੇ ਯਹੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਅਭੀ ਹਮਾਰੀ ਸਾਰੇ 5-6 ਚੁਣ ਸੇ 10 ਗਾਂਵ ਪੜਤੇ ਹੈ, ਅਭੀ ਹਰਿਆਣਾ ਮੈਂ ਆਏ ਔਰ ਹਮਾਰਾ ਜੀਵਨ ਔਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਸੇ ਬਸ ਯਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਹਮਾਰੀ ਯਹਾਂ ਸੇ।
0: ਤੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਕਾ ਗਾਂਵ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਪੜਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਅੰਬਾਲੇ ਕੈਂਟ ਕੇ, ਤੋ ਆਪ ਨੂੰ ਆਣੇ ਜਾਣੇ ਮਾਂ ਕਿਤਨੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਕਾ ਗਾਂਵ ਪੰਜਾਬ ਮਾਂ ਪੜਾ, ਤੋ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਆ ਕਿਆ ਦਿੱਕਤਾਂ ਕਾ ਕਿਆ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੜਾ?
1: ਹਮਾਰੇ ਗਾਂਵ ਮੇਂ ਸਵੇਰੇ 1 ਟਾਈਮ ਬੱਸ ਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੇਂ ਕੋਈ ਚਲਾ ਜਾਏ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਾ ਰੱਖਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਾ ਰੱਖਿਆ।
0: ਜੈਸੇ ਘਰਾਂ ਮਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਕੇ ਹੀ ਹੋਵਾ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਂਵਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਪੜਨ ਜਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਔਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੋਵਾ, ਤੋ ਬੱਸ ਕੀ ਸਰਵਿਸ ਜਾਂ ਆਟੋ ਵਗੈਰਾ ਹੋਵਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੋ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਮਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਕਾ ਗਾਂਵ ਪੜਾ, ਤੋ ਅੰਬਾਲੇ ਕੈਂਟ ਜਾਣੇ ਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਵਿਧਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਮਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਕੀ ਤਹਿਸੀਲ ਵਗੈਰਾ ਜਹਾਂ ਵੀ ਵਹਾਂ ਜਾਣੇ ਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਵਿਧਾ?
1: ਸੁਵਿਧਾ ਤੋ ਅੰਬਾਲਾ ਕੈਂਟ ਜਾਣੇ ਮੈਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪੜਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਰੀ ਵਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਟੋ ਕੀ 1 ਘੰਟਾ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪੜੇਗੀ, 1.5 ਘੰਟਾ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪੜੇਗੀ, ਜਦ ਉਸਮੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈ ਤਬ ਚੱਲੇਗਾ ਆਟੋ ਵਾਲਾ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਮੇਂ ਤੋ ਕੋਈ ਬੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਟਾਈਮ ਬੱਸ ਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਹਮ ਚਲੇ ਜਾਂ ਵਹਾਂ ਤੋ ਆਪਣੇ ਵਹੀਕਲ ਸੇ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਜਾਏਗਾ 1500-2000 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ।
0: ਤੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬਤਾਇਆ ਵੀ ਮਾਰਾ ਗਾਂਵ ਪੰਜਾਬ ਮਾਂ ਪੜਾ, ਜਬਕਿ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਰਿਆਣੇ ਕੇ ਪਾਸ ਆ, ਤੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਕੇ ਤਹਿਸੀਲ ਆ ਔਰ ਆਪਕਾ ਡਾਕਖਾਨਾ ਔਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਆਪਕੀ ਪੰਜਾਬ ਮਾਂ ਪੜਾ?
1: ਪੰਜਾਬ ਮਾਂ ਪੜਾ।
0: ਤੋ ਆਪਕੀ ਤਹਿਸੀਲ ਕੌਣ ਸੀ ਜਗ੍ਹਾ?
1: ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਜੀ।
0: ਔਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਪਕੀ?
1: ਮੋਹਾਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਪੜਜਾ ਲਗਭਗ 35 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਔਰ ਮੋਹਾਲੀ 55 ਕਿਲੋਮੀਟਰ।
0: ਤੋ ਆਪਕੇ ਵਾਸਤਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਆ ਕਿਆ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਰੱਖੀ ਆ, ਥੋੜਾ ਆਪ ਉਸਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਬਤਾਵਾਂ।
1: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੋ ਫਿਲਹਾਲ ਤੋ ਕੋਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੀ ਤੋ ਕੋਈ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, बहुत ही दिक्कत है। पहली बात तो हमारे बच्चे इधर पढ़ने वास्ते जाते नहीं है तकरीबन, क्योंकि स्कूल जा जो वो भी 30 किलोमीटर से पहला नहीं पढ़ रहा कोई भी, और जो मान ले सरकारी काम है उसमें मजबूरी में जाना ही पड़ा। कोई अपने घर आते 2,000 रुपये खर्च कर जाओ, 2,500 खर्चो, जो मर्जी करो, और कोई पंजाब सरकार ने ऐसी कोई सुविधा नहीं। सुविधा जो बुढ़ापा पेंशन उनमें बीमारी के लोग एक किस्म से भेदभाव हो रहा। हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन 2,700 रुपये होगी, यहाँ जी 1,500 रुपये, वो भी टाइम पर नहीं मिलती। मान ले जो भी विधवा वगैरह सारी पेंशन में ही फर्क है, और जो अपना एग्रीकल्चर का मान लो सब्सिडी वगैरह देती है सरकार, उसमें भी फर्क है। पंजाब में तो नाम मात्र ही है सब्सिडी जिम्मेदार के लिए, सरकार पंजाब में हरियाणा में बहुत फर्क है अभी।
0: तो मतलब आपने बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है अभी वो गांव पंजाब में गया।
1: हाँ
0: तो जिस तरह यहाँ के बच्चे हैं, गांव के बच्चे, जिस तरह स्कूल में तो आसपास चल यहीं चले जा, तो कॉलेज में पढ़ने वास्ते उन्होंने अंबाला जाना पड़ा या कहीं डेरा बसी जाना पड़ा। तो कॉलेज में जाने वास्ते उनके पास कितनी सुविधा, ट्रांसपोर्ट की, बस सर्विस कितनी, ऑटो सर्विस कितनी है कॉलेज में जाने वास्ते?
1: गांव से ट्रांसपोर्ट की कोई सुविधा नहीं। एक सवेरे एक टाइम बस आती है हरियाणा रोडवेज की, उसमें ही कुछ बच्चे चले जाते हैं, कुछ जो रह जाते हैं वे अपने व्हीकल से जाते हैं या ऑटो से जाते हैं, और कोई साधन नहीं है। पंजाब सरकार का तो एक कोई भी नहीं, मतलब एक व्हीकल भी नहीं है यहाँ कोई आता हो। और पंजाब में ना ही बच्चे जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से कॉलेज 35 किलोमीटर है। बच्चा नहीं चाहता, अभी एक कॉलेज तो पढ़ रहा है सुनो 8 किलोमीटर, एक पढ़ रहा 35 किलोमीटर, वो 35 किलोमीटर क्यों जाएगा? तो तकरीबन 95% बच्चे यहीं पढ़ रहे हैं अम्बाला कैंट में अपने। और हरियाणा सरकार को तो हम बोल भी नहीं सकते, क्योंकि हमारा इन हिस्सेदारी तो हमारी पंजाब में है। हरियाणा को तो हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं अभी कोई ट्रांसपोर्ट, मतलब 2 बजे या 1 बजे वापिस गाँव के लिए भी लगा दे, जैसे सवेरे 1 है तो उसमें हरियाणा के भी कई गाँव पढ़ते हैं, ये बात नहीं है। पहले हम जाके भी आए एक दो जगह, आश्वासन दिया है, चलो भाई मतलब आम बंदा आवाज ही उठा सकता है, सरकार के साथ जबरदस्ती तो कर नहीं सकता। अब भी हमारी तो एक रिक्वेस्ट ही है सरकार से, ज्यादातर हरियाणा सरकार से ही करते हैं हम, क्योंकि यहीं हमारा सारा लेन देन है और सारा कुछ यहीं से है। अभी हमारे बच्चों के लिए एक दो तीन टाइम और बस लगा दे तो थोड़ी सी इनको सुविधा हो जाएगी।
0: तो आपने जिस तरह बताया भी मानू बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा, तो आप इस बारे में सरकार से क्या निवेदन करना चाहा, अभी सरकार हमारी किस प्रकार से सहायता कर सका?
1: देखो हम तो बहुत ज़्यादा मुश्किल में हैं, यहाँ से बॉर्डर पे हमारा गांव है, और हम तो अपनी पंजाब सरकार से भी रिक्वेस्ट ही करते हैं, और हरियाणा से भी, और केंद्र सरकार से भी रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, क्योंकि पंजाब सरकार ने नहीं कोई अपना ट्रांसपोर्ट का यहाँ से कोई सिस्टम कर रखा कभी कोई, जिससे बच्चे स्कूल जा सका थोड़ा सा, मतलब जब बच्चे पढ़ाएंगे यदि हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा तो थोड़ा सा पंजाब सरकार को भी ध्यान देना चाहिए कि मेरा एरिया कहाँ तक है, और उनको उनका फर्ज भी है और हमारी मांग भी है। अभी ये कम से कम जहाँ तक उसका एरिया पड़ता है वहाँ तक बस या कोई मिनी बस तो ऐसा कुछ हो जाए जहाँ से जाए इसका बंदा आसानी से कॉलेज अपना जो भी कचहरी का काम है। और हरियाणा से भी यही प्रार्थना करते हैं हरियाणा सरकार से के कोई मतलब 2-3 टाइम बस और लगा दे, और इस जो रूट हमारा गांव जिस रूट पे पड़ता है इस पे आगे हरियाणा के गांव भी काफ़ी हैं, उन बच्चों को भी लाभ होगा, हरियाणा को भी, हमारा तो इसमें फायदा है ही है, हरियाणा का भी फायदा है। और एक सबसे महत्वपूर्ण जो डिमांड है हमारी हमारे पूरे एरिया की केंद्र सरकार से ये है कि जो ये गांव है जिनके 3 पास से हरियाणा लगता है, हमारी बोली भी हरियाणा की है, सारा लेन देन जो भी हमारा बैंक का ला लो या अपनी फसल का ला लो सारा कुछ हरियाणा में है, हम सिर्फ पंजाब में सरकारी काम के लिए जाते हैं। इस करका केंद्र सरकार से यही डिमांड है कि जो हमारे 5-10 गांव जो से हरियाणा के पास पड़ रहे हैं, पास क्या है बिल्कुल अंदर बढ़ गए हरियाणा के, तो 6 गाँव तो इनको अगर हरियाणा में ले लिया जाए तो हमारा जीवन और मतलब सुखमय हो जाएगा। यही सारे गांव की भी मतलब पूरे एरिया की डिमांड है हमारी केंद्र से सरकार से, अभी हमें हरियाणा के साथ लिया जाए।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जानकारी दी, सरकार आपकी आवाज सुनागी और आपकी मदद करागी। आज हम बात करांगे गांव के जीवन के बारे में और मार आज का कार्यक्रम आओ गांव चले। तो गांव के बारे में और ज्यादा जानने वास्ते आज हम पहुंचे हैं गांव रजापरमा, जहां हम बात करांगे राम किशन जी ते और जिनकी उम्र हो रही 70 वर्ष। राम राम ताऊ।
2: राम राम जी।
0: और ताऊ ठीक ठाक?
2: ठीक सही।
0: तो ताऊ मैं आज तेरे यूं पूछना चाहूं भी जोन सा आज का गांव का रहन सहन है और जोन से हमारे पहला के टाइम मोए कराते उनमें कितना फर्क पड़ा?
2: हमारे टाइम में तो बेटा जब हम स्कूल में जाया करते थे साइकिल भी प्राप्त नहीं होती थी हमारे को, हम पैदल जाया करते थे और यहाँ से गांव सरसेड़ी यहाँ से 5 किलोमीटर पड़ता है, हम वहाँ पर पैदल जाके स्कूल में पढ़ाई करते थे क्योंकि हमारे गांव में 5वीं तक का स्कूल था। इसके बाद हम 5वीं से 6ठी क्लास से 10वीं क्लास तक हमने कहाँ पढ़ा है? सरसेड़ी में। सरसेड़ी में 10वीं क्लास जाने के बाद उससे आगे स्कूल नहीं था, फिर हमें अम्बाला कैंट पढ़ना पड़ा।
0: तो ताऊ मतलब तने कहाँ तक शिक्षा प्राप्त करी हुई?
2: मैं 10+2 तक पढ़ा हूँ।
0: ठीक बात ताऊ। तो 12वीं के बाद तने फिर कॉलेज की पढ़ाई नहीं शुरू करी?
2: ना बेटे, घर में इतनी गुंजाइश नहीं थी कि मैं कॉलेज में पढ़ सकता, ये 12वीं भी बहुत मुश्किल से की है, इतनी घर में गुंजाइश नहीं थी। ये गांव बिल्कुल, यहाँ हर एक मकान कच्चे थे, पैसे की बहुत दिक्कत थी, फसलें नदी बर्बाद कर देती थी, यहाँ तो बहुत मुश्किल जीवन व्यतीत किया हमने अपने टाइम में। आज के टाइम में बहुत सहूलियत है, गांव में सड़कें भी बन गई हैं, पक्के मकान भी बन गए हैं, उस टाइम में और इस टाइम में बहुत फर्क है।
0: ठीक बात ताऊ। तो ताऊ तन्ने अपने बारे में बता दिया भी गांव के माहौल में कितना फर्क पड़ा, तो इस माहौल के बारे में और ज्यादा जानने वास्ता हम एक और ताऊ से बात करांगे। राम राम ताऊ। तो ताऊ आपका नाम क्या और आपकी उम्र कितनी हो रही?
3: उम्र 74 साल, पूर्णचंद मेरा नाम है।
0: ठीक बात ताऊ। तो ताऊ जिस तरह तेरी उम्र 74 साल हो रही, तो तन्ने बहुत पिछला टाइम भी देखा और जो हमारा मॉडर्न टाइम चल रहा यो भी देखा। तो ताऊ मैं तेरे यूं ही पूछना चाहूं भी तन्ने अपनी जिंदगी में कितना फर्क देखा भी, पहला तेरी जिंदगी कैसी थी और आजकल के मारे न्याणे की जिंदगी में कितना फर्क देख रहा? तो तन्नू वह टाइम अच्छा लगा था आकी वो टाइम बढ़िया लग रहा?
3: टाइम तो वह भी अच्छा था बेटे, यही अच्छा, थोड़ा हर चीज तो मिल जा, पहले तो कोई सामान इतना मिला था, कोई बहुत दिक्कत थी, मतलब रेते में जाना, रेते में आना, पानी में चलना सारा दिन, मैं नहीं बताऊं और क्या बेटे, इतना ज्यादा कुछ हुआ नहीं।
0: ठीक बात आऊ। तो रहन सहन के बारे में थोड़ा सा बताओ अगर श्रोता नु भी, तो खाने पीने का किस तरह बदल गया, हमारा पहनावा कितना बदल गया, अरे कितनी टेक्नोलॉजी आएगी इसके बारे में थोड़ा सा बताओ। आगा
3: बहुत ज्यादा ही बदगी तो बेटे, पहला कहा कपड़ा भी नहीं इतना मिला था, क्या एक कुर्ता तो थी मिल गई, एक 6 महीने वही आदमी पहन रहा, पैर में जूती नहीं मिला थी, कहीं जहाँ देता तेरे भर के भाई किसी की मांग का जाना ये काम हुआ था बेटे, यहाँ से पैदल जाना सीधा बेबियाल को, ये हाल थे, कोई सवारी का साधन नहीं था, कोई नई बात है और कुछ नहीं बेटे, जो पढ़ाई लिखाई है बताई है वही है बस।
0: तो पहला यातायात के साधन बहुत कम हुआ थे और बुजुर्ग जोन से मारे पहले बंदे थे उन्होंने बहुत संघर्ष करना पड़ा था।
3: यहाँ यहाँ बैठे यहाँ तो पानी की टक्कर लगती थी नदी की, ऐसे पानी फैलता था गांव के चारों चिगिरता, ये सरसेड़ी परसेड़ी ये सब इधर अंटाड़ा सब में पानी घूमता था, फसलें सब नष्ट हो जाती थी, खाने में कोई बहुत बहुत दिक्कत आती।
0: राम किशन ताऊ जी आपते पूछना चाहूँ भी जोन सा आपका गाँव राजा पर इसमें क्या खास बात अभी और गाँव ते अलग?
2: ऐसा जी, गाँव रजापुर जो है बिल्कुल छोटा सा गाँव है, बहुत अच्छे आदमी इसमें, कोई चोरी नहीं, कोई हेरा फेरी नहीं, ये शरीफों का गांव है।
0: ठीक बात। तो मतलब थारा गांव शरीफा के गांव के नाम ते बजा?
2: बिल्कुल रजापुर है ये, यहाँ पर पहले दो आदमी होते थे, एक राजू एक खेलू, राजू ने रजापुर बसाई और खेलू ने खेलन बसाई है, गांव दोनों एक ही हैं।
0: तो इस गांव का यो नाम इस कर का पड़ा था, राजू के नाम से पड़ा था। तो ताऊ मैं तेरे ते और न्यू पूछना चाहूँ जोन सा यो थारा गोवा राजा पर यो पंजाब मावा और हरियाणा थारते 7-8 किलोमीटर दूर आ, तो इसके पीछे क्या कारण रहा भी यो पंजाब में लिया गया?
2: ये तो बेटे हमारी सोधी से पहले की बात है, इसके बारे में हमें कुछ नहीं मालूम है, कागजों में पंजाब में शुरू से है ये गांव, ये तो बुजुर्ग जानते होने, लेकिन हमें हरियाणा में जितना फायदा है पंजाब से हमें कोई भी बेनिफिट नहीं है। हरियाणा में हम जाएंगे, पढ़ाई हमारी हरियाणा में, नौकरी हमारी हरियाणा में, ना है यहाँ पर बसें मिलेगी कोई, पैदल जाएंगे और टेम्पो में जाएंगे या कोई साइकिल पे जाएगा या थ्री व्हीलर में जाएगा, थ्री व्हीलर में बैठेगा 1.5 घंटा इंतजार करने पड़ेगी, जब तक उसकी सवारी पूरी नहीं होगी तब तक टेम्पो नहीं चलेगा। पंजाब सरकार की तरफ से यहाँ पर कोई भी बस नहीं है, एक नारायणगढ़ से दिल्ली के लिए बस जाती है सुबह के टाइम 7 बजे, वो भी हरियाणा की है, लेकिन पंजाब की यहाँ पर कोई लोकल बस नहीं है, कोई सरकारी बस नहीं है, पंजाब से हमें कोई भी इतना बेनिफिट नहीं है। यहाँ से इस गांव से कम 1000 बच्चा अंबाला कैंट ड्यूटी पे जाता है प्राइवेट फैक्ट्रियों में काम करने के लिए। पंजाब सरकार की तरफ से यहाँ कोई सहूलियत नहीं, ना हमारे को कोई नौकरी देता है पंजाब में, ना हमें कोई उनकी सहूलियत है। हरियाणा में ज्यादा हमारे बच्चे हरियाणा में ज्यादा नौकरी कर रहे हैं जबकि पंजाब में नहीं कर रहे।
0: ठीक बात तो, मतलब सारे काम हरियाणा में ही है, कॉलेज ले लो, स्कूल ले लो,
2: हमारे काम हरियाणा के अंदर ही मिलेंगे। पंजाब में तो ये नाम मात्र के है, हम नाम है कि हम पंजाब में रहते हैं।
0: ठीक बात बताओ तो मैं आपसे थोड़ा सा इस बारे में जानना चाहूंगी भी जोन सी हमारी पंचायत हुआ इसके जोन से पहला के फैसले हुए कराते और जोन से इब पंचायत चल रही इसके फैसले, इनमें कितना फर्क पड़ा इसके बारे में थोड़ा सा बताओ।
2: पहले जो पंचायतें थी हमारी, तकरीबन ज्यादातर किसी की लड़ाई होगी, झगड़ा हो गया, फैसला यहीं हो जाता था। ये डॉक्टर धर्म सिंह के टाइम की बात है, उस टाइम यहाँ के सरपंच थे, राजा पर थे। लेकिन आज के टाइम में हरेक आदमी के अंदर आग इतनी बढ़ गई है कि वो हरेक आदमी थाने की तरफ भागता है। तो अब तो थाने में जाना पड़ेगा और थाना पड़ेगा यहाँ से दूर। पहले लारूडू थाना था हमारा, अब हंडेसरे में पड़ता है। तो पहले में और अब में तो बहुत फर्क है। पहले 4 आदमी इकट्ठे होके पंचायत के आपस में यहीं पर फैसला कर देते थे, आजकल कोई किसी की मानता नहीं। सीधा थोड़ी सी बात हो जाए, किसी से लड़ाई हो जाए, सीधा सरपंच को भी नहीं पूछेगा, वो पहले थाने में पहुंचेगा। आज का टाइम ये है।
0: तो तन्नू अपना वही टाइम पसंद आक तनी वो टाइम ठीक लगा?
2: बेटे हमारा टाइम तो वो भी ठीक था, लेकिन आज के जनरेशन के हिसाब से टाइम ये भी ठीक है, क्योंकि उस टाइम में इतनी सहूलतें नहीं थी जितनी सहूलतें अब हो रही है। हम तो बरसात का टाइम आता था, कोठे पे गारा लगाने के लिए परेशान हो जाते थे, किसी का कोला गिरता था, कच्ची छतें थी, डंडे डार रखे थे छतों पे, कड़िए के मकान थे। और आज एक भी मकान ऐसा नहीं मिलेगा जिसका कच्चा है, हरेक का मकान पक्का मिलेगा, हरेक के घर में फर्श मिलेगा। हाँ उस टाइम में ये था, कोई गरीब आदमी है उसके घर में दूध नहीं है, पड़ोसी से मिल जाता था। अब तो जिसके घर में खुद दूध है वो भी दूध नहीं पी सकता, वो डोलू वाला ले जाता है। तो टाइम तो वो भी अच्छा था, जनरेशन के हिसाब से ये भी अच्छा है।
0: तो ताऊ तो आज के मारे जोन से युवा अपने बालक है न्याणे, उन्हू क्या कहना चाहगा भी जिस तरह गलत आदतों में भी पढ़ रहे बच्चे और अपना पढ़ाई पर भी नहीं ध्यान दे दे, तो उन्हू क्या संदेश देना चाहा तो भी अपनी जिंदगी में क्या करना चाहिए और किस मुकाम तक पहुंचना चाहिए?
2: बेटे हमारा टाइम ऐसा था, अगर किसी अपने बुजुर्ग के अलावा किसी और बुजुर्ग ने भी डांट दिया ना हमारे को, तब भी हम बोलते नहीं थे। लेकिन आज का टाइम ऐसा है कि अपने बच्चे को हम खुद नहीं डांट सकते। पहले क्या था हमारे टाइम में, अगर पड़ोसी ने भी डांट दिया हम सीधे उनसे डर के भाग जाते थे, अब किसके बच्चे कहना मानते हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद ताऊ, तन्ने जानकारी दी और तो आज के युवा नु संदेश दे रहा भी अपने उसी टाइम पर चलना चाहिए जिस तरह हमारे पहला टाइम था, अपना कहना मान्य कराते ताऊ चाचे का भी बहुत डर होए कराता उस टाइम में। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे साथ एक युवा जुड़ रहे, हम युवा के साथ बात करेंगे कि युवाओं का जीवन कैसा है और वे अपनी जिंदगी किस तरह व्यतीत कर रहे। राम राम जी।
4: राम राम जी। नेहा जी पहले तो आपको थैंक्स जो आप हमारे गाँव में रेडियो के माध्यम से यहाँ तक आए। और मेरा नाम है प्रवीण शर्मा और मैं गाँव रजापुर पोस्ट ऑफिस केलन डिस्ट्रिक्ट मोहाली तहसील डेराबसी से रहने वाला हूँ।
0: तो प्रवीण जी जिस तरह आप एक युवा, तो मैं आज आपसे युवाओं के बारे में ही जानना चाहूँ भी जोन से मारे युवा उनका जीवन कैसा है और उन्होंने कौन कौन सी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा।
4: देखो जी नेहा जी, ये तो अलग अलग स्टेप होते हैं, युवाओं के अनुसार उसकी कैटेगरी उसके परिवार के अनुसार वो डिप्लोप होती है। जैसे एक परिवार में पढ़े लिखे बच्चे होंगे तो 80% लोग पढ़े लिखे होंगे। अगर कल्चर पहली बैकग्राउंड खराब है तो उसको धीरे धीरे इम्प्रूव करने में समय लगेगा। और अगर मैं बात करूं युवाओं की, हमारे गांव में 80% युवा बहुत अच्छे हैं, एजुकेशन की तरफ जाते हैं। और एजुकेशन का बैकग्राउंड क्या है, हम पंजाब में एक 10वीं और 12वीं का स्कूल है, उसके बाद सारी एजुकेशन हम हरियाणा से डिप्लोम करते हैं। और एजुकेशन के बाद अगर बच्चा ग्रोथ करेगा, नौकरी पैसा जो भी लेगा वो भी 90% हरियाणा में लेंगे, या वो प्राइवेट सेक्टर हो या वो गवर्नमेंट सेक्टर हो। हम 80-90% प्राइवेट में करेंगे और वो भी मैक्सिमम हरियाणा में करेंगे। उसके पीछे कारण क्या है, हमारे गांव से जो डेराबसी कॉलेज है, और कोई आसपास पंजाब का कॉलेज नहीं होगा डेराबसी, जो हमारे से 35 किलोमीटर दूर है। अगर यही बात हम हरियाणा से बात करेंगे तो हमारे से 7 किलोमीटर दूर एसडी कॉलेज है। एक कॉलेज नहीं, 4 कॉलेज है। इवन जो मेरी, जैसे बात करूंगा, छोटी सिस्टर है, बड़ी सिस्टर, माता जी, जो हमारी सिस्टर बुआ जी हैं, जो पढ़ नहीं पाई, वो भी हमारे से 10 किलोमीटर कॉलेज आ रहा है, गर्ल कॉलेज, वहाँ स्टडी होप कर लेती वो, अगर हमें सहूलत मिलती।
0: तो मतलब आप यूं कहना चाह रहे भी पढ़ाई लिखाई मानू यातायात की सुविधा नहीं है, आने जाने में दिक्कत हुआ, और इसकी वजह से शिक्षा शायद कहीं ना कहीं कम रहेगी।
4: यस मैम, जो आपने कहा है तो 100% यही कारण है इसके पीछे, क्योंकि हम एजुकेशन के लिए पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने के लिए तो बच्चे रेडी हैं, पर जो उसको आवाज आएगा, जो साधन 4 घंटे सर्वाइव करेगा, वो कैसे करेगा? ट्रांसपोर्ट की सुविधा ही नहीं। ट्रांसपोर्ट की सुविधा ना होने का कारण भी मैं बता देता हूँ आपको, हरियाणा पंजाब का उसको पास लेना पड़ेगा, जो 2 सरकार का गेट पास लगेगा तो उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट काफी होती है, जिसके कारण कोई प्राइवेट भी उसमें बस की सुविधा नहीं दे पाएगा। अगर सिंगल होता तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट पे खर्चा कम लगेगा और जिसके कारण सुविधा बढ़ जाएगी। दूसरी बात, लोकल है तो अपने पास किसी को गाड़ी या किसी को बाइक है, वो अपने साधन से जो मर्जी जाए, वो तो उसके पेरेंट्स के बदौलत बच्चे स्टडी कर रहे हैं।
0: तो आप सरकार तो यूं ही कहना चाह भी मानो शिक्षा प्राप्त करने वास्ता साधन भी मिलने चाहिए और हमारे आसपास भी कोई कॉलेज होना चाहिए।
4: राइट मैम, सारे कॉलेज हैं, एसडी कॉलेज है, जीएमएन कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है, आर्यागल कॉलेज है, डीएवी कॉलेज है, अग्रसेन कॉलेज है, 7 कॉलेज गिनवा दिए मैंने 8 किलोमीटर के अंदर, और पंजाब के अंदर एक कॉलेज है डेराबसी 35 किलोमीटर की दूर, तो मुझे कहाँ जाना चाहिए? अब दोबारा आओ प्राइवेट सेक्टर की बात, अगर मैं एक छोटे से परिवार से हूँ और मुझे 10-12 हज़ार रुपये की नौकरी करनी पड़ेगी, मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? यहाँ से मेरे 6 किलोमीटर दूर इंडस्ट्री एरिया है, जहाँ 400 कंपनी है, कोई गैस की, कोई लोहे की, कोई साइंस की, तो मुझे आसानी से नौकरी मिल जाएगी और मैं अपने पैदल भी जा सकता हूँ अगर घर से कमजोर हूँ, और उसके बाद 2000 की साइकिल लेके भी जा सकता हूँ। बट पंजाब सरकार में मैं नौकरी कहाँ करूँगा? 40 किलोमीटर दूर डेराबसी से इंडस्ट्री एरिया लगता है फेस पे, ट्रिब्यून चौक पे, और यहाँ से वो 60 किलोमीटर दूर, मुझे आने जाने का बताओ कैसे करूँगा मैं?
0: तो आपकी सरकार से क्या मांग, आप क्या गुहार लगाना चाहें सरकार ने?
4: देखो मैं तो दोनों ऑप्शन बता दिए आवाज के जरिए, आपके रेडियो के जरिए भी। पहला ऑप्शन ये, या मुझे कॉलेज के पास ले जाओ मेरे बच्चों को ताकि वो स्टडी कर लें, नहीं ले सकते मुझे ट्रांसफर कर दो ताकि मैं एजुकेशन खुद ले लूं। दोनों सरकार के पास है और केंद्र सरकार के हाथ जोड़ निवेदन करूंगा मैं कि जो ऑप्शन सही लगे वो मुझे एग्री होना चाहिए। अब थाने कचहरी की बात करूं, जैसे सरपंच साहब ने ओवरऑल कवर कर ही लिया मेरा, अगर मेरी डीएल या आरसी कोई भी चीज बनवानी पड़ेगी, मुझे डेराबसी जाना पड़ेगा जो यहाँ से 60 किलोमीटर दूर है, अगर यही चीज मुझे बनवाने के लिए ये 6 किलोमीटर दूर है, मुझे अपनी नौकरी भी नहीं छोड़नी पड़ेगी और एक दिन की 400 रुपए की दिहाड़ी भी नहीं छोड़नी पड़ेगी, मैं आसानी से जा सकता हूँ लंच टाइम में भी, क्योंकि मैं तो जॉब फैक्ट्री में कर रहा हूँ ना, कंपनी में एक छोटी सी जॉब, तो लंच टाइम का पीरियड होता है 1 घंटे का, 1 घंटे के अंदर मैं कचहरी में जा सकता हूँ, बट वहाँ मुझे 400 रुपए की दिहाड़ी छोड़ के जाना पड़ेगा। दोनों अवसर सरकार के पास है देखो, और हम यहाँ बैठे हैं और आवाज केंद्र सरकार, पंजाब सरकार और हरियाणा सरकार ऑलमोस्ट पहुंच चुकी होगी। अगर मुझे गाँव के अंदर एक नाला बनवाना पड़ जाए, मेरी सरपंच सुनवाई ना करे, कोई सुनवाई ना करे, मुझे एमएलए के पास जाना पड़ेगा ना। एमएलए कहाँ बैठता है मेरा? चंडीगढ़ डेराबसी। वो हमने आवाज आप तक पहुंचाई थी, कुछ ना कुछ निष्कर्ष अच्छा निकले और हम आगे बढ़ने की बात करें। जो आपका पहला क्वेश्चन था उसका आंसर ये है भी, हम आगे जब बढ़ेंगे, जब देश हमारे साथ हमें आगे बढ़ाएगा और हमारी सरकार कोई निष्कर्ष निर्णय लेगी, हरियाणा ले या पंजाब ले, उसके बदौलत हम आगे बढ़ सकते हैं, अदरवाइज हम यहीं सर्वाइव करेंगे, अगले 70 साल भी आप आ सकते हैं। जब मैं 70 साल का हूँगा तो आप मुझे यही क्वेश्चन करना और मैं यही आंसर दूंगा, सेम जो मेरे बाबा जी ने दिया और जो सरपंच साहब ने दिया।
0: बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी, आपने जो इतनी जानकारी दी और अपने बारे में बताया, और जो उनसे देश के युवा है उनके बारे में भी, मैं किस तरह आगे बढ़ सका।
4: देखो देश तो आगे आज भी बढ़ रहा है, पहले भी बढ़ रहा था, बट हमारा गाँव आगे पहले भी नहीं बढ़ रहा तो आज भी नहीं बढ़ रहा। पहले बड़ा होता तो बाबा जी बोलते बड़ा हुआ है, उसके बाद 20-40 साल का गैप सरपंच साहब बोलते और मैं भी सेम बोल रहा हूँ, और मेरे आने वाले बच्चे भी यही क्वेश्चन करेंगे।
0: प्रवीण जी बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने मेरे से बताया अभी मन यो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा, तो इसका हम सरकार से यही निवेदन करना चाहेंगे भी जो आपकी दिक्कतें हैं वह सरकार सुना, और जो भी सरकार उसका फैसला लेवागी तो आपके हक में होगा वो फैसला, और जिस तरह हम यहाँ आपके गोमाए तो मारी है जो सी आने की यहाँ वजह वह सफल हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।
4: थैंक यू नेहा जी, जो आपने कहा, देखो सफल तो जब भी होगी जब आवाज उठाएंगे, आपका नाम ही पहले आवाज है, आवाज उठेगी तो वो कुछ ना कुछ ले ही होगी डिसीजन, और ये निष्कर्ष मेरा नहीं है, विलेज रजापुर से मैं हूँ, मेरे पास वाला गांव खिलन है, और उससे पास वाला अंटाड़ा, मालण, जोधगढ़, इवन सारंगपुर, ये सारे के सारे 6-7 गांव हैं जो हरियाणा का बिलोंग करते हैं। और ये मेरा मतलब एक मेरी तकलीफ नहीं है, 7 गांवों की सेम यही है। आपकी आवाज उठेगी, आपकी आवाज की सुनवाई होगी तो ये 7 गांव आपका एहसानमंद रहेंगे पूरी लाइफ। हम भी अगली पीढ़ी को ये बोलेंगे भी आवाज से हमारे पास आया और हमारी आवाज केंद्र सरकार को गई और उसके बाद हमारे बच्चों का फ्यूचर बन गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी। आप सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता और मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो सखी सेजल। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं पंजाब के एक गांव रजापुर में और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं यहां के पंच और सरपंच। तो आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं इस गांव के बारे में।
5: नमस्कार जी, मैं गांव रजापुर से और राज सिंह बोल रहे हैं, सरपंच से तहसील डेरावासी जिला मोहाली।
0: सर, क्या आप बता सकते हैं कि आपके गांव में अगर हम कृषि की बात करें तो इस समय कौन सी फसलें लग रही हैं और क्या कृषि के लिए तैयारी हो रही है?
5: मेरे गांव में जीरिया लगी हुई है अभी और चरी बाजरा है जो भैंसों के लिए और गन्ना है, बस मुख्य फसलें यही हैं ज़्यादा।
0: और जैसे फसलों के लिए पानी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है तो पानी की क्या सुविधाएँ हैं आपके गाँव में? से
5: गाँव में किसानों ने अपनी जरूरत के हिसाब से अपने ट्यूबवेल लगा रखे हैं और एक सरकारी बोर है वो भी बिना देख रेख के ही चल रहा है रबरों से, बाकी कोई नहरी पानी नहीं है। जैसे पंजाब एक खुशहाल प्रदेश है, यहाँ से कोई नहरी पानी का कोई कभी देखे ही नहीं, किसी ने कभी नहरी पानी का होता है। और हमारे साथ तो यहाँ से बहुत ही सरकारों ने पहले से वो कह दें तो सौतेला व्यवहार कर रखा। जब इलेक्शन का टाइम आता है तब तो उनसे जो मर्जी को हाल हो, नहर भी आ जाएगी, सारा कुछ यहाँ पे आ जाएगा और उसके बाद सब भूल भाल जाते हैं।
0: जैसे अभी बारिश के मौसम में काफी सारे गांव बारिश की वजह से प्रभावित हुए थे तो उस बारिश की वजह से कहीं ना कहीं आपके गांव को कोई दिक्कत आई?
5: बारिश में बहुत ज्यादा दिक्कत आई है, गाँव में पानी भी बढ़ा है और डांगरी नदी ने भी बहुत मतलब जो उपजाऊ जमीन थी उसका बहुत नुकसान कराया है। तकरीबन 40-50 साल बाद इतना पानी देखने को मिल रहा है जो बुजुर्ग बोल रहे हैं, इससे पहले तो कभी इतना पानी आया नहीं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, चाहे इसको बात नो चाहे आप काट भी दियो, मतलब कोई वो नहीं है, जो सच है तो वो सच है। इब की बार इस बरसात में जो अपना महेशनगर का पुल है उसने डुबोने का काम कराया है, जो अपना सरसेड़ी में पानी बढ़िया वो पुल के कारण बढ़िया है। आप मतलब सरकार को ये थोड़ा देखना चाहिए, उसके मैंने उसके नीचे जाके खुद देखा है, उसके 8 पिलर हैं, मतलब 8 दरवाजे ला लो आप, उन 8ों में से 4 बंद है और 4ों में का पानी निकलता है और 4 बंद है तो पानी तो कहीं ना कहीं रास्ता चाहेगा। वहाँ पानी पूरा ना निकलने के कारण जो सुसेड़ी में पानी बढ़िया है वो सारा वहाँ की नाकाम भी है, वहाँ से निकासी बंद हो ही है, वो सरकार का काम है देखना कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। तो ये मेरी मतलब आवाज ना काटा तो आप बढ़िया, बहुत अच्छी बात है क्योंकि किसी ने ये मुद्दा उठाया ही नहीं है। पूरी हमारी कैंट की अंबाड़े की इंडस्ट्री डूबी है इसी के कारण, 20-25 गांव जो डांगरी का तकरीबन 3 इंच से पानी इधर से गया, 1 इंच से पानी इधर गया।
0: तो इस वजह से गाँव के कितनी प्रतिशत जमीन और फसलें प्रभावित हुई?
5: मेरे गांव में तकरीबन 30% फसलों का नुकसान हुआ है और तकरीबन 15% जमीन खराब हुई है जो खेती के लायक रही नहीं है।
0: तो जैसे कि आपने अपनी सारी समस्याओं के बारे में बताया तो इसके बाद आपको सरकार की तरफ से कोई मुआवजा मिला या सरकार की तरफ से कोई सुविधा प्राप्त करवाई गई है आपको?
5: नहीं, अभी तो कोई सरकार की तरफ से सुविधा नहीं कराई गई है। पहले भी जो अपनी कणक की फसल में बरसात हुई थी तब भी सरकार ने फार्म वगैरह भरवाए थे, कोई मुआवजा नहीं दिया और अब फिर सरकार ने फार्म भरवा रखे हैं जिसका नुकसान हुआ है, अभी तक तो कुछ मिला नहीं है, आगे देखो सरकार क्या करती है।
0: अब हम बात करते हैं इस गांव से जुड़े स्वास्थ्य की सुविधाओं के बारे में। तो पहले हम यहाँ के पंच से पूछना चाहेंगे कि इस गाँव में क्या क्या स्वास्थ्य से जुड़ी सुविधाएं उन्हें मिलती है।
6: नमस्कार जी, मेरा नाम हरप्रीत सिंह है, मैं यहाँ का पंच हूँ जी। यहाँ पर कोई भी स्वास्थ्य सुविधा कोई नहीं है जी, यहाँ सिर्फ यहाँ से पहले भी जिस सरपंच साहब कह चुके हैं, यहाँ से सरकारी अस्पताल डेराबसी पड़ता है जी 40 किलोमीटर, और हमारी तो सारी आबादी यहाँ की गांव की सिविल हॉस्पिटल पे ही डिपेंड करती है जी। यहाँ कोई सुविधा नहीं है जी, यहाँ सिर्फ हरियाणा पर ही डिपेंड है जी।
7: इस बारे में सरपंच जी आपके क्या विचार है?
5: जो हमारी सरकारें हैं, चाहे वो सेंटर सरकार है, चाहे पंजाब सरकार है, चाहे हरियाणा सरकार है, सारी इसमें सौतेला व्यवहार कर रही है। एक तरफ तो सरकारें बोलती हैं भी एक देश कैसे हुआ, ये आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं, मतलब सेंटर सरकार की स्कीम है, बोल रही है कि भी कहीं भी इलाज कराओ। और हम पंजाब में हैं, हमारे से नज़दीक पड़ता है हरियाणा का हॉस्पिटल, हम वहाँ जाते हैं, हमारा आयुष्मान कार्ड नहीं चलता वहाँ पे, तो हम कहाँ जाए करके बहुत मुश्किल है। और पंजाब सरकार आई है कि मतलब दिल्ली का मॉडल लेके आई थी, अभी यहाँ भी मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, हमारे यहाँ से 10-15 किलोमीटर से इधर से कोई अब तक खुलिया नहीं है। मतलब लालडू अपना हॉस्पिटल एक एक छोटा सा यहाँ पे अंटाला में है, अंटाला भी 3-4 किलोमीटर है, वहाँ पूरे डॉक्टर नहीं अब तक है, कोई मरीज मतलब जाएगा तो उसको पूरी दवाई नहीं मिलेगी, फिर उसको हरियाणा में आना पड़ेगा, वो क्यों जाएगा वहाँ से उल्टे पास से।
7: तो आप हमारे रेडियो के माध्यम से दोनों सरकारों को और केंद्र तक क्या संदेश पहुँचाना चाहते हैं?
5: मैं तो ये संदेश क्या, हमारी तो प्रार्थना है सरकारों से, अभी गरीब मार ना करे, अमीर तो अपना इलाज करा लेगा, पैसे देके कहीं भी करा लेगा, गरीब कहाँ जाएगा? जिसका आयुष्मान कार्ड बन गया है वो तो अपने घर बैठा बेफिक्र होगा, अभी मेरे पास तो कार्ड है और मेरा इलाज हो जाएगा। और जब हॉस्पिटल जाते हैं वहाँ कुछ नहीं, वो कहाँ एट ए टाइम उस टाइम मरीज को संभाले या पैसा देखे, कहाँ क्या करेगा वो। मतलब मेरी तो यही है प्रार्थना कि जो पंजाब का आयुष्मान कार्ड है वो हरियाणा में भी चले, यूपी में भी चले, दिल्ली में भी चले, जिससे अपना बीमार आदमी अपनी दवा बुट्टी करा सके।
7: आयुष्मान कार्ड के अलावा और क्या कोई सुविधा आप चाहते हैं सरकार के द्वारा आपको दी जाए?
5: अगर जैसे हम पंजाब में हैं, लास्ट गांव है, यहाँ से कोई डिस्पेंसरी खुल जाए जिससे मतलब फर्स्ट एड मिल जाए बंदे को, थोड़ा फिर मतलब राहत मिले आदमी, फिर अपना कहीं भी इलाज करा ले, ये मतलब छोटी मोटी डिस्पेंसरी खुलना जरूरी है यहाँ पे।
7: जैसे इस वक्त हरियाणा में डेंगू के केस और पंजाब में डेंगू के केस ज्यादा देखे जा रहे हैं, तो आपके इस वक्त आपके गांव में क्या स्थिति है सर?
5: बहुत ज्यादा बुरा हाल है, मतलब 100-150 मरीज पड़े होगा हॉस्पिटल में, और मैंने एक मतलब स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी को फोन भी किया है, ऐसे ऐसे करके मेरे गाँव में पड़े हैं मरीज, कोई मतलब स्प्रे करा दे या कोई दवाई का इंतजाम कर दे कुछ भी, मतलब अब तक तो कोई जवाब नहीं आया, ना कोई पूछ सुध लेने आया कि यहाँ भी यहाँ पे क्या है क्या नहीं, वहीं बैठे रिपोर्टे दे देते हैं, सब ठीक है यहाँ पे।
7: आप इस समस्या से इस वक्त कैसे इसका समाधान निकाल रहे हैं खुद ही, और क्या क्या चीजें आपने अपनाई है?
5: समाधान तो कुछ नहीं है जी, यही अपना हरियाणा के हॉस्पिटलों में पड़े हैं बंदे, अपना इलाज करा रहे हैं, अपनी मतलब पैसा वेस्ट कर रहे हैं अपना।
7: तो ये थे रजापुर गांव के सरपंच जिनसे हमने बात करी और जाना किसानी के बारे में और स्वास्थ्य के बारे में। उम्मीद करते हैं इनकी आवाज सरकार तक जरूर पहुंचेगी और जल्द से जल्द इन्हें सुविधाएं प्राप्त करवाई जाएंगी।
8: मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी, रेडियो वितस्ता 90.0 FM से, और आज हम आधिकारिक रूप से आए हैं गाँव रजापुर में, जो तहसील डेरा बसी पंजाब राज्य में पड़ता है। ये गांव अंबाला कैंट जो हरियाणा में पड़ता है, अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर हमने आज गांव के अलग अलग लोगों से बात की, जो अलग अलग उम्र के हैं, बड़े बुजुर्ग भी हैं और युवा भी हैं, और जो लोगों से हमने बातचीत की उससे हमें एक अलग ही एक तस्वीर सामने आई कि एक गाँव जो किसी राज्य के बॉर्डर पर है और दूसरे राज्य के नजदीक है, उन लोगों की बात कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। जब उनको ऑफिशियली कोई काम करना पड़ता है तो उनको 35 किलोमीटर दूर या तो डेराबसी जाना पड़ता है या उनको 60 किलोमीटर दूर मोहाली जाना पड़ता है। जब ये लोग यहाँ पर अस्वस्थ होते हैं तो इनके लिए सबसे नजदीक हरियाणा में जो अंबाला कैंट के अंदर हॉस्पिटल है वो आता है, उनको वहां जाना पड़ता है जो केवल 7 या 8 किलोमीटर दूर है। जहां तक हमने देखा कि यहाँ ट्रांसपोर्ट की बात हमने की, पंजाब सरकार की ओर से यहाँ ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं है, यहाँ के लोग अपना ट्रांसपोर्ट यूज करके जो कोई इनको काम करना है, चाहे इनकी बच्चों की पढ़ाई है, चाहे इनका रहन सहन है, चाहे इनके लिए घरों के लिए सामान लाना है या जमींदारी के लिए कोई सामान लाना है तो ये निर्भर पूरी तरह से हरियाणा राज्य के जिला अंबाला पर है। इन लोगों की बात हमने आज सुनी है, रिकॉर्ड की है। हम कोशिश करेंगे कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम ये बात पंजाब सरकार तक देंगे, हरियाणा सरकार तक देंगे और केंद्रीय सरकार तक भी पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हम सिर्फ एक जरिया है जिस जरिए के माध्यम से हम लोगों की बात बाकी लोगों तक पहुंचाते हैं और सरकारों तक पहुंचाते हैं। ये हमारी कोशिश है, ये हमारी एक जिम्मेदारी भी है। जब बुजुर्ग कहते हैं कि आज से 70 साल पहले ये गांव वैसा ही था और एक युवा जो 30 या 35 साल का है वो भी यही कहता है कि आज भी गांव वैसा ही है और उनका कहना है कि अगर हमारा बच्चे से कल आप पूछोगे 15 साल 20 साल के बाद वो भी यही बात कहेंगे तो ऐसे हमारा देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। हम सभी सरकारों से अनुरोध करते हैं कि इस गांव के बारे में सोचे, चाहे वो पंजाब सरकार हो, चाहे वो हरियाणा सरकार हो या केंद्र सरकार हो। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने आज हमें इतना सारा समय दिया, आप सभी लोगों का रजापुर गांव से बहुत बहुत धन्यवाद और मैं इस प्रोग्राम को यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।

यो सा FM 90.0 MHz के प्रसारण रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का हमने उम्मीद से के हमारा प्रसारण आपने पसंद आ रहा होगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे गीत सुनने खातर सुनते रहिए FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का।

0: मन खातर अरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मलै दियो 7056413010 पा फोन।
1: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का आपके जीवन का प्रवाह। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त और होस्ट अनु, लेकर आई हूं आज के कृषि समाचार। सब्जियों की खेती के लिए प्रो ट्रे व कोकोपीट तकनीक से पौध तैयार करें, मजबूत होंगी जड़ें। रोपाई से 4 से 5 दिन पहले ट्रे को धूप में रखें और सिंचाई कम करें। सब्जियों की अगेती खेती और बम्पर पैदावार के लिए स्वस्थ पौध जरूरी है। जमीन की क्यारियों में पौध तैयार करने पर बीजों का अंकुरण कम होता है, जड़ें टूटती हैं और मृदा जनित फफूंद का खतरा बना रहता है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के सब्जी विज्ञान विभाग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार अरोड़ा के अनुसार इस समस्या का सटीक आधुनिक समाधान प्रो ट्रे व कोकोपीट तकनीक है। बेहतर परिणामों के लिए पॉन्टिंग मिश्रण के सही अनुपात के साथ साथ कुछ मुख्य वैज्ञानिक विधियों को अपनाना बेहद जरूरी है। इसके लिए रोपाई से 4 से 5 दिन पहले ट्रे को शेड से बाहर खुली धूप में रखें और सिंचाई कम करें। 25 से 35 दिनों में जब पौधे 4 से 5 पत्तियों के हो जाएं, तब शाम के समय खेत में रोपाई करें। 70% कोकोपीट 30% केचुआ खाद का उपयोग करें। प्रो ट्रे टमाटर बैंगन मिर्च और शिमला मिर्च के लिए 99 खांचों वाली प्लास्टिक ट्रे सर्वोत्तम रहती है। पुरानी ट्रे का दोबारा इस्तेमाल करते समय उसे

विक्र को पानी में डालकर अच्छी तरह फुलाएं और 2 से 3 बार साफ पानी से धोएं। ट्रे भरना। तैयार मिश्रण को प्रो ट्रे के सभी खांचों में एक समान भरें। इसे ज्यादा जोर से ना दबाएं ताकि हवा का संचार बना रहे। रोपण। प्रत्येक खांचे के केंद्र में 0.5 से 1 सेंटीमीटर गहरा खड्डा बनाकर एक एक प्रमाणित बीज डालें। बीजों को ऊपर से कोकोपीट की हल्की परत से ढक दें। हल्की सिंचाई। बुवाई के तुरंत बाद बारीक फवारे। हल्की सिंचाई। बुवाई के तुरंत बाद बारीक फवारे या स्प्रे पंप से पानी दें ताकि बीज जगह से ना हिले। प्रबंधन व देखरेख। ट्रे को 3 से 4 दिन के लिए काली पॉलीथीन से ढकें। अंकुरण चैम्बर प्रभाव। बुवाई के बाद 4 से 5 ट्रे को एक के ऊपर एक रखकर ऊपर से काली पॉलीथीन से 3 से 4 दिन के लिए ढक दें। इससे नमी और उचित तापमान मिलने से 95% से अधिक अंकुरण एक साथ होता है। धूप और सिंचाई। अंकुर मिलने लगे तो ट्रे को अलग अलग करके नेट हाउस या पॉली हाउस में धूप में रखें। सुबह आवश्यकता अनुसार हल्का पानी दें। पोषण। बुवाई के 12 से 15 दिन बाद 2 ग्राम 19:19:19 एनपीके प्रति लीटर पानी में घोलकर हल्का छिड़काव करें। मॉनसून में लौकी की फसल में एंथ्रेक्नोज रोग का खतरा किसान लगातार नजर रखें। अत्यधिक रोगग्रस्त पत्तियों व सड़े फलों को तोड़कर खेत से बाहर फेंकें। मॉनसून में लौकी की फसल पर फफूंद जनित एंथ्रेक्नोज रोग का खतरा सामने आया है। ऐसे में रोग का प्रकोप बढ़ने पर किसानों की पैदावार और आय पर सीधा असर पड़ सकता है। करनाल के नीलोखेड़ी क्षेत्र के संधीर गांव और आसपास के खेतों में रोग के लक्षण मिलने के बाद उद्यान विभाग ने किसानों को फसल प्रबंधन की एडवाइजरी जारी की है। प्रदेश में करीब 20,474 हेक्टेयर क्षेत्र में लौकी की फसल होती है। पत्तियों पर भूरे धब्बे फल भी हो सकते हैं। प्रभावित एंथ्रेक्नोज की शुरुआती पत्तियों पर छोटे हल्के पीले अथवा पानी से भीगे हुए भूरे धब्बों से होती है। संक्रमण बढ़ने पर ये धब्बे गहरे कत्थई या काले रंग के हो जाते हैं। प्रभावित हिस्सा सूखकर छेद जैसा दिखाई दे सकता है और गंभीर स्थिति में पत्तियां झुलसने लगती हैं। रोग बढ़ने पर बेल की टहनियों और कच्चे फलों पर भी काले धब्बे बन सकते हैं। फल में सड़न शुरू होने से उसकी गुणवत्ता खराब होती है और मंडी में कम भाव मिलने की आशंका रहती है। दिल्ली NCR में बड़े पैमाने पर सप्लाई। हरियाणा में लौकी समेत कद्दू वर्गीय सब्जियों की खेती बड़े पैमाने पर होती है। दिल्ली NCR की नजदीकी मंडियों के कारण करनाल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, सोनीपत और आसपास के क्षेत्रों में सब्जी उत्पादन किसानों के लिए महत्वपूर्ण आय का साधन है। 20,474 हेक्टेयर में लौकी फसल होती है। पिछले साल 2.86 लाख मीट्रिक टन उत्पादन हुआ था। 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में दवा का छिड़काव करें। एंथ्रेक्नोज के नियंत्रण के लिए थियोफिनेट मिथाइल 70% WUP का 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर साफ मौसम में छिड़काव करें। खेत में बारिश का पानी जमा ना होने दें। अत्यधिक रोगग्रस्त पत्तियां और सड़े हुए फलों को तोड़कर खेत से बाहर नष्ट करने की सलाह भी दी गई है ताकि संक्रमण दूसरे पौधों तक ना फैले। खेत में नमी नहीं बढ़ने दें। विभाग से संपर्क करें। कृषि विज्ञान केंद्र विशेष डॉक्टर राजेश बेरवाल ने बताया कि बारिश के बाद खेतों में नमी और पत्तियों पर लंबे समय तक पानी की बूंदे बनी रहने से फफूंद जनित रोगों का खतरा बढ़ जाता है। किसानों को नियमित रूप से पत्तियों और बेल फलों की निगरानी करने की सलाह दी गई है। लक्षण दिखने पर विभागीय सिफारिश के अनुसार उपचार करने से रोग को फैलने से रोका जा सकता है। तोरियों की बुवाई से पहले खेत तैयार करें। उन्नत बीज व खाद का रखें प्रबंध।

0: उन्नत किस्म संगम TL15 और TH68 का करें उपयोग। तोरियों की बिजाई के लिए खेत को तैयार कर लें। तोरियों की उन्नत किस्म संगम TL15 या TH68 के बीज का प्रबंध कर लें। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर BR कंबोज ने किसानों को तोरियों की बिजाई की तैयारी करने की सलाह दी है। एक एकड़ में संगम TL15 या TH68 किस्म का 2 किलोग्राम बीज पर्याप्त है। सिंचित तोरियों में बिजाई के समय 26 किलोग्राम यूरिया और 50 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट प्रति एकड़ डालें। असिंचित फसल में 35 किलोग्राम यूरिया और 50 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट बिजाई के समय डालें। जिंक की कमी वाली जमीन में 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट दें। खड़ी फसल में कमी दिखने पर 0.5% जिंक सल्फेट का छिड़काव करें। सुडान घास की कटाई करें। सुडान घास व संकर हाथी घास की हरे चारे के लिए कटाई करें। वर्षा ना हो तो पानी लगाएं। प्रत्येक कटाई के बाद 22 किलोग्राम व 26 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से क्रमशः सुडान घास व संकर हाथी घास में दें। ज्वार व बाजरे की चारे वाली फसलों में बिजाई के 30 से 35 दिन बाद 22 किलोग्राम अथवा मकचरी में 44 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ दें। वर्षा ना हो तो पानी लगाएं। ये थे आज के कृषि समाचार। आशा करती हूँ आपको इन जानकारियों से लाभ होता होगा। अगर आपके पास कोई कृषि जानकारी है तो आप हमें हमारे स्टूडियो के व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं, ताकि हम सभी श्रोताओं तक पहुंचा सकें। स्टूडियो का नंबर है 7056413010। नंबर एक बार फिर 7056413010। अब मुझे दीजिए आज्ञा, मिलती हूँ अगले कृषि समाचार में। आप खुश रहें, उन्नत रहें। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।
1: वितस्ता रेडियो, आपकी जिंदगी की रवानी।

बहनों भाइयों, 50 के दशक में गायकी की दुनिया में एक खूबसूरत नाम ने जन्म लिया। शानदार जानदार भारतीय गायिका के तौर पर सुमन कल्याणपुर की सुरीली आवाज ने फिल्मी दुनिया में जब कदम रखा तो लगभग सभी संगीतकारों के चेहरों पे इत्मीनान के साथ साथ खुशी की लहर दौड़ गई।

लता मंगेशकर की आवाज से मिलती जुलती आवाज सुमन कल्याणपुर ने सन 1956 में फिल्म मंगू के नाम से अपने करियर की शुरुआत की। सुमन कल्याणपुर का जन्म 28 जनवरी सन 1937 को ढाका, अब बांग्लादेश में हुआ था। सुमन कल्याणपुर ने सन 1958 में रामानंद कल्याणपुर से शादी की। आपने अपनी गायकी की शुरुआत कर सन 1960 और सन 1970 के दशक में एक लोकप्रिय गायिका के तौर पे अपने आप को साबित किया।

उनकी आवाज लता मंगेशकर जैसी होने की वजह से कई ऐसे मौके भी आए कि संगीतकारों ने उन्हें लता मंगेशकर के विकल्प के तौर पे उनकी आवाज का इस्तेमाल

एक ऐसा मौका आया था जब सुमन कल्याणपुर ने ए मेरे वतन के लोगों गीत की रिहर्सल की थी, लेकिन कार्यक्रम के दौरान उनसे ये गीत ले लिया गया था, जिसका मलाल सुमन कल्याणपुर को सारी जिंदगी रहा।

0: सुमन कल्याणपुर को मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर, मुकेश, गीता दत्त, आशा भोसले, हेमंत कुमार, किशोर कुमार, मन्ना डे, महेंद्र कपूर और शमशाद बेगम के साथ हिंदी फिल्म संगीत के सुनहरे युग के लोकप्रिय गायकों में से एक माना जाता है।
1: चल,

उन्होंने सन 1960 के दशक में मोहम्मद रफी के साथ 140 से ज्यादा दुकानें गाई। सुमन कल्याणपुर की दुकानों की एक झलक।

जब मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर के बीच किसी बात को लेकर मनमुटाव हुआ था और लता ने रफी के साथ गाने से इनकार किया था, तब मोहम्मद रफी सुमन कल्याणपुर की जोड़ी सुपरहिट साबित हुई।

सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मले दियो 7056413010 पा फोन।

विशेषज्ञों का मानना है कि फ्लाइट लेफ्टिनेंट अजय राठौड़ आखिरी वक्त तक विमान में ही रुके रहे ताकि घनी आबादी वाले अंबाला शहर में वो विमान को गिरने से रोक सके। उनके इस सूझबूझ भरे निर्णय से न जाने कितने अंबाला वासियों की जाने तो बच गई, लेकिन फ्लाइट लेफ्टिनेंट अजय राठौड़ को अपने प्राण

आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का। प्रस्तुत है कार्यक्रम किदी के साथ रेडियो पॉडकास्ट। रिकॉर्ड एडिट किया भारत सोपोरी ने। स्क्रिप्ट निर्देशन और प्रस्तुतकर्ता आरजे किरने। यह है FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति।

कुछ लम्हे होते हैं जो बस दिल में बस जाते हैं, कुछ बातें होती है जो हर रोज की भागदौड़ से भी याद रह जाती है। नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त किरनी और आप सुन रहे हैं किरनी के साथ रेडियो पॉडकास्ट। यहां हर कहानी में होगी एक गहराई, हर शब्द में होगा एक एहसास और हर पल में एक अपनापन। तो आइए दिल से जुड़ते हैं और शुरू करते हैं ये खूबसूरत सफर साथ साथ। संस्कार देने के लिए आप ही शिक्षक हैं और आप ही पुस्तक। हर माता पिता की ये स्वाभाविक इच्छा होती है कि उनका बच्चा न केवल पढ़ाई में कुशल हो बल्कि एक जिम्मेदार और संवेदनशील नागरिक के रूप में भी पहचाना जाए। ये लक्ष्य केवल पढ़ाई या अनुशासन के नहीं प्रारंभिक जीवन में मिले संस्कारों से पूरा होता है। बच्चे में अच्छा व्यवहार, भावनात्मक समझ और सामाजिक कौशल विकसित करने कोई एक दिन का काम नहीं है, ये एक निरंतर प्रक्रिया है जिसमें माता पिता की भूमिका केंद्रीय होती है। कुछ व्यवहारिक संवेदनशील और असरदार उपायों से आप अपने बच्चों के अंदर ये बीज बो सकते हैं। बर्ताव में गर्मजोशी। जब बच्चा स्कूल से लौटे या दिन भर की थकान के बाद आपसे मिलने आए तो मुस्कान के साथ उससे मिलिए, उससे पुचकारिए, हाल पूछिए। ये छोटा सा भाव उसे ये एहसास दिलाता है कि वह आपके लिए विशेष है। इससे बच्चे में आत्मविश्वास और पारिवारिक जुड़ाव की भावना विकसित होती है। स्वयं बनिए उदाहरण। बच्चे वही सीखते हैं जो वे अपने परवरिश में देखते हैं। यदि आप किसी ड्राइवर, सेल्समैन या घरेलू सहायक से सौम्यता और सम्मान से बात करेंगे तो बच्चा भी वही रवैया अपनाएगा। दूसरों की मदद, विनम्र भाषा का प्रयोग और धैर्यशील व्यवहार खुद भी अपनाइए। बुजुर्गों से जुड़ाव। अगर घर में दादा दादी या नाना नानी है तो बच्चों को उनके साथ समय बिताने के लिए प्रोत्साहित करें। उनकी कहानियां, अनुभव और जीवन दृष्टि बच्चों को नैतिक मूल्यों से जोड़ती है। इससे बच्चे में पारिवारिक समर्पण और संवेदनशीलता पनपती है। सफर में हो संवाद। यदि आप बच्चों को स्कूल छोड़ने या लाने जाते हैं तो ये समय केवल मोबाइल या म्यूजिक तक सीमित ना रखें। रास्ते के दृश्य, पेड़ पौधे, जानवरों या समाज के विविध रंगों के बारे में उनसे बात करें। ये संवाद उनकी जिज्ञासा, सामान्य ज्ञान और अभिव्यक्ति की क्षमता को निखारने में मदद करता है। दिनचर्या की शिक्षा। बच्चों को शुरुआत से ही दिनचर्या का महत्व समझाएं। सोने, खाने, पढ़ने, लिखने, खेलने और स्क्रीन टाइम का संतुलित रूटीन बनाए और उसे निभाने में उनका मार्गदर्शन करें। आप स्वयं भी रूटीन का पालन करें क्योंकि बच्चे देखकर ही सीखते हैं। सुनाए कुछ रोचक। रोजाना कुछ समय निकालकर बच्चों को कहानी या कविताएं सुनाए। सुनाने के बाद उन पर चर्चा करें, पूछे कि क्या समझा, क्या अच्छा लगा, क्या सीखा। इससे बच्चों में भाषा, कल्पना और नैतिक समझ का विकास होता है। अपनाइए ये मूल मंत्र। आवाज ऊंची करना या बार बार डांटना बच्चे पर उल्टा असर डाल सकता है। बातचीत के माध्यम से ही समझाइए। प्रार्थना या ईश्वर स्मरण को उसकी दिनचर्या का हिस्सा बनाइए। ये उसे मानसिक स्थिरता देगा। अपेक्षाएं यथार्थवादी रखें। एक ही दिन में बच्चा आदर्श व्यवहार नहीं सीख सकता। सार्वजनिक रूप से कभी भी उसका मजाक ना बनाएं। ट्यूबलेट, मोटू या बोंदू जैसे आरोप तुल्य नाम धरने से बचें। आप है सबसे असरदार। अच्छे संस्कार देने का अर्थ केवल अच्छी अच्छी बातें बताना नहीं है, बातों के साथ ही जीवन की हर छोटी बड़ी परिस्थिति में बच्चे के साथ रहकर उसे समझाकर और उदाहरण प्रस्तुत कर पथ दिखाना है। अभिभावक ही बच्चे के पहले और सबसे प्रभावशाली शिक्षक होते हैं। प्यार, धैर्य और निरंतरता के साथ की गई आपकी शिक्षा उसके बचपन को सुंदर तो बनाएगी ही, उसे भविष्य की नींव भी मजबूत करेगी। दोस्तों, वक्त का पंख तो देखिए कितनी जल्दी जल्दी उड़ जाता है। देखते ही देखते हमारे इस खूबसूरत सफर का आज का पड़ाव आ गया। याद रखिए, जिंदगी छोटी है लेकिन अगर इसे मुस्कान और उम्मीद के साथ जिया जाए तो हर पल अमर हो जाता है। तो मिलेंगे हम फिर एक नए दिन, नई बातों और नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए
अपना और अपनों का ख्याल रखिए। सुनते रहिए FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। नमस्कार, मुस्कुराते रहिए।

जो दे गया फरेब, दे गया जख्मों की बारिश, फिर जिंदगी को संभाल न सके। आज मेरे मौसम जर्द हो गए,

सफर छूट गए मेरे यार, रास्ते गुम हो गए, इसलिए शायद तुम हमारे ना हो सके। वक्त बेवक्त तुम याद आते रहे, मेरे अपनों की तरह तुम भी मेरी इबादत में शामिल रहे और मैं सजदों में तुम्ही से मुखातिब रहा, यूं ही

0: कमरों में कोई गुजरता है हर पल मेरे पास से, मेरे करीब से। धुंधला धुंधला चेहरा दिखाई देता है और चलने की आहट सुनाई देती है। इन पैरों को छूने की हल्की जुम्बिश महसूस होती है। कोई तो है जो सुनता है मेरे दर्द को।
1: दबी दबी सांसों में सुना था मैंने, बोले बिना मेरा नाम आया, पलके झुकी और

ख्वाब थी पर रह गई अधूरी, हसरतों की मीनार दब गई सीनों में, अब पहले जैसे जज्बात कहां, पहले जैसी मुलाकातें कहां, पहले जैसा चांद भी तो अब कहां उगता है आकाश में। ना पहले जैसी तारों की बारात, उनकी टिमटिमाहट नजर आती है, और ना ही तुम्हारी जानिब से खुशबू मेरे पास से गुजरती है। अब रुक गए काफिले मोहब्बतों के, यूं ही तुम हमारी तन्हाई में याद आते रहे, शायद तुम भुला बैठे।

कोई आएगा, मेरा अतीत दोहराएगा, बीती बात याद दिलाएगा, मुझे खुद से मेरी पहचान कराएगा। मुद्दती हुई कोई ख्वाब में आया नहीं, शायद बरसों से मैं सोया नहीं, इंतजार में बीत गए साल हर साल। ख्वाब बनकर कोई आएगा, मेरा हाथ जरूर थामेगा, मुझे ले जाएगा, अपने साथ बिठाएगा।

आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? फिल्मी गीतों का ये सफर आपने तय किया अपने दोस्त रमेश मराठा के साथ। अब चाहेंगे इजाजत। नमस्ते।

0: आइए कुछ अच्छा सुनते हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो।
1: पेश है कार्यक्रम पहलू और गीत, एपिसोड 10। पेश करेंगे आरजे किरणी।
2: सभी श्रोताओं को किरणी का प्यार भरा नमस्कार। मैं आज आपके सामने एक नया अंक पहलू और गीत का लेकर आई हूँ। चलते चलते कुछ सपने भी साथ ले चलो, हर कदम पर खुद से ही कर दो एक नया वादा।

0: बड़ी दूर से आए हैं कहानी लेकर साथ, दिल की बातों का सिलसिला है ये अनजाने रास्ते का राज।
1: बड़ी दूर से

साथी रे जिंदगी की राहों में चलते रहो, खुशियों में गम में हमेशा साथ निभाते रहो, हर कदम पर साथ चलते रहो।

रोशन चेहरे में खिलती है मुस्कुराहट के फूल, दिल में छुपी है खुशी और आंखों में चमक का राज।

इसके साथ ही आज के पहलू और गीत का अंक यहीं पर समाप्त होता है। दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार, जय हिंद, और अपना फीडबैक 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर देते रहिए।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम पहलू और गीत एपिसोड 10, पेश किया आरजे किन्ने ने, रिकॉर्ड एडिट किया दीपक कश्यप ने, निर्देशन भारत सोपोरी। ये थी FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता की पेशकश।

0: 90.0 FM पर सामाईन की खिदमत में पेश है रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: पेश है कार्यक्रम नारी एक दर्पण एपिसोड 3। आज के मेहमान हैं ऐश्वर्या धीमान और ज्योति बगन। प्रस्तुतकर्ता आरजे सेजल। निर्देशन भारत सोपुरी।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। मैं हूं आपकी रेडियो सखी सेजल, आपका स्वागत करती हूं हमारे आज के कार्यक्रम नारी एक दर्पण के तीसरे अंक में। पिछले दो अंकों में हमने बात की उन महिलाओं के बारे में जिन्होंने समाज की बेड़ियां तोड़ आसमान की ऊंचाई को छुआ, महिला और बाल विकास की ओर काम किया, साथ ही साथ देश को उन्नति के मार्ग पर लेकर गई और आज की पीढ़ी के लिए एक मिसाल के रूप में या कह लीजिए कि एक प्रेरणा के रूप में रूबरू हुई। इसीलिए आज के कार्यक्रम में हम आज की पीढ़ी को ही लेकर आए हैं। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे समाज के महिलाओं की तरफ बदले रुख की, महिलाओं को किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और आज के युवा किस प्रकार सफलता को पा सकते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दो युवतियां जो अपने करियर के शुरुआती दौर में हैं और अपनी अपनी फील्ड में एक्सेल कर रही हैं, एक जो बिजनेस वुमन है और गृहिणी भी, और एक जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और आज की आत्मनिर्भर युवती भी। तो ज्योति और ऐश्वर्या, मैं आप दोनों का स्वागत करती हूँ हमारे आज के कार्यक्रम में।
1: थैंक यू सेजल हमें इनवाइट करने के लिए।
2: थैंक यू सेजल, एक्साइटेड।
0: हम आप दोनों से बात करेंगे ताकि हमारे श्रोता आप दोनों को सुन पाए और जान पाए। तो शुरुआत करते हैं ज्योति आपसे। मैं चाहूंगी कि हमारे श्रोताओं को आप अपने बारे में कुछ जानकारी दें।
1: हेलो, मैं ज्योति बग्गन हूँ। मैं अम्बाला की रहने वाली हूँ और मैंने अपनी स्कूलिंग अम्बाला कैंट से की थी। देन मैंने अपना कोर्स किया चंडीगढ़ से वेब डिजाइनिंग का, प्रो डेवलपमेंट का। तो फिर उसके बाद मैंने मेकअप का भी कोर्स किया है और बाद में फिर मैंने मेकअप में फ्रीलांसिंग की है। एंड देन फिर मैं फिर से अम्बाला आ गई, फिर अम्बाला में आकर फिर उसके बाद शादी होगी, शादी के बाद फिर बेबी, फिर उसके बेबी के बाद मैंने अपना एक न्यू बिजनेस खोला है, उसका नाम है द वेब आर्ट। और मैं रेजन आर्टिस्ट हूँ और मैं हैंड कास्टिंग भी करती हूँ, हैंड इम्प्रेशन।
0: तो ज्योति, आपने बोला रेजन आर्टिस्ट और हैंड कास्टिंग, तो आप ये बता सकती हैं, क्योंकि बहुत यूनिक वर्ड है मेरे लिए भी और शायद श्रोताओं के लिए भी, तो ये चीज है क्या?
1: रेजन आर्ट में ये होता है कि आप अपनी कुछ भी चीज, मतलब जो क्योशियस चीज है, वो आप प्रिजर्व करवा सकती हो लाइफ टाइम के लिए। ये आपके लिए एक मेमोरी हो जाती है, ये केमिकल होता है, उसमें सब हमेशा के लिए प्रिजर्व हो सकती है। अगर हम उसको इतनी ऊपर से फेंके तब भी नहीं टूटता वो। और हैंड कास्टिंग वो होता है, जैसे बेबी हमारा 2 मंथ्स का है, 1 ईयर का है, तो हम उसके हैंड कास्ट करवा सकते हैं। वो एक तरह से कास्टिंग होती है, वो जैसे बेबी बड़ा होता रहता है तो बड़े होकर देखेगा कि हाँ भाई ये हमारे मम्मी पापा ने करवाया था हमारा हैंड का, कितने छोटे छोटे हाथ थे हमारे और हम बड़े हो गए हैं। तो उनके लिए एक मेमोरी रह जाती है लाइफ टाइम के लिए कि हाँ हम इतने छोटे छोटे थे।
0: तो ये सारा काम आप खुद ही मैनेज कर रही हैं इस वक्त या आपकी टीम है?
1: नहीं, ये मैं और मेरे हस्बैंड करते हैं। अभी हमारा स्टार्टअप है तो हमने कोई हेल्पर नहीं, सिर्फ हम दोनों ही करते हैं
0: जी। तो ज्योति, जैसे अभी आपने बताया कि आपने वेब डिजाइनिंग की, तो वेब डिजाइनिंग से आपका इंटरेस्ट इस तरफ कैसे शिफ्ट हुआ और ये कब आपने चीज डिसाइड की कि मुझे ये करना चाहिए?
1: जैसे वेब डिजाइनिंग से मैंने स्टार्ट किया था तो उसमें एडिटिंग सिखाते हैं वेब डिजाइनिंग में, तो जैसे फोटोग्राफी, आफ्टर बेबी मैंने ना अपने बेबी का फोटो शूट किया, उसको एडिट किया, जैसे उसका नाम कीशु है तो मैंने कीशु के अंदर लेटर्स में फोटोज लगा दी, तो फिर मैंने ऐसे ही उसको फ्रेम करवा लिया, ऐसे ही मैंने डाला अपने इंस्टाग्राम पर। तो उन्होंने कहा कहाँ से बनवाया, किसी ने पूछा मेरे से कहाँ से बनवाया, तो मैंने कहा ये मैंने खुद बनाया। तो कहते अच्छा कितने का बन जाएगा ये वो, मैंने कहा कि ये तो अभी मैंने कुछ भी नहीं, ये तो मैंने खुद ही बनाया है। तो मेरी एक फ्रेंड ने सजेशन दिया मुझे कि आपको ना ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, तो उससे मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया। पहले तो मैं सिर्फ फोटो फ्रेम्स वगैरह बनाती थी, बट उसके बाद मैंने जैसे थोड़ा सर्च किया तो मेरे एक्सप्लोर पेज पे वो आता था, जैसे एज एन आर्टिस्ट आर्ट का, तो मैंने इतना इंटरेस्ट हो गया उसमें, तो मैंने उसमें एक साल किया पहले, तो फिर उसके बाद मैंने खुद ही ट्राई किया कि हाँ ये कहाँ से सीख सकते हैं हम, तो मैंने यूट्यूब से ना इसको थोड़ा लर्न किया। काफी शुरू में मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत आई कि हाँ ये कैसे, कहाँ से सामान लाना है, कहाँ से वेंडोर वगैरह सब कुछ कैसे होता है, मोल्ड्स वगैरह, तो काफी दिक्कत आई, बट बहुत सही चल रहा है अब तो।
0: तो आप जैसे ये चीजें प्रिजर्व करती हैं, इन्हें एक तो प्रिजर्व करना भी मुश्किल है, और ये चीजें हम अपनी लाइफ में किस तरीके से इंक्लूड कर सकते हैं, और क्या क्या टाइप्स के आप प्रोडक्ट प्रिजर्व करते हैं?
1: जैसे मुश्किल, जो काम करता है उसके लिए तो मुश्किल नहीं है, बट जो देखता है उसके लिए बहुत मुश्किल है। अब जैसे हैंड कास्टिंग है, अब बेबी जब जैसे ग्रो होता है वो वापिस तो नहीं छोटा हो सकता ना, तो वैसे ही हम उनके हैंड कास्ट करते हैं, तो ताकि मेमोरी रह जाए हमेशा के लिए, तो फिर वैसे ही हैंड कास्टिंग और वैसे ही रेजन होता है कि जैसे एक बार बेबी होता है तो उसकी कॉर्ड वगैरह होती है, प्रेगनेंसी किट होती है, बेबीज के हेयर्स होते हैं, नेल्स होते हैं, तो वो प्रिजर्व होते हैं, ब्रेस्ट मिल्क प्रिजर्व होता है, और एक जैसे शादी होती है, शादी एक ही बार होती है, तो उसकी जो वरमाला होती है ना वो हम लाइफ टाइम के लिए प्रिजर्व कर देते हैं। जैसे अभी तेलंगाना में मेरे पास मैरिज थ्रेड ड्रॉप आती है तो वो प्रिजर्व करवाते हैं, और फ्लावर्स आते हैं काफी सारे, तो वो हमेशा के लिए हमारे पास रह जाते हैं।
0: जी ज्योति, आपसे बातें यूं ही जारी रहेंगी क्योंकि मैं बहुत क्यूरियस हूँ इस बारे में और जानने के लिए, और हमारे श्रोता भी जरूर होंगे। उससे पहले मैं चाहूंगी कि हमारे श्रोता रूबरू हों ऐश्वर्या से भी, तो ऐश्वर्या मैं चाहूंगी आप अपने बारे में छोटी सी इंट्रो दें।
2: जरूर, तो मेरा नाम ऐश्वर्या धीमान है एंड मैं अंबाला से बिलोंग करती हूँ। मैंने स्कूलिंग अपनी अंबाला डीसी मॉडल स्कूल से की है, जहाँ पे मैंने सब एक्टिविटीज की है, पढ़ाई से लेके को करिकुलर। स्कूलिंग के बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन की है पंजाब से, एलपीयू जलंधर। मेरी ग्रेजुएशन के ड्यूरिंग मैंने बहुत सोशल वर्क में आई वॉज एक्टिव, और मैंने पूरा कोशिश किया कि मैं अपना कुछ कंट्रीब्यूशन सोशल अपने समाज की तरफ भी दे सकूं, और रेदर देन कि मैं सिर्फ पढ़ाई में रहूं, मैंने कोशिश किया कि वहां पे भी मेरा कंट्रीब्यूशन जाए। और उसके बाद कॉलेज से प्लेसमेंट का ऑफर मिला, और मैं अपनी फैमिली से फर्स्ट कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, तो वेरी हैप्पी कि अभी मुझे अपनी लाइफ एक अननोन सिटी जहाँ पे मैंने एज अ स्ट्रेंजर अपना ज्वाइन किया और वहाँ पे अभी मैं सस्टेन कर रही हूँ, तो अभी यहाँ तक का सफर यही सब है।
0: तो ऐश्वर्या, मैं एक कॉमन सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि आपने अभी कहा कि आप फर्स्ट इंजीनियर हैं अपनी फैमिली में से, तो ये इंटरेस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तरफ कैसे गया?
2: हाँ, तो हुआ क्या कि फिफ्थ क्लास में मेरे पापा घर पे कंप्यूटर लेके आए, तो जैसे एक छोटे से बच्चे को क्यूरियोसिटी होता है कि हमें एक्सप्लोर करना है कि इसके अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं। उसके अंदर मैंने शुरू तो पेंट से किया या फिर गेम से किया, लेकिन वो चीज़ मुझे इतनी इंटरेस्टिंग लगी कि हम इस कंप्यूटर, एक छोटी सी चीज़ है, उससे हम कुछ कुछ बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत बड़ा स्टेज पे अपने उसको काम को लेके जा सकते हैं। तो आई थिंक वहाँ से ही मुझे बहुत इंटरेस्ट बना, और जब मेरे से कोई स्कूल में पूछता था कि आपका क्या गोल है, बड़े होके क्या बनना है, तो मैं यही बोला करती थी कि मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। तो आई थिंक वो धीरे धीरे इंटरेस्ट बिल्ड हुआ कि कंप्यूटर का वर्ल्ड बहुत वास्ट है, वी कैन डू लॉट्स ऑफ थिंग। आई थिंक बचपन से फैमिली के थ्रू इंटरेस्ट बना स्टार्टिंग में, एंड उसी के ऊपर मैंने काम किया।
0: तो आप अंबाला में ही पली बड़ी हैं, और एकदम से दूसरे शहर में जाना, वहाँ काम करना, वहाँ रहना, वहाँ का रहन सहन अपनाना एक बहुत ही मुश्किल काम होता है, तो एज एन फीमेल आपको क्या परेशानी आई, और एज एन पर्सन आपने अपने अंदर क्या डेवलपमेंट फील करी बाहर जाकर?
2: अगर मैं बताऊं तो पहली हर्डल तो घर पे थी, ऑल्दो मेरे पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, हाँ तू जा सकती है, सिटी दूसरी है, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, बट मम्मी की तरफ से थोड़ा सा झिझक था कि अभी बेटी छोटी है, अभी बाहर जाएगी तो कैसे सस्टेन करेगी, खाना नहीं आता बनाना, तो वो सब घर में ज़रूर था, लेकिन मुझे लगता है कि पापा की वजह से मैं बाहर गई, और वहाँ पे जाके भी बहुत हर्डल्स थे, जैसे कि मैं बोल सकती हूँ वहाँ पे लैंग्वेज हर्डल था, मुझे नहीं आती थी उनकी लैंग्वेज और वो मेरे को नहीं समझ सकते थे, तो और खाना बहुत डिफरेंट है वहाँ पे, तो आई थिंक ये दो प्रॉब्लम थी, और वहाँ पे जाके फिर धीरे धीरे मैंने एडजस्ट किया कि लैंग्वेज बैरियर हटाया धीरे धीरे, वहाँ के लोगों से भी घुले मिले, ऑल्दो इंग्लिश में वहाँ पे कन्वर्स करना पड़ता है, बट वहाँ के लोगों से भी कनेक्शन बनाना शुरू किया, धीरे धीरे वो कनेक्शन बन गया और आई थिंक अभी अच्छा चल रहा है। वहाँ पे भी ऐसा ही लगता है कि जैसे अपना घर हो बैंगलोर, तो अभी वो स्टेज पे मैं आ चुकी हूँ।
0: जी, जैसे आपने कहा कि फैमिली बहुत सपोर्टिव रही इस चीज में बाहर, और फैमिलीज को होना भी चाहिए, और इसमें मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जब आपने पहली बार आफ्टर योर 12th और आफ्टर 10th आपने जब कहा कि आप परस्यू करना चाहती हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो फैमिली का उस टाइम पर क्या रिस्पॉन्स रहा इस चीज को लेकर?
2: जैसा कि मैंने पहले बताया, मेरी फैमिली की तरफ से पूरा सपोर्ट था, और मैं चाहती हूँ कि हर किसी की फैमिली ऐसे ही अपने बच्चे को सपोर्ट करे, वो जो भी करना चाहता है उसके साथ खड़ी रहे, और अगर बच्चा गिरे भी तो उसको हौसला दे कि हाँ तुम खड़े होके अभी फिर से ट्राई कर सकते हो। मुझे लगता है मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव थी और उनकी वजह से ही ये सब पॉसिबल हो पाया।
0: तो ज्योति, मैं यही चीज आपसे भी पूछना चाहूंगी कि आपकी फैमिली का क्या रिस्पॉन्स रहा जब आपने पहली बार उन्हें बिजनेस शुरू करने के बारे में बताया?
1: मेरी फैमिली इन लॉस भी बहुत अच्छी है, मेरी मम्मी और वाले भी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मेरे बेबी को संभाला और मेरी इन लॉज ने मुझे सपोर्ट किया कि हाँ तुम्हें करना चाहिए, आजकल तो सब कर रहे हैं, तुम्हें भी आगे बढ़ना चाहिए, तुम घर बैठ के क्या करोगे। तो उन्होंने इतनी हेल्प की है ना मेरी, मतलब मेरी सिस्टर इन लॉज है, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है, और मेरी सिस्टर है जो मुझे सामान चाहिए वो ला कर देते हैं, कई बार मैं नहीं जा सकती तो वो जाते हैं। इनफैक्ट मेरे हस्बैंड मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, अगर वो सपोर्ट ना करते ना तो आज मैं यहाँ तक ना आती, और हम दोनों में इतनी अच्छी बॉन्डिंग है ना कि अगर ना होती तो मैं ये बिजनेस स्टार्ट ही ना कर पाती, क्योंकि कई लोग बोल देते हैं कि तू क्या करेगी, तू घर बैठ, हम घर बैठने के लिए तो नहीं है ना, मतलब कि हमें घर के साथ साथ कुछ करना भी चाहिए।
0: जी, तो बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा नारी एक दर्पण में। फिलहाल जो दो युवतियां हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि उनको कौन सा गाना पसंद है, और वो गाना हम अपने श्रोताओं को भी सुनाएंगे। तो ज्योति, आप अपना कोई मन पसंदीदा गाना बताएं।
1: बम बम भोले, मेरी बेटी को ना सॉन्ग पसंद है।
3: चकरक चीचाचो चकलोरम गंडो वंडो लकरक टम अक्को टक्को इडिगिडिगिडिगो इडिपाय विडिपाय चिकिचकचो गिलिगिलिमल सुलुसुलुमल मकरक हुकुबुकुरे टुकुबुकुरे चकलक बिक्को चिक्को सिलिसिलिसिलिगो बगडदुम चकडदुम चिकिचकचो।

0: गाना तो बहुत ही मधुर था और बहुत ही खूबसूरत भी और शरारत से भरा भी। और अब आगे की चर्चा हम शुरू करते हैं हमारे दो खूबसूरत मेहमानों के साथ। ऐश्वर्या, आपने कहा कि आप सोशल वर्क से जुड़ी हैं, तो ये नेशनल सर्विस स्कीम सोशल वर्क से रिलेटेड रहा, तो आप इससे कैसे जुड़ी और कैसे इतनी कम उम्र में सोशल वर्क की तरफ आपका रुझान गया?
1: तो इसकी शुरुआत जो लगता है मेरे दादाजी से हुई। तो वो हमेशा से एक देश हित भावना हमारे अंदर डालते आए हैं। तो जैसे ही मैंने कॉलेज ज्वाइन किया, उधर हमें बहुत सारे क्लब थे जो हम ज्वाइन कर सकते थे, जैसे NCC, NSS थी। तो मुझे हमेशा से रहता था कि मैं किसी ना किसी माध्यम से अपने देश के काम आ सकूं या कुछ भी छोटा से छोटा कंट्रीब्यूशन कर सकूं। तो मैंने सोचा कि हम NSS ज्वाइन करते हैं। तो मैंने फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज में ही NSS ज्वाइन किया था। धीरे धीरे हमें वहाँ पे जैसे ही जुड़े, उसके अंदर हम स्लम एरियाज में बच्चे होते हैं, उनको खाना खिलाते हैं या फिर उनको कपड़े बांटते हैं। जैसे हॉस्टल में हम लोग काफ़ी जे क्या करते हैं, कपड़े ऐसे ही रखे होते हैं जो वो यूज़ नहीं करते हैं, तो हम हॉस्टल से कलेक्ट करके जो भी सामान किसी के काम आ सके वो सब कलेक्ट करके हम स्लम एरियाज में बांटने जाते थे। हमने कैंप्स लगाए हैं गांव के अंदर जाके, जहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को हमने कंप्यूटर से जोड़ने की कोशिश की है, या फिर कह सकते हैं कि वोटिंग के लिए वहाँ पे अवेयरनेस की है कि आप चाहिए, या फिर हम स्कूल में जाके कभी पेंटिंग कॉम्पिटिशन जो कि बच्चों को नेशन से जोड़ सके। तो ये सब टाइप के काम हमने NSS में किए हैं। और मुझे लगता है एक अलग तरह का डेवलपमेंट होता है जब आप ऐसी चीज़ों से जुड़ते हैं। वहाँ पे इतने तरह तरह के लोगों से आप जुड़ते हैं, तो मुझे लगता है एक अलग तरह का डेवलपमेंट होता है आपके पर्सनैलिटी में, एंड आप अलग तरह से निखर के आ सकते हैं उसके माध्यम से।
0: जी बिल्कुल सही कहा कि जीवन में अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना बहुत ज़रूरी होता है। और जैसे आपने कहा कि बच्चों को आपने कंप्यूटर से जोड़ा, तो वो कैसा एक्सपीरियंस रहा और किस तरीके से आपने बच्चों को इस टेक्नोलॉजी से जोड़ा?
1: तो हम लोग कॉलेज से, हमारे पास लैपटॉप होता था, तो हम लोग उसे गांव में लेके जाते थे सब बच्चों को। वहाँ पे जो भी कॉमन प्लेस होती है, तो हम वहाँ पे उन लोगों को इनवाइट करते थे कि अपने बच्चों को भेजो, हम उनको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। तो वो सब गांव से बच्चे इकट्ठा होते थे, तो उनको एक तरह से हम टीचर बन के कभी चुप कराते थे, कभी दिखाते थे कि आप पेंट कर सकते हो। तो बहुत ही इंटरेक्टिव वे में हम जोड़ने की कोशिश करते थे बच्चों को, कि वो सिर्फ एक गाँव में ही सिमट के ना रह जाए, उनको पता लगे कि बाहर भी बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जिनसे वो जुड़ सकते हैं। तो बच्चों के साथ हमने भी उनके दोस्त जैसा बन के उनको सिखाने की कोशिश की है।
0: जी बिल्कुल, बच्चों के साथ एक बार खुद का भी बचपना याद आ जाता है और इस खूबसूरत दुनिया को उन्हें भी जरूर देखना चाहिए। तो ज्योति, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्या आप भी इस तरीके के सोशल वर्क से जुड़ी हैं?
2: अभी तो नहीं, बट ना थोड़े टाइम बाद हम भी स्टार्ट कर रहे हैं कि जो बेरोजगार महिलाएं होती हैं, जो घर में होती हैं, बैठी होती हैं, फ्री, उनको भी काम दें। जैसे ज्वेलरी मेकिंग का काम होता है, तो हम उनको देंगे ताकि वो भी अपना स्टार्टअप करें, और फिर हम उनको आगे उनके प्रोडक्ट्स बनेंगे तो हम सेल करेंगे, हमारे पास भी एक न्यू प्रोडक्ट हो जाएगा।
0: तो अभी फेस्टिवल सीजन आ रहा है, तो इसमें आप किस तरीके के प्रोडक्ट्स अभी प्रोवाइड करने वाली है?
2: अभी आपने कभी सुना है मिठाई कैंडल?
0: नहीं, हमने तो दूसरी कैंडल ही लिया, ये मिठाई कैंडल क्या चीज है?
2: अभी फेस्टिवल सीजन आने वाला है, तो हमने एक न्यू लॉन्च किया है, लड्डू कैंडल, मोदक कैंडल, घेवर कैंडल, गुजिया कैंडल, उसमें काफी सारी वैरायटीज हैं, तो अभी हम लॉन्च करने वाले हैं वो।
0: तो ये कैंडल खाने वाली कैंडल है या जलाने वाली?
2: को देख के खाने का मन करेगा, बट वो वैक्स है, वो सो वैक्स की होगी प्योर।
0: तो ये बहुत ही क्रिएटिव चीज है और नई चीज भी है, मैंने पहली बार ये चीज सुनी है। तो उम्मीद करती हूँ कि हमारे श्रोताओं को भी जानकारी अच्छी लगी होगी और पसंद आई होगी। तो ज्योति, जब आपने अपना बिजनेस शुरू किया, तो आपको किस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ा?
2: जब कोई कुछ भी न्यू स्टार्टअप करते हैं, ऑफकोर्स काफी दिक्कतें आती हैं, और फिर कई बार तो कस्टमर भी हमें ट्रस्ट नहीं कर पाते, हमें कस्टमर का भी ट्रस्ट बिल्डअप करना पड़ता है। बट कई बार ऐसा होता है कि कस्टमर हमसे कनेक्ट करे तो हम उनसे कई बार हाफ पेमेंट करवा लेते हैं, क्योंकि फुल पेमेंट चाहिए होती है एडवांस में, क्योंकि कस्टमर अपना सामान बनवा कर भाग जाते हैं कई बार, तो ऐसे ही होता है। और भी हमारे साथ हुआ था एक बार, ऐसे कस्टमर ने हाफ पेमेंट की, आई डोंट नो कि उनके साथ हुआ क्या था, उन्होंने अपना प्रोडक्ट नहीं मंगवाया हमसे। बट अभी तो फिलहाल हमारे पास उनका प्रोडक्ट पड़ा है अभी भी, तो वो हमने एज अ प्रमोशन यूज कर रहे हैं, हमारे लिए तो कुछ वेस्ट नहीं है। अब मेरे पास कोई न्यू कस्टमर आएगा, वो देखेगा कि कैसा है आपका ये रेजन, होता है क्या है।
0: तो आपने जैसे बताया कि इस तरीके के अपने शुरू में फेस किए, तो जो अभी नए बिजनेस में आ रहे हैं इस वक्त युवा या जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, उन्हें आप क्या राय देना चाहेंगे, इससे कैसे वो बच सके?
2: बस यही बोलना चाहूंगी कि आप हमेशा एडवांस पेमेंट करवाएं और अपने कस्टमर को अपने ऊपर ट्रस्ट करवाएं कि हाँ हम सब प्रोवाइड करते हैं, कि हम फेक नहीं है, हम फ्रॉड नहीं है, हम अपनी सर्विस टाइम पे देते हैं। अगर थोड़ा लेट हो गया तो कुछ रीजन होगा इसलिए लेट हो गया, बट कस्टमर को भी ऐसा होना चाहिए कि थोड़ा सपोर्ट करनी चाहिए कि हाँ स्मॉल बिजनेस है, होता रहता है, थोड़ा लेट हो ही जाता है। कई बार कस्टमर बोलते हैं कि आपने लेट कर दिया, थोड़ा टाइम लगता ही है हर चीज में, कुछ ना कुछ दिक्कतें आती है ना।
0: जी जरूर, दिक्कतें तो हर एक काम में आती हैं, बस हमें कभी हौसला नहीं हारना चाहिए। और ज्योति, आपका काम बहुत ही यूनिक है, तो क्या कभी आपके किसी कस्टमर से ऐसी कोई यूनिक डिमांड आई है जिसे आप देखकर या सोचकर ऐसा लगा हो कि अभी इसको कैसे करें हम?
2: हाँ, आई थी ऑफ कोर्स, ब्रेस्ट मिल्क आया था, सोच रही थी कैसे करूँ, फिर उसको थोड़ा सर्च किया कैसे करना है, फिर ब्रेस्ट मिल्क का पाउडर बनाया, तो फिर उसके बाद चीज बनाया, स्टार बनाया उससे, तो वो एक फ्रेम में प्रिजर्व किया।
0: अच्छा ऐश्वर्या, तो जैसे ज्योति के साथ एक यूनिक एक्सपीरियंस हुआ, आप एक कम्प्लीटली डिफरेंट शहर में गई रहने, यहाँ के मुकाबले आपको वहाँ क्या ऐसा कोई डिफरेंस दिखा हो या कोई एक्सपीरियंस हुआ हो?
1: यहाँ पे दो बड़े रोचक इंसिडेंट हैं जो मैं बताना चाहूंगी। जैसे खाने को लेकर, तो हमारे यहाँ पे रोटी बनाई जाती है, मुझे वैसे कभी खाना बनाना मैंने सीखा नहीं इधर, लेकिन मैं बैंगलोर चली गई जॉब के लिए और वहाँ का खाना बहुत ही अलग है हमारे इधर से, तो मुझे खाने में बड़ी दिक्कत आई। तो कभी मार्केट में निकल गए सब्जी लेने, सब्जी वाले को बोला कि हमें भिंडी चाहिए, तो उनको नहीं पता है भिंडी क्या होती है, तो उन्होंने मुझे कुछ और दे दिया। कह सकते हैं कि वहाँ पे थोड़ी दिक्कत आई थी, लेकिन धीरे धीरे वहाँ पे रह के मुझे खाना बनाना आ गया है, तो अभी वो चीज़ें सॉर्ट हो गई हैं। और दूसरा एक्सपीरियंस मैं ऐड करना चाहूँगी वहाँ की शादियों का, जो कि हमारे यहाँ की शादियों से बहुत अलग होती हैं। जैसे हमारे इधर शादियों में इतने गाने, बॉलीवुड, डीजे एंड बहुत लंबा सेलिब्रेशन चलता है, ऐसा साउथ इंडिया में ऐसा कुछ नहीं होता है, तो वहाँ बड़े ही सिंपल तरीके से लोग शादी रखते हैं और वहाँ पे ऐसे डीजे का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। उनका खाना भी बहुत सिंपल, केले के पत्ते के ऊपर आपको सब 10 तरह की चीज़ें सर्व करते हैं, और आप वहाँ पे जाके बड़ी सादगी से बैठ के वहाँ पे खाना खाइए और शादी वाली फोटो खिंचवा के, और सुबह ही आपका 11-12 बजे तक सब खत्म हो जाता है और उसके बाद आप घर आ जाओ। तो मुझे लगा कि ये बहुत प्रिंस था एक।
0: जी, नए अनुभव भी होना जीवन में बहुत जरूरी है। तो ज्योति, आपके प्रोडक्ट्स के बारे में अभी हमने सुना, क्या आपका बिजनेस रहा वो भी हमने जाना, काफी क्रिएटिव प्रोडक्ट्स हैं, तो अगर आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहे या कोई प्रोडक्ट परचेज करना चाहे तो हम किस तरीके से आपको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं?
2: मेरा इंस्टाग्राम पर पेज है @thewebart_, तो आप वहाँ पर जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं और मैं आपको अपनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगी, देन आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।
0: जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ज्योति, आपका काम बहुत ही क्रिएटिव है और जानकर अच्छा लगा, एक नई जानकारी मिली है आज आपसे हमें। तो ऐश्वर्या, अब हम आपकी तरफ आते हैं, आपकी पसंद का कोई गाना सुनना चाहेंगे और हमारे श्रोताओं को भी सुनाना चाहेंगे।
1: ये सॉन्ग मैं अपने नेशन के लिए, टू बिल्ड इट, उसको डिवोट करना चाहूंगी। मैं दो लाइनें गुनगुनाना भी चाहूंगी और चाहती हूँ ज्योति भी मुझे ज्वाइन करे इसके लिए।
3: अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना,

0: आप सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज पर नारी एक दर्पण। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दो युवतियाँ जिनसे हमारी बातचीत चल रही है, और अब हम हमारी बातचीत को युवाओं की तरफ लेकर जाएंगे और आजकल के ट्रेंड के बारे में भी बात करेंगे। ऐश्वर्या, आप इस वक्त आईटी सेक्टर में काम कर रही हैं और अभी हाल ही में आईटी में एक डेवलपमेंट हुई है, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, जिसकी वजह से युवाओं के बीच इस बात की काफी चर्चा है कि एआई कहीं ना कहीं हमारी जॉब को खत्म कर सकता है, मैन पावर को खत्म कर सकता है। तो इसके ऊपर आपका क्या विचार है?
1: मुझे लगता है एआई को अभी काफी टाइम हो चुका है हमारे लाइफ में आए हुए, लेकिन रिसेंटली अभी चैट जीपीटी आया है। यूथ में बहुत ही डर है कि हमारी जॉब से लेके चला जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि एआई और ह्यूमन दो अलग अलग चीजें हैं। कभी एआई टोटली रिप्लेस तो नहीं कर सकता है, बिकॉज ह्यूमन के पास ऑब्वियसली इमोशनल इंटेलिजेंस अपनी अलग होती है। तो जरूर कोई रिपीटेटिव टास्क होता है जो वो एआई हैंडल कर सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इससे यूथ को कोई डिस्करेज होने की जरूरत है। तो जो भी एआई बनाने की स्किल है वो हम लर्न कर सकते हैं, या जो भी टेक्नोलॉजी अभी ट्रेंड में आएगी वो हम यूज और लर्न कर सकते हैं, और इससे कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि इतनी जल्दी ह्यूमन का इंटरफेरेंस कम नहीं होने वाला है। मुझे लगता है हाँ, जरूर कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा, लेकिन हम अपने आप को उसके अकॉर्डिंग अपस्किल कर सकते हैं एंड कोई दिक्कत ऐसी खास आने वाली नहीं है।
0: जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि समय के साथ साथ खुद को डेवलप करना भी जरूरी है। और एक चीज मैं अब करियर से रिलेटेड पूछना चाहूंगी कि आज के समय में जो बच्चे हैं या किशोर हैं, वो पढ़ाई को लेकर और अपने करियर को लेकर बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, या कह लीजिए स्ट्रेस ले लेते हैं उस चीज का। तो अभी आप दोनों इस स्टेज से निकली हैं, तो आपने इस चीज को कैसे टैकल किया, और आज के बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे कि वो कैसे टैकल कर सकते हैं इसे?
1: मुझे लगता है हम लोग स्कूल में बहुत ही ज्यादा टेंशन लेते थे, इस टेस्ट में हम फेल हो गए, जेईई एग्जाम नहीं हुआ हमसे, और ये छोटी छोटी चीजें तब हमें बहुत बड़ी लगती थी। लेकिन अगर इस स्टेज पे आके कहें तो वो सब चीजें उस टाइम पे बड़ी होती हैं, लेकिन उससे कभी डीमोटिवेट होके वहाँ पे रुकना नहीं चाहिए बच्चों को। स्पेशली स्ट्रेस तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, और जो भी हो जितना हो बच्चों को एल्डर से सीनियर से कनेक्ट रहना चाहिए, और सोशलाइज कीजिए बाहर और चीजों को एक्सप्लोर कीजिए।
0: जी बिल्कुल। ज्योति, इसके बारे में आप क्या कहेंगी?
2: हाँ, जैसे पहले मेरे को वेब डिजाइनिंग प्रोडक्ट डेवलपमेंट में इंटरेस्ट था, और फिर मेरी फैमिली भी चाहती थी कि मैं आईटी फील्ड में जाऊँ। बचपन से वैसे मुझे इंटरेस्ट था आर्ट एंड क्राफ्ट में, क्योंकि थोड़ा हमारा माइंड चेंज होता रहता है जब हम छोटे होते हैं, तो फिर हम जैसे बढ़ते रहते तो हमें पता चलता है कि हाँ, हमें इसमें चीज में इंटरेस्ट है। तो जैसे हमें जिस चीज में इंटरेस्ट है ना, हम उसको दिल से करेंगे, पूरी लाइफ करेंगे, तो कोई स्ट्रेस भी नहीं होता उसमें, तो एंजॉय से मजे से काम करते रहते हैं सब।
0: जी बिल्कुल, अपनी पसंद का काम हो तो कभी बोरियत भी फील नहीं होती। ज्योति, आप एक बिजनेस वुमन हैं, साथ में मदर भी हैं, तो आप ये सब कैसे मैनेज करती हैं?
2: जो मेरा बेटा है ना, वो मेरे मम्मी पापा के पास रहता है एक्चुअली, तो मैं सारा काम मैनेज कर लेती हूँ। तो मेरी फैमिली इतनी सपोर्टिव है, और वो भी मेरी हेल्प करवाता है, कई बार पैकिंग करता है वो, बल्कि 2.5 ईयर्स का है फिर भी पैकिंग में हेल्प करवाता है। तो मैं उसके साथ आर्ट एंड क्राफ्ट की एक्टिविटीज करती हूँ। हमारा दोनों का एक पेज भी है कि इशू एंड मम्स,

0: भेजना चाहिए और पीछे से सपोर्ट पूरा देना चाहिए ताकि वो भी इंडिपेंडेंट हो सकें और उनको ऐसा ना कभी लाइफ में फील हो कि दे आर डिपेंडेंट ऑन समवन और वो बहुत किसी के ऊपर भार हैं। तो मैं चाहती हूँ कि विमेन भी अपना इंडिपेंडेंट होके घर भी संभाल सकें और अपना अपने आप पैरों पे खड़े हो सकें और अपने एक्सपेंसेस खुद हैंडल कर सकें।
1: जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि मैं अपना एक वर्क शुरू करना चाहती हूँ, जो बेरोजगार महिलाएं अपने घर बैठी हैं, उनको घर बैठे बैठे उनको कुछ काम देना है मुझे, तो ऐसे ही वो खुद भी कुछ, जैसे कोई अपना टिफिन बॉक्स वाला स्टार्ट कर सकता है काम, कोई अपना जो सिलाई होती है टेलर वगैरह वो कर सकते हैं, आजकल ऊन के स्वेटर बुनते हैं वो कर सकते हैं लोग, तो आगे जा मतलब ऐसे ही थोड़ा आपको खुद भी कदम बढ़ाने चाहिए। और ना मैं कहना चाहूंगी कि हर हस्बैंड को अपनी वाइफ को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि आपके बिना अगर सपोर्ट नहीं करोगे तो वो कुछ भी नहीं कर सकते।
2: जी बिल्कुल, सपोर्ट चाहे फैमिली का हो, हस्बैंड का हो, दोस्तों का हो, हर एक पड़ाव पर बहुत जरूरी होता है। अब मैं ये जानना चाहूंगी कि ये अम्बाला कैंट का पहला रेडियो स्टेशन है, तो आप दोनों को यहाँ पर, आप पहली बार आई हैं, तो यहाँ आकर आपको कैसा लगा?
1: यहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छा लगा। इवन अगर मेरे पापा होते, मतलब माय ग्रैंडफादर, वो ना रेडियो सुनते थे डेली, तो होते तो वो मेरा भी ये प्रोग्राम सुनते तो मुझे बहुत अच्छा लगता, उनको इतनी खुशी होती है कि हाँ मैं ये सुनता हूँ तो मेरी इसमें पोती मेरी यहाँ पर आई है, उसकी आवाज आई है, वो बहुत इंटरेस्ट लेते, इतने खुश होते।
0: और मेरे पापा रोज ऑफिस जाते हुए अम्बाला रेडियो जरूर सुनते हैं, तो वो मुझे बताते थे कि ऐसे अम्बाला का रेडियो अभी मैं सुनता हूँ और बहुत अच्छा आता है, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि मैं भी उनको इस रेडियो के थ्रू आवाज़ पहुँचा सकती हूँ, और मेरे लिए बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस था और मुझे बहुत खुशी हुई यहाँ पे अपने एक्सपीरियंस को बताकर।
2: जी, बड़ों का आशीर्वाद बहुत जरूरी होता है हमारे जीवन में, और मैं यही कहूंगी कि चाहे वो आपके साथ नहीं है लेकिन उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ है। बातें हमारे पास करने को बहुत है लेकिन समय की हमारे पास बहुत कमी है इस वक्त, तो इस कार्यक्रम को अंत की ओर लेकर जाऊंगी और चाहूंगी कि आप दोनों जो श्रोता हमें सुन रहे हैं उनको एक संदेश दें, एक मैसेज दें, जो भी आप देना चाहती हैं।
1: जैसे मैं अभी एक वर्किंग वुमेन भी हूँ और हाउ होम मेकर भी हूँ, तो काफ़ी परेशानियाँ होती हैं लाइफ में भी, तो हमें उसमें से निकल करना, हमें आगे कदम बढ़ाना है, और जब तक हम कदम नहीं बढ़ाएंगे ना तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, मतलब हमें खुद अपने लिए स्टैंड होना है तभी हम कुछ कर पाएंगे, अदरवाइज हमारे लिए कोई बैठा नहीं है कि हम ये आकर हमारे लिए करेगा, तो हमें खुद अपने लिए स्टैंड लेना है।
0: और मैं यूथ को ये बोलना चाहूँगी कि हमेशा अपने एल्डर से एंड अपने जो भी डिवोशनल बिलीव्स हैं उनसे कनेक्टेड रहें, और आपके पैर हमेशा ग्राउंड पे होने चाहिए और आंखें हमेशा ऊपर आसमान की तरफ देखते रहिए, और हमेशा सपने लेते रहिए और उनके लिए काम करते रहिए।
2: जी, सपने देखना भी बहुत ज़रूरी है और उनके लिए काम करना भी बहुत ज़रूरी है। ज्योति और ऐश्वर्या, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप दोनों यहाँ आए, हमारे श्रोताओं से रूबरू हुए, अपने बारे में आपने हमें बताया, हमारे श्रोताओं को बताया। मैं और रेडियो विदस्ता आप दोनों के कुशल भविष्य की कामना करता है। अब मुझे दीजिए इजाजत, अगले अंक में आपसे फिर मिलेंगे कुछ और नई कहानियाँ लेकर। अभी आपको छोड़े जा रही हूँ हमारे मेहमानों के पसंदीदा गीत के साथ, तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, खुशियाँ बांटते रहे और सुनते रहे रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
0: जय हिंद, जय भारत।
1: जय हिंद, जय भारत।

नमस्कार, मैं हूं रमेश मराठा। पिछले एक साल से आप रेडियो विदस्ता के प्रसारण 90.0 MHz पर अंबाला इंडिया से सुन रहे हैं। भाइयों और बहनों, रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी का। भारत सोपोरी की जेरी निगरानी में रेडियो विदस्ता से प्रसारित हो रहे हर एक कार्यक्रम काबिल तारीफ है। रेडियो विदस्ता की आवाज घर घर की आवाज। रेडियो विदस्ता की पूरी टीम को शुभकामनाएं आने वाले समय के लिए। शुभ

0: ताज महल, एक है लता मंगेशकर, एक है रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ ढाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला कैंट से हमारे प्रसारण सुनते रहिए।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

कल नहीं आना मुझे न बुलाना के मारेगा ताना जमाना। कल नहीं आना मुझे न बुलाना के मारेगा ताना जमाना।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

खातर अरियाणवी सोंग, करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन, सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मले दियो 7056413010 पा फोन।

हो जाए दिन। जय लक्ष्मी रानी झांसी की, जय सुभाष की, जय क्रांति की।

यो सा FM 90.0 MHz के प्रसारण रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का अमने उम्मीद से के हमारा प्रसारण आपने पसंद आ रहा होगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे गीत सुनन खातर सुनते रहिए FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता हम सफर।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।

0: 1857, वो सुबह जो मेरठ से पहले अंबाला में उगी। दोस्तों, स्कूल की किताबों में हमने पढ़ा है कि 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम अंबाला से शुरू हुआ। इसके शोध में जाने माने इतिहासकार डॉक्टर केसी यादव जैसे शोधकर्ता शामिल है। ये दावा करते हैं कि इस विद्रोह की असली शुरुआत अंबाला छावनी से हुई थी, मेरठ से भी कुछ घंटे पहले। तारीख थी 10 मई 1857, दिन रविवार। कहा जाता है कि सुबह करीब 9 बजे अंबाला में तैनात 60वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों ने खुलेआम बगावत का बिगुल बजा दिया और उसके कुछ घंटों बाद दोपहर में 5वीं नेटिव इन्फेंट्री भी उनके साथ आ खड़ी हुई। ये मेरठ की घटना से करीब 9 घंटे पहले की बात मानी जाती है। हालांकि अंग्रेज फौज सतर्क थी, इसलिए इस विद्रोह को उसी वक्त कुचल दिया गया। बाद में अप्रैल 1858 से मई 1858 के बीच अंबाला में 26 से ज्यादा सिपाहियों और सैनिकों को फांसी दी गई।
1: ये बताना जरूरी है कि 1857 का विद्रोह सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ, ये विषय इतिहासकारों के बीच आज भी चर्चा और शोध का विषय है। और हरियाणा सरकार व कई स्थानीय इतिहासकार अंबाला के इस दावे को मजबूती से आगे रखते हैं। इसी को यादगार बनाने के लिए अंबाला छावनी में जीटी रोड के पास रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर शहीद स्मारक बनाया जा रहा है। 22 एकड़ में फैला यह स्मारक, जिसमें एक 63.5 मीटर ऊंचा कमल के आकार का टावर है और इसके संग्रहालय में 22 गैलरियों के जरिए 1857 की पूरी कहानी अंबाला में विद्रोह की शुरुआत से लेकर हरियाणा भर में इसके फैलाव और देश भर के शहीदों तक दिखाई जाएगी।
0: तो दोस्तों, जब भी आप उस शहीद स्मारक के पास से गुजरे, याद रखिएगा, ये सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं बल्कि उन गुमनाम सिपाहियों की कुर्बानी की गवाही है, जिन्हें इतिहास ने अब तक वो जगह नहीं दी जो मिलनी चाहिए थी।
2: 57 की चिंगारी से आज की उड़ान अंबाला तो लिखता रहे।
0: अब बात करते हैं अंबाला छावनी जंक्शन की, पटरियों पर बसा इतिहास। अब बात करते हैं अंबाला की उस पहचान की, जिससे होकर हर दिन हजारों यात्री गुजरते हैं, अंबाला छावनी रेलवे जंक्शन। इस स्टेशन का इतिहास 1891 से जुड़ा है, जब ये अस्तित्व में आया, और तभी से ये उत्तर भारत के सबसे व्यस्त और सबसे पुराने जंक्शनों में गिना जाता रहा है। आज ये हरियाणा का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है और दिल्ली कालका लाइन, मुरादाबाद अंबाला लाइन, अंबाला अटारी लाइन जैसे कई महत्वपूर्ण रेल लाइनों का संगम बिंदु है। 7 प्लेटफॉर्म और 10 पटरियों वाला ये जंक्शन देश के व्यस्ततम स्टेशनों में शुमार किया जाता है।
1: यहाँ एक बात साफ कर देना जरूरी समझती हूँ। अंबाला के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि यह भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है, लेकिन तथ्यों की बात करें तो भारत का सबसे पहला रेलवे स्टेशन 1853 में मुंबई के बोरी बंदर से शुरू हुआ था। अंबाला छावनी जंक्शन जरूर उत्तर भारत के सबसे पुराने और सबसे महत्वपूर्ण स्टेशनों में से एक है और 19वीं सदी के अंत से ही ये इस क्षेत्र का प्रमुख यातायात केंद्र रहा है। लेकिन जब हम इतिहास बता रहे हों तो सही तथ्य बताना ही हमारा फर्ज है, इसलिए हम कहेंगे अंबाला जंक्शन भारत के सबसे पुराने और सबसे व्यस्त रेलवे केंद्रों में से एक है, ना कि सबसे पुराना।

0: अब हम बात करते हैं मंदिर, तालाब और मील के पत्थर की विरासत, जो आज भी जीवित है। अंबाला की विरासत सिर्फ किताबों में ही नहीं, बल्कि आज भी शहर की गलियों में सांस लेती है। चलिए इनमें से कुछ जगहों की आप सभी को सैर कराते हैं। सबसे पहले रानी का तालाब। अंबाला छावनी में स्थित यह लगभग 400 साल पुराना तालाब कहा जाता है, जिसको महाराजा रंजीत सिंह के दौर में बनवाया गया था। कहा जाता है कि उस दौर में दो तालाब खुदवाए गए थे, राजा का तालाब और रानी का तालाब। समय के साथ साथ राजा का तालाब अब पटेल पार्क में बदल चुका है, लेकिन रानी का तालाब आज भी अपने मूल रूप में मौजूद है, जिसके पास शिव मंदिर और देवी मंदिर है और जिसकी देखभाल आज भारतीय सेना करती है। पास ही ठाकुर द्वारा मंदिर भी है, जो सिख गुरु गुरबख्श सिंह की स्मृति में बनवाया गया बताया जाता है। और भगवान वामन का एक मंदिर भी है, जहां दशहरे पर सालाना मेला लगता है। इसके अलावा शहर में भवानी अम्बा माता का मंदिर और अंबिका देवी मंदिर जैसे प्राचीन मंदिर भी है, जो शहर की धार्मिक विरासत की कहानी कहते हैं।
1: अब बात कोस मीनार की। ये मुगल कालीन मील के पत्थर जैसी मीनारें जीटी रोड के किनारे किनारे यात्रियों को दूरी बताने के लिए बनवाई गई थी, और ये परंपरा शेर शाह सूरी के दौर से जुड़ी मानी जाती है। अंबाला में मौजूद यह कोस मीनार आज भी प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम के तहत एक संरक्षित स्मारक है। हालांकि वक्त की मार और आसपास के बाजार के दबाव के चलते इसे बेहतर देखभाल की सख्त जरूरत है।

0: जी हाँ श्रोताओ, आप सुन रहे हैं एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। आज हम आपके लिए ला रहे हैं अंबाला के इतिहास के कुछ पन्ने। आइए आप बात करते हैं अंबाला की थाली की, यानी स्वाद जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। दोस्तों अब बात दिल की, यानी अंबाला के खाने की, क्योंकि किसी भी शहर का इतिहास उसकी थाली में भी बसता है। अंबाला हरियाणा और पंजाब की सरहद पर बसा है, इसलिए यहाँ के खाने में दोनों परंपराओं का खूबसूरत मेल मिलता है। देसी घी, मक्खन और दूध से बनी चीजों की भरमार, यहाँ की मशहूर बाजरे की रोटी और आलू की सब्जी, स्वादिष्ट मिक्स दाल जिसमें अरहर, मूंग, मसूर और चने की दाल का मेल होता है, और बेसन मसाला रोटी जैसे व्यंजन आज भी घर घर में बनते हैं। और अंबाला छावनी के खाने की बात हो और पूरन सिंह का ढाबा का जिक्र ना हो, ये तो मुमकिन ही नहीं। कहा जाता है कि सरदार पूरन सिंह विभाजन के बाद पाकिस्तान से आकर अंबाला में बस गए और रेलवे स्टेशन के पास एक छोटे से टेंट में अपना ढाबा शुरू किया, जहां पर नॉन वेजिटेरियन डिश इतनी मशहूर हुई कि यहाँ तक कहा जाता है कि आशा भोसले जैसी हस्तियां भी यहाँ खाना खाने आई। आज उनके नाम पर अंबाला में कई सारे ढाबे चल रहे हैं। ये उनकी लोकप्रियता का ही सबूत है, भले ही असली पूरन सिंह के ढाबे को लेकर आज भी लोगों में बहस होती रहती है।
1: जीटी रोड किनारे बसे यह ढाबे सदियों पुरानी उस परंपरा का हिस्सा है, जब यह रास्ता व्यापारियों और यात्रियों का मुख्य मार्ग हुआ करता था। और आज भी अंबाला की गलियां गर्मा गर्म जलेबी और गुलाब जामुन की खुशबू से गुलजार

0: श्रोताओं, आज के इस अंतिम बाइट में हम बात करेंगे साइंस सिटी की। कम लोग जानते हैं ये तथ्य, और अब वो तथ्य जो शायद अंबाला के बाहर बहुत कम लोग जानते हैं। अंबाला को साइंस सिटी ऑफ इंडिया यानी भारत का विज्ञान शहर भी कहा जाता है। जी हाँ, ये सुनने में बड़े ही अजीब लगे, लेकिन अंबाला छावनी में सन 1914 से वैज्ञानिक और सर्जिकल उपकरण बनाने का काम चल रहा है। आज यहाँ 2000 से ज्यादा छोटी बड़ी इकाइयां, माइक्रोस्कोप, ग्लासवेयर, प्रयोगशाला उपकरण और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाती है, जो न सिर्फ भारत के स्कूल, कॉलेजों और अस्पतालों में बल्कि DRDO जैसे संस्थान और दुनिया भर के देशों में भी भेजे जाते हैं। यह उद्योग हर साल लगभग 3000 करोड़ रुपए का कारोबार करता है और 20,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिलता है। और हाँ, ये जरूर कहना चाहूंगा कि हमें और सभी अंबाला वासियों को इस बात पर गर्व है कि जो गत वर्ष में भारत देश का चंद्रयान मिशन कामयाब हुआ, उसमें भी अंबाला की साइंस सिटी की ओर से कुछ पुर्जे बना के भेजे गए थे।
1: तो दोस्तों, अंबाला सिर्फ छावनी और जंक्शन नहीं, ये विज्ञान और उद्योग का भी एक खामोश लेकिन ताकतवर केंद्र है।
0: तो दोस्तों, ये थी अंबाला के इतिहास की एक झलक। 1857 के विद्रोह की गूंज से लेकर रानी के तालाब की लहरों तक, कोस मीनार के खंडहरों से लेकर पूरन सिंह के ढाबे की खुशबू तक और साइंस सिटी की पहचान तक, ये शहर सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि सदियों की एक जीती जागती कहानी है। आप हमें अपने सुझाव, अपनी यादें और अंबाला से जुड़े किसे भी भेज सकते हैं, जो हम आगे आने वाले एपिसोड्स में आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि ये इतिहास सिर्फ किताबों का नहीं, आप सबका भी है। और ये जानकारी हमने जो हासिल की, अगर इसमें कोई त्रुटि है, उसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। आइए कुछ पंक्तियों से इस इतिहास की जानकारी का हम समापन करते हैं। पंक्तियां यूं है, महाभारत की माटी का जहां गूंजता है गौरव, महाभारत की माटी का जहां गूंजता है गौरव, अंबा देवी के आंचल में महका इतिहास मनोहर, प्रथम क्रांति की ज्वाला बनकर जो भारत पर छाया, उस अंबाला की धरती ने स्वाभिमान सिखाया, उधर दूर कश्मीर घाटी से बहती निर्मल धारा, वितस्ता का रूप मनोहर, पावन बहता खारा, एक तरफ वीरित्व की माटी, दूजी और भागीरथ प्रीत, अंबाला और वितस्ता गाए भारत के गीत, इतिहास का शौर्य यहाँ है वहां लहर का संगीत, युगो युगों से चली आ रही संस्कृति की यह रीत, युगो युगों से चली आ रही संस्कृति की यह रीत। मैं भारत सोपुरी आपसे लेता हूं विदा, लेकिन याद रखिएगा, रेडियो वितस्ता FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर हमेशा है आपका हम सफर जिंदगी का। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
1: और मुझे भी दीजिए इजाजत, आशा है आगे भी आप सभी श्रोताओं को अवगत कराते रहेंगे अंबाला के इतिहास के साथ। खुश रहिए और अपने क्षेत्र के बारे में जानते रहिए।

सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ओन योर फोन और मले दियो 7056413010 पा फोन।

0: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
1: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी? आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 7056413010 7054130010 पर। वितस्ता रेडियो, आपके जीवन का प्रवाह।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ ढाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विदस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

तुसी सुन रहे हो अंबाला दा अपना रेडियो रेडियो वित्तस्ता 90.0 मेगा हर्ट्ज़ ते सुनते रहो अपने

0: कुछ अच्छा सुनते हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो।
1: तुसी सुन रहे हो अंबाला दा अपना रेडियो।
2: कर दिया मेरे ते जो सर्दियां तेरे नाल फुटवा कराउण जो
1: रेडियो वितस्ता
2: असले पौन पटाके
1: सुन मेरे दिलदार 90.0 मेगा।

0: सुनते रहो अपने पसंदीदा की।
1: हम सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता, अंबाले का अपना रेडियो। सुनते रहो अपने पसंद के गाने।

0: आपने ट्यून इन किया है एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह, जो करता है प्रसारण अंबाला छावनी से। और आज का सफर थोड़ा अलग है। आज हम शहर से बाहर नहीं, बल्कि अपने ही शहर की गलियों में, अपने ही अतीत में झांकने वाले हैं। मैं हूं आपका रेडियो हम सफर भरत सोपोरी। मेरा दिल की गहराइयों से सभी अंबाला वासियों को और श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार।
1: मेरा भी प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त अनु। इस सफर में आपके साथ रहूंगी।
0: अंबाला सिर्फ एक कैंट टाउन नहीं, सिर्फ एक जंक्शन नहीं, बल्कि एक ऐसी धरती है जिसने आजादी की पहली चिंगारी देखी, जिसने सैकड़ों साल पुराने तालाबों से शहर की प्यास बुझाई, और जिसकी गलियों की खुशबू आज भी पूरे उत्तर भारत को बुलाती है। तो चलिए शुरू करते हैं अंबाला की कहानी अंबाला के शब्दों में। बात करते हैं नाम और नींव, अंबाला कहां से आया। सबसे पहले बात उस सवाल की जो हर अंबाला वासी से कभी न कभी पूछा गया हो, अंबाला नाम आया कहां से। इतिहासकार बताते हैं कि इस शहर को 14वीं सदी में अंबा राजपूत नाम के एक सरदार ने बसाया था, और माना जाता है कि शहर का नाम उन्हीं के नाम पर पड़ा। एक दूसरी मान्यता ये भी है कि ये नाम देवी भवानी अंबा के नाम से जुड़ा है, जिनका एक प्राचीन मंदिर आज भी इस शहर में मौजूद है। और एक तीसरी दिलचस्प कहानी ये भी कही जाती है कि इस इलाके में कभी आमों के बाग हुआ करते थे।
1: अब ये पूरे यकीन से नहीं कहा जा सकता कि इनमें से कौन सी कहानी 100% सही है। इतिहास में अक्सर कई किंवदंतियां साथ साथ चलती हैं, लेकिन इतना जरूर तय है कि ये धरती बहुत पुरानी है। यहाँ हुई खुदाइयों और मिले पाषाण उपकरणों से इतिहासकार यह मानते हैं कि ये क्षेत्र हड़प्पा सभ्यता के दौर में ही बसा हुआ था, और महाभारत काल से भी इसका नाता जोड़ा जाता है। तो दोस्तों, अंबाला की मिट्टी में सदियों की परतें दबी हैं, और अब बात करते हैं उस अध्याय की जिस पर हर अंबाला वासी को गर्व।

0: 1857 वो सुबह जो मेरठ से पहले अंबाला में उगी। दोस्तों, स्कूल की किताबों में हमने पढ़ा है कि 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम अंबाला से शुरू हुआ। इसके शोध में जाने माने इतिहासकार डॉक्टर केसी यादव जैसे शोधकर्ता शामिल है। ये दावा करते हैं कि इस विद्रोह की असली शुरुआत अंबाला छावनी से हुई थी, मेरठ से भी कुछ घंटे पहले। तारीख थी 10 मई 1857, दिन रविवार। कहा जाता है कि सुबह करीब 9 बजे अंबाला में तैनात 60वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों ने खुलेआम बगावत का बिगुल बजा दिया और उसके कुछ घंटों बाद दोपहर में 5वीं नेटिव इन्फेंट्री भी उनके साथ आ खड़ी हुई। ये मेरठ की घटना से करीब 9 घंटे पहले की बात मानी जाती है। हालांकि अंग्रेज फौज सतर्क थी, इसलिए इस विद्रोह को उसी वक्त कुचल दिया गया। बाद में अप्रैल 1858 से मई 1858 के बीच अंबाला में 26 से ज्यादा सिपाहियों और सैनिकों को फांसी दी गई।
1: ये बताना जरूरी है कि 1857 का विद्रोह सबसे पहले कहां शुरू हुआ, ये विषय इतिहासकारों के बीच आज भी चर्चा और शोध का विषय है। और हरियाणा सरकार व कई स्थानीय इतिहासकार अंबाला के इस दावे को मजबूती से आगे रखते हैं। इसी को यादगार बनाने के लिए अंबाला छावनी में जीटी रोड के पास रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर शहीद स्मारक बनाया जा रहा है। 22 एकड़ में फैला यह स्मारक, जिसमें 1.63 मीटर ऊंचा कमल के आकार का टावर है और इसके संग्रहालय में 22 गैलरियों के जरिए 1857 की पूरी कहानी अंबाला में विद्रोह की शुरुआत से लेकर हरियाणा भर में इसके फैलाव और देश भर के शहीदों तक दिखाई जाए।
0: तो दोस्तों, जब भी आप उस शहीद स्मारक के पास से गुजरे, याद रखिएगा, यह सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं बल्कि उन गुमनाम सिपाहियों की कुर्बानी की गवाही है, जिन्हें इतिहास ने अब तक वो जगह नहीं दी जो मिलनी चाहिए थी।
2: 57 की चिंगारी से आज की उड़ान अंबाला तू लिखता रहे।
0: अब बात करते हैं अंबाला छावनी जंक्शन की, पटरियों पर बसा इतिहास। अब बात करते हैं अंबाला की उस पहचान की, जिससे होकर हर दिन हजारों यात्री गुजरते हैं, अंबाला छावनी रेलवे जंक्शन। इस स्टेशन का इतिहास 1891 से जुड़ा है, जब ये अस्तित्व में आया, और तभी से ये उत्तर भारत के सबसे व्यस्त और सबसे पुराने जंक्शनों में गिना जाता रहा है। आज ये हरियाणा का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है और दिल्ली कालका लाइन, मुरादाबाद अंबाला लाइन, अंबाला अटारी लाइन जैसे कई महत्वपूर्ण रेल लाइनों का संगम बिंदु है। 7 प्लेटफॉर्म और 10 पटरियों वाला ये जंक्शन देश के व्यस्ततम स्टेशनों में शुमार किया जाता है।
1: यहाँ एक बात साफ कर देना जरूरी समझती हूँ, अंबाला के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि यह भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है, लेकिन तथ्यों की बात करें तो भारत का सबसे पहला रेलवे स्टेशन 1853 में मुंबई के बोरी बंदर से शुरू हुआ था। अंबाला छावनी जंक्शन जरूर उत्तर भारत के सबसे पुराने और सबसे महत्वपूर्ण स्टेशनों में से एक है और 19वीं सदी के अंत से ही ये इस क्षेत्र का प्रमुख यातायात केंद्र रहा है। लेकिन जब हम इतिहास बता रहे हो तो सही तथ्य बताना ही हमारा फर्ज है, इसलिए हम कहेंगे अंबाला जंक्शन भारत के सबसे पुराने और सबसे व्यस्त रेलवे केंद्रों में से एक है, ना कि सबसे पुराना।

0: अब हम बात करते हैं मंदिर, तालाब और मील के पत्थर की विरासत, जो आज भी जीवित है। अम्बाला की विरासत सिर्फ किताबों में ही नहीं, बल्कि आज भी शहर की गलियों में सांस लेती है। चलिए इनमें से कुछ जगहों की आप सभी को सैर कराते हैं। सबसे पहले रानी का तालाब। अम्बाला छावनी में स्थित यह लगभग 400 साल पुराना तालाब कहा जाता है, जिसको महाराजा रंजीत सिंह के दौर में बनवाया गया था। कहा जाता है कि उस दौर में दो तालाब खुदवाए गए थे, राजा का तालाब और रानी का तालाब। समय के साथ साथ राजा का तालाब अब पटेल पार्क में बदल चुका है, लेकिन रानी का तालाब आज भी अपने मूल रूप में मौजूद है, जिसके पास शिव मंदिर और देवी मंदिर है और जिसकी देखभाल आज भारतीय सेना करती है। पास ही ठाकुर द्वारा मंदिर भी है, जो सिख गुरु गुरबख्श सिंह की स्मृति में बनवाया गया बताया जाता है। और भगवान वामन का एक मंदिर भी है, जहां दशहरे पर सालाना मेला लगता है। इसके अलावा शहर में भवानी अम्बा माता का मंदिर और अंबिका देवी मंदिर जैसे प्राचीन मंदिर भी है, जो शहर की धार्मिक विरासत की कहानी कहते हैं।
1: अब बात कोस मीनार की। ये मुगल कालीन मील के पत्थर जैसी मीनारें जीटी रोड के किनारे किनारे यात्रियों को दूरी बताने के लिए बनवाई गई थी, और ये परंपरा शेर शाह सूरी के दौर से जुड़ी मानी जाती है। अम्बाला में मौजूद यह कोस मीनार आज भी प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम के तहत एक संरक्षित स्मारक है। हालांकि वक्त की मार और आसपास के बाजार के दबाव के चलते इसे बेहतर देखभाल की सख्त जरूरत है।

0: जी हाँ श्रोताओं, आप सुन रहे हैं एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। आज हम आपके लिए ला रहे हैं अंबाला के इतिहास के कुछ पन्ने। आइए आप बात करते हैं अंबाला की थाली की, यानी स्वाद जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। दोस्तों अब बात दिल की, यानी अंबाला के खाने की, क्योंकि किसी भी शहर का इतिहास उसकी थाली में भी बसता है। अंबाला हरियाणा और पंजाब की सरहद पर बसा है, इसलिए यहाँ के खाने में दोनों परंपराओं का खूबसूरत मेल मिलता है। देसी घी, मक्खन और दूध से बनी चीजों की भरमार, यहाँ की मशहूर बाजरे की रोटी और आलू की सब्जी, स्वादिष्ट मिक्स दाल जिसमें अरहर, मूंग, मसूर और चने की दाल का मेल होता है, और बेसन मसाला रोटी जैसे व्यंजन आज भी घर घर में बनते हैं। और अंबाला छावनी के खाने की बात हो और पूरन सिंह का ढाबा का जिक्र ना हो, ये तो मुमकिन ही नहीं। कहा जाता है कि सरदार पूरन सिंह विभाजन के बाद पाकिस्तान से आकर अंबाला में बस गए और रेलवे स्टेशन के पास एक छोटे से टेंट में अपना ढाबा शुरू किया, जहां पर नॉन वेजिटेरियन डिश इतनी मशहूर हुई कि यहाँ तक कहा जाता है कि आशा भोसले जैसी हस्तियां भी यहाँ खाना खाने आई। आज उनके नाम पर अंबाला में कई सारे ढाबे चल रहे हैं। ये उनकी लोकप्रियता का ही सबूत है, भले ही असली पूरन सिंह के ढाबे को लेकर आज भी लोगों में बहस होती रहती है।
1: जीटी रोड किनारे बसे यह ढाबे सदियों पुरानी उस परंपरा का हिस्सा है, जब यह रास्ता व्यापारियों और यात्रियों का मुख्य मार्ग हुआ करता था। और आज भी अंबाला की गलियां गर्मा गर्म जलेबी और गुलाब जामुन की खुशबू से गुलजार।

0: श्रोताओ, आज के इस अंतिम बाइट में हम बात करेंगे साइंस स्टी की। कम लोग जानते हैं ये तथ्य, और अब वो तथ्य जो शायद अंबाला के बाहर बहुत कम लोग जानते हैं। अंबाला को साइंस सिटी ऑफ इंडिया यानी भारत का विज्ञान शहर भी कहा जाता है। जी हाँ, ये सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन अंबाला छावनी में सन 1914 से वैज्ञानिक और सर्जिकल उपकरण बनाने का काम चल रहा है। आज यहाँ 2000 से ज्यादा छोटी बड़ी इकाइयां, माइक्रोस्कोप, ग्लासवेयर, प्रयोगशाला उपकरण और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाती है, जो न सिर्फ भारत के स्कूल, कॉलेजों और अस्पतालों में बल्कि DRDO जैसे संस्थान और दुनिया भर के देशों में भी भेजे जाते हैं। ये उद्योग हर साल लगभग 3,000 करोड़ रुपए का कारोबार करता है और 20,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिलता है। और हाँ, ये जरूर कहना चाहूंगा कि हमें और सभी अंबाला वासियों को इस बात पे गर्व है कि जो गत वर्ष में भारत देश का चंद्रयान मिशन कामयाब हुआ, उसमें भी अंबाला की साइंस सिटी की ओर से कुछ पुर्जे बना के भेजे गए थे।
1: तो दोस्तों, अंबाला सिर्फ छावनी और जंक्शन नहीं, ये विज्ञान और उद्योग का भी एक खामोश लेकिन ताकतवर केंद्र है।
0: तो दोस्तों, ये थी अंबाला के इतिहास की एक झलक। 1857 के विद्रोह की गूंज से लेकर रानी के तालाब की लहरों तक, कोस मीनार के खंडहरों से लेकर पूरन सिंह के ढाबे की खुशबू तक, और साइंस सिटी की

0: पहचान तक। ये शहर सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि सदियों की एक जीती जागती कहानी है। आप हमें अपने सुझाव, अपनी यादें और अंबाला से जुड़े किसे भी भेज सकते हैं जो हम आगे आने वाले एपिसोड्स में आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि ये इतिहास सिर्फ किताबों का नहीं आप सबका भी है। और ये जानकारी हमने जो हासिल की, अगर इसमें कोई त्रुटि है उसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। आइए कुछ पंक्तियों से इस इतिहास की जानकारी का हम समापन करते हैं। पंक्तियां यूं है, महाभारत की माटी का जहां गूंजता है गौरव, महाभारत की माटी का जहां गूंजता है गौरव, अंबा देवी के आंचल में महका इतिहास मनोहर, प्रथम क्रांति की ज्वाला बनकर जो भारत पर छाया, उस अंबाला की धरती ने स्वाभिमान सिखाया, उधर दूर कश्मीर घाटी से बहती निर्मल धारा, वितस्ता का रूप मनोहर, पावन बहता खारा, एक तरफ वीरित्व की माटी दूजी और भागीरथ प्रीत, अंबाला और वितस्ता गाए भारत के गीत, इतिहास का शौर्य यहाँ है वहां लहर का संगीत, युगो युगों से चली आ रही संस्कृति की यह रीत, युगो युगों से चली आ रही संस्कृति की यह रीत। मैं भारत सोपुरी आपसे लेता हूं विदा, लेकिन याद रखिएगा रेडियो वितस्ता FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर हमेशा है आपका हम सफर जिंदगी का। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
1: और मुझे भी दीजिए इजाजत, आशा है आगे भी आप सभी श्रोताओं को अवगत कराते रहेंगे अंबाला के इतिहास के साथ। खुश रहिए और अपने क्षेत्र के बारे में जानते रहिए। नमस्कार, जय।

0: सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मले दियो 7056413010 पा फोन।
1: आप सुन रहे हैं अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप जी सुन रहे हो 90.0 FM ते रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा। आप दा अपना रेडियो, आप जी दी आवाज दिल तो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा।

0: तुम सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता, अंबाले का अपना रेडियो। सुनते रहो अपने पसंद के गाने।
1: तुझ बोजान FM 90.0 रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी हुन। बोजान रूजिव पनिन पसंदीद बगत।
2: आप सुन रहे हैं अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्वा, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मैं हूं आपकी रेडियो हम सफर अन्नू, लेकर आई हूं आज के कृषि समाचार। सितंबर के अंत में सरसों की बिजाई के लिए अभी से खेत तैयार कर लें किसान। कृषि विशेषकों की सलाह पर बीजो उपचार के बाद करें बिजाई। सरसों रबी में उगाई जाने वाली फसलों में से एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। सरसों वर्गीय फसलों के तहत तोरिया, राया, तारामीरा, भूरी व पीली सरसों आती है। सरसों की बिजाई के लिए किसान खेत को अच्छे से तैयार कर लें। सितंबर के अंत में सरसों की बिजाई आरंभ हो जाती है। तिलहनों की बिजाई सिंचित क्षेत्रों में 1 किलोग्राम व बारानी क्षेत्रों में 1.25 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ लेकर कतारों में 45 सेंटीमीटर की दूरी पर करें। बिजाई पोरा विधि से इस प्रकार करें कि बीज 3 से 4 सेंटीमीटर से अधिक गहरा ना पड़े। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बी.आर. कंबोज ने बताया कि सरसों को तना गलन रोग से बचाने के लिए बिजाई से पहले बीज को 2 ग्राम कार्बनडाइजिंग नामक दवा से प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से उपचारित करें। बिजाई के समय सिंचित सरसों में 35 किलोग्राम यूरिया और 75 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट प्रति एकड़ के हिसाब से खेत में पोर दें। बाकी 35 किलोग्राम यूरिया पहली सिंचाई के समय डाल दें। बारानी इलाकों में सरसों के लिए 35 किलोग्राम यूरिया व 50 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट ही चुने। यदि फास्फोरस डीएपी द्वारा डालें तो खेत को तैयार करते समय ही 100 किलोग्राम जिप्सम प्रति एकड़ बिखेर कर खेत में मिला दें। यदि जमीन में जस्ते की कमी हो तो प्रति एकड़ बिजाई के समय 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट 20 से 25 किलोग्राम सूखी भुरभुरी मिट्टी में मिलाकर खेत को तैयार करते समय मिला दें। राया में एजोटोबैक्टर के टीके का प्रयोग लाभदायक रहता है। सरसों की इन किस्मों की करें बिजाई। सरसों अनुभाग में विशिष्ट वैज्ञानिक डॉक्टर राम अवतार ने बताया कि राया सरसों की RH30, RH8812, RH406, RH749, RH725, RH761, RH1424 और RH1706 व पीली सरसों की किस्म YSH401 ही बोएं। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय ने सरसों की एक और उन्नत किस्म RH1975 विकसित की है। यह किस्म सिंचित क्षेत्र में समय पर बिजाई के लिए एक उत्तम किस्म है। इसके अलावा सरसों की हाइब्रिड किस्म RHH2101 भी सिंचित क्षेत्रों में समय पर बिजाई के लिए विकसित की है। फसल में कीटनाशकों का छिड़काव दोपहर बाद करें। किसान सरसों की बीमारी की समय पर रहते अच्छी तरह पहचान कर उनका आसानी से रोकथाम कर सकते हैं। अगेती व पछेती सरसों की फसल में कई प्रकार की बीमारियों का प्रकोप हो सकता है, जिनकी किसान समय से पहचान कर रोकथाम कर फसल से अधिक पैदावार हासिल कर सकते हैं। किसान फसल की बीमारियों की रोकथाम के लिए कीटनाशक हमेशा सायंकाल को 3 बजे के बाद करें, ताकि मधुमक्खियों को कोई नुकसान ना हो, जो उपज बढ़ाने के लिए सहायक होती हैं। लहसुन की बिजाई का 15 अक्टूबर तक सही समय। अच्छी किस्मों का चयन करें। कंद बड़े होंगे, जमीन की 2 से 3 बार जुताई करके समतल जरूर कर लें। सर्दियों के मौसम में लहसुन की बेहतर पैदावार लेने के लिए सितंबर के अंतिम सप्ताह से लेकर 15 अक्टूबर तक लहसुन की बुवाई का समय सबसे उपयुक्त होता है। समय रहते की गई सही तैयारी, उन्नत किस्मों का चयन और उचित प्रबंध न केवल फसल को रोगों से बचाता है, बल्कि कंदों का आकार और वजन बढ़ाकर बंपर उत्पादन भी सुनिश्चित करता है। NHRDF सलारू केंद्र के प्रमुख डॉक्टर आलोक सिंह ने बताया कि सर्दियों की फसल के लिए क्षेत्र की जलवायु के अनुकूल उन्नत किस्मों एवं
प्रमाणित बीजों का ही चुनाव करें। लहसुन की अगेती बिजाई के लिए यमुना सफेद 1 G1, यमुना सफेद 2 G50, यमुना सफेद 3 G282, यमुना सफेद 4 G323 और यमुना पर्पल 10 G404 जैसी किस्में बेहतर मानी जाती हैं। इनके कंध ठोस, सफेद और बड़े आकार के होते हैं, जबकि यमुना पर्पल 10 का रंग पर्पल व धारी युक्त होता है, जिनकी भंडारण क्षमता अधिक होती है। 2 से 3 बार खेत की जुताई कर गोबर की खाद डालें। लहसुन एक कंद वर्गीय फसल है, इसलिए मिट्टी का भुरभुरा और हवादार होना बेहद आवश्यक है। सबसे पहले मिट्टी पलटने वाली हल से एक गहरी जुताई करें, जिससे पिछली फसल के अवशेष दब जाएं और जमीन की निचली परत खुल जाए। इसके बाद कल्टीवेटर एवं हैरो के माध्यम से 2 से 3 बार जुताई करके पाटा लगाएं, ताकि जमीन समतल हो जाए। इसके उपरांत रोटावेटर के माध्यम से मिट्टी को भुरभुरा कर लें। अंतिम जुताई के 15 से 20 दिन पहले प्रति एकड़ 8 से 10 टन अच्छी तरह गोबर की खाद या 2 से 3 टन वर्मी कंपोस्ट खेत के समान रूप से बिखेर कर मिला दें। जमीन में जल निकासी का अवशेष ध्यान रखें। खेत में जल भराव के कारण मिट्टी सख्त हो जाती है, इससे कंद के विकास में अवरोध होता है। रोपाई की उचित विधि। समतल खेत में 15 सेंटीमीटर ऊंची और उचित चौड़ाई की मेड़ें राइज्ड बेड तैयार करें। लहसुन की कलियों को 10 से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर और 3 से 4 सेंटीमीटर की गहराई पर लगाना चाहिए, जिससे कंधों को फैलने के लिए पर्याप्त जगह मिले। खाद एवं उर्वरक। फसल के लिए खाद की उचित मात्रा के रूप में नाइट्रोजन 100 किलोग्राम, फास्फोरस 50 किलोग्राम एवं पोटाश 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग करें। अच्छी पैदावार के लिए खड़ी फसल में बुवाई के 30, 45 एवं 60 दिनों के बाद 1% 19:19:19 पॉलीफीड 10 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर एवं 75, 90 व 105 दिन के बाद 2% मल्टी के नामक फोलियर फर्टिलाइजर का उपयोग जरूर करें। 74 की उम्र में भी खेती का जज्बा। 14 एकड़ में बागवानी व 19 एकड़ में प्राकृतिक खेती कर रहे बाग से ही फल ले रहे खरीदार, 33 एकड़ में बिना रासायनिक खाद के खेती कर रहे RS चौहान, राजस्थान सीमा से सट्टेखंड के गांव काटी में 2015 में 74 वर्षीय पूर्व DRG RS चौहान ने सेवानिवृत्ति के बाद प्राकृतिक खेती शुरू की। आज उन्होंने 33 एकड़ भूमि को पूरी तरह प्राकृतिक खेती और बागवानी का मॉडल बना दिया है। इसमें 14 एकड़ में बागवानी और 19 एकड़ में सरसों, चना व बाजरे की खेती की जा रही है। खास बात यह है कि खेती में रासायनिक खाद और कीटनाशकों का प्रयोग नहीं किया जाता, जिससे उपज खरीदने के लिए हरियाणा और राजस्थान से खरीदार सीधे खेत तक पहुंचते हैं। खेत में भूमिगत जल काफी गहराई पर है और पानी की उपलब्धता सीमित है। ऐसे में उन्होंने अधिक पानी मांगने वाली फसलों के बजाय कम पानी में तैयार होने वाली फसलों और फलदार पौधों को प्राथमिकता दी। बागवानी में 4 एकड़ में एप्पल, बेर, 2 एकड़ में अमरूद और 1-1 एकड़ में जामुन और बेल के पौधे लगाए हैं। सीधे खरीदार आने से उपज को बिचौलियों के बजाय सीधे बाजार तक पहुंचने में मदद मिलती है। पूर्व DRG चौहान के अनुसार प्राकृतिक खेती और बागवानी व्यवसायिक रूप से लाभकारी साबित हो रही है और इससे रासायनिक खाद पर होने वाला खर्चा भी बचता है। ये थे आज के कृषि समाचार। आशा करती हूँ आपको इन जानकारियों से लाभ होता होगा। अगर आपके पास कोई कृषि जानकारी है तो
आप हमें हमारे स्टूडियो के व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं ताकि हम सभी श्रोताओं तक पहुंचा सकें। स्टूडियो का नंबर है 7056413010। नंबर एक बार फिर 7056413010। अब मुझे दीजिए आज्ञा, मिलती हूँ अगले कृषि समाचार में। तब तक के लिए आप खुश रहें, उन्नत रहें। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।

0: आपने ट्यून इन किया है एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विस्तार। हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह जो करता है प्रसारण अंबाला छावनी से। और आज का सफर थोड़ा अलग है। आज हम शहर से बाहर नहीं बल्कि अपने ही शहर की गलियों में, अपने ही अतीत में झांकने वाले हैं। मैं हूं आपका रेडियो हम सफर भारत सोपोरी। मेरा दिल की गहराइयों से सभी अंबाला वासियों को और श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार।
1: मेरा भी प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त अनु। इस सफर में आपके साथ रहूंगी।
0: अंबाला सिर्फ एक कैंट टाउन नहीं, सिर्फ एक जंक्शन नहीं, बल्कि एक ऐसी धरती है जिसने आजादी की पहली चिंगारी देखी, जिसने सैकड़ों साल पुराने तालाबों से शहर की प्यास बुझाई और जिसकी गलियों की खुशबू आज भी पूरे उत्तर भारत को बुलाती है। तो चलिए शुरू करते हैं अंबाला की कहानी अंबाला के शब्दों में। बात करते हैं नाम और नींव, अंबाला कहां से आया। सबसे पहले बात उस सवाल की जो हर अंबाला वासी से कभी न कभी पूछा गया हो, अंबाला नाम आया कहां से। इतिहासकार बताते हैं कि इस शहर को 14वीं सदी में अम्बा राजपूत नाम के एक सरदार ने बसाया था और माना जाता है कि शहर का नाम उन्हीं के नाम पर पड़ा। एक दूसरी मान्यता ये भी है कि ये नाम देवी भवानी अम्बा के नाम से जुड़ा है, जिनका एक प्राचीन मंदिर आज भी इस शहर में मौजूद है। और एक तीसरी दिलचस्प कहानी ये भी कही जाती है कि इस इलाके में कभी आमों के बाग हुआ करते थे।
1: अब ये पूरे यकीन से नहीं कहा जा सकता कि इनमें से कौन सी कहानी 100% सही है। इतिहास में अक्सर कई किंवदंतियां साथ साथ चलती हैं, लेकिन इतना जरूर तय है कि ये धरती बहुत पुरानी है। यहाँ हुई खुदाइयों और मिले पाषाण उपकरणों से इतिहासकार यह मानते हैं कि ये क्षेत्र हड़प्पा सभ्यता के दौर में ही बसा हुआ था और महाभारत काल से भी इसका नाता जोड़ा जाता है। तो दोस्तों, अंबाला की मिट्टी में सदियों की परतें दबी हैं और अब बात करते हैं उस अध्याय की जिस पर हर अंबालावासी को गर्व है।

0: 1857, वो सुबह जो मेरठ से पहले अंबाला में उगी। दोस्तों, स्कूल की किताबों में हमने पढ़ा है कि 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम अंबाला से शुरू हुआ। इसके शोध में जाने माने इतिहासकार डॉक्टर केसी यादव जैसे शोधकर्ता शामिल है। ये दावा करते हैं कि इस विद्रोह की असली शुरुआत अंबाला छावनी से हुई थी, मेरठ से भी कुछ घंटे पहले। तारीख थी 10 मई 1857, दिन रविवार। कहा जाता है कि सुबह करीब 9 बजे अंबाला में तैनात 60वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों ने खुलेआम बगावत का बिगुल बजा दिया और उसके कुछ घंटों बाद दोपहर में 5वीं नेटिव इन्फेंट्री भी उनके साथ आ खड़ी हुई। ये मेरठ की घटना से करीब 9 घंटे पहले की बात मानी जाती है। हालांकि अंग्रेज फौज सतर्क थी, इसलिए इस विद्रोह को उसी वक्त कुचल दिया गया। बाद में अप्रैल 1858 से मई 1858 के बीच अंबाला में 26 से ज्यादा सिपाहियों और सैनिकों को फांसी दी गई।
1: ये बताना जरूरी है कि 1857 का विद्रोह सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ, ये विषय इतिहासकारों के बीच आज भी चर्चा और शोध का विषय है। और हरियाणा सरकार व कई स्थानीय इतिहासकार अंबाला के इस दावे को मजबूती से आगे रखते हैं। इसी को यादगार बनाने के लिए अंबाला छावनी में जीटी रोड के पास रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर शहीद स्मारक बनाया जा रहा है। 22 एकड़ में फैला यह स्मारक, जिसमें 1.63 मीटर ऊंचा कमल के आकार का टावर है और इसके संग्रहालय में 22 गैलरियों के जरिए 1857 की पूरी कहानी, अंबाला में विद्रोह की शुरुआत से लेकर हरियाणा भर में इसके फैलाव और देश भर के शहीदों तक दिखाई जाएगी।
0: तो दोस्तों, जब भी आप उस शहीद स्मारक के पास से गुजरे, याद रखिएगा, यह सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं बल्कि उन गुमनाम सिपाहियों की कुर्बानी की गवाही है, जिन्हें इतिहास ने अब तक वो जगह नहीं दी जो मिलनी चाहिए थी।
2: 57 की चिंगारी से आज की उड़ान अंबाला तो लिखता रहे।
0: अब बात करते हैं अंबाला छावनी जंक्शन की, पटरियों पर बसा इतिहास। अब बात करते हैं अंबाला की उस पहचान की, जिससे होकर हर दिन हजारों यात्री गुजरते हैं, अंबाला छावनी रेलवे जंक्शन। इस स्टेशन का इतिहास 1891 से जुड़ा है, जब ये अस्तित्व में आया, और तभी से ये उत्तर भारत के सबसे व्यस्त और सबसे पुराने जंक्शनों में गिना जाता रहा है। आज ये हरियाणा का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है और दिल्ली कालका लाइन, मुरादाबाद अंबाला लाइन, अंबाला अटारी लाइन जैसे कई महत्वपूर्ण रेल लाइनों का संगम बिंदु है। 7 प्लेटफॉर्म और 10 पटरियों वाला ये जंक्शन देश के व्यस्ततम स्टेशनों में शुमार किया जाता है।
1: यहाँ एक बात साफ कर देना जरूरी समझती हूँ। अंबाला के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि यह भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है, लेकिन तथ्यों की बात करें तो भारत का सबसे पहला रेलवे स्टेशन 1853 में मुंबई के बोरी बंदर से शुरू हुआ था। अंबाला छावनी जंक्शन जरूर उत्तर भारत के सबसे पुराने और सबसे महत्वपूर्ण स्टेशनों में से एक है और 19वीं सदी के अंत से ही ये इस क्षेत्र का प्रमुख यातायात केंद्र रहा है। लेकिन जब हम इतिहास बता रहे हों तो सही तथ्य बताना ही हमारा फर्ज है, इसलिए हम कहेंगे अंबाला जंक्शन भारत के सबसे पुराने और सबसे व्यस्त रेलवे केंद्रों में से एक है, ना कि सबसे पुराना।

0: अब हम बात करते हैं मंदिर, तालाब और मील के पत्थर की विरासत जो आज भी जीवित है। अम्बाला की विरासत सिर्फ किताबों में ही नहीं बल्कि आज भी शहर की गलियों में सांस लेती है। चलिए इनमें से कुछ जगहों की आप सभी को सैर कराते हैं। सबसे पहले रानी का तालाब। अम्बाला छावनी में स्थित यह लगभग 400 साल पुराना तालाब कहा जाता है, जिसको महाराजा रंजीत सिंह के दौर में बनवाया गया था। कहा जाता है कि उस दौर में दो तालाब खुदवाए गए थे, राजा का तालाब और रानी का तालाब। समय के साथ साथ राजा का तालाब अब पटेल पार्क में बदल चुका है, लेकिन रानी का तालाब आज भी अपने मूल रूप में मौजूद है, जिसके पास शिव मंदिर और देवी मंदिर है और जिसकी देखभाल आज भारतीय सेना करती है। पास ही ठाकुर द्वारा मंदिर भी है, जो सिख गुरु गुरबख्श सिंह की स्मृति में बनवाया गया बताया जाता है, और भगवान वामन का एक मंदिर भी है जहां दशहरे पर सालाना मेला लगता है। इसके अलावा शहर में भवानी अम्बा माता का मंदिर और अंबिका देवी मंदिर जैसे प्राचीन मंदिर भी है, जो शहर की धार्मिक विरासत की कहानी कहते हैं।
1: अब बात कोस मीनार की। ये मुगल कालीन मील के पत्थर जैसी मीनारें जीटी रोड के किनारे किनारे यात्रियों को दूरी बताने के लिए बनवाई गई थी, और ये परंपरा शेर शाह सूरी के दौर से जुड़ी मानी जाती है। अम्बाला में मौजूद यह कोस मीनार आज भी प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम के तहत एक संरक्षित स्मारक है। हालांकि वक्त की मार और आसपास के बाजार के दबाव के चलते इसे बेहतर देखभाल की सख्त जरूरत है।

0: जी हाँ श्रोताओ, आप सुन रहे हैं एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। आज हम आपके लिए ला रहे हैं अंबाला के इतिहास के कुछ पन्ने। आइए आप बात करते हैं अंबाला की थाली की, यानी स्वाद जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। दोस्तों अब बात दिल की, यानी अंबाला के खाने की, क्योंकि किसी भी शहर का इतिहास उसकी थाली में भी बसता है। अंबाला हरियाणा और पंजाब की सरहद पर बसा है, इसलिए यहाँ के खाने में दोनों परंपराओं का खूबसूरत मेल मिलता है। देसी घी, मक्खन और दूध से बनी चीजों की भरमार, यहाँ की मशहूर बाजरे की रोटी और आलू की सब्जी, स्वादिष्ट मिक्स दाल जिसमें अरहर, मूंग, मसूर और चने की दाल का मेल होता है, और बेसन मसाला रोटी जैसे व्यंजन आज भी घर घर में बनते हैं। और अंबाला छावनी के खाने की बात हो और पूरन सिंह का ढाबा का जिक्र ना हो, ये तो मुमकिन ही नहीं। कहा जाता है कि सरदार पूरन सिंह विभाजन के बाद पाकिस्तान से आकर अंबाला में बस गए और रेलवे स्टेशन के पास एक छोटे से टेंट में अपना ढाबा शुरू किया, जहां पर नॉन वेजिटेरियन डिश इतनी मशहूर हुई कि यहाँ तक कहा जाता है कि आशा भोसले जैसी हस्तियां भी यहाँ खाना खाने आई। आज उनके नाम पर अंबाला में कई सारे ढाबे चल रहे हैं। ये उनकी लोकप्रियता का ही सबूत है, भले ही असली पूरन सिंह के ढाबे को लेकर आज भी लोगों में बहस होती रहती है।
1: जीटी रोड किनारे बसे यह ढाबे सदियों पुरानी उस परंपरा का हिस्सा है, जब यह रास्ता व्यापारियों और यात्रियों का मुख्य मार्ग हुआ करता था। और आज भी अंबाला की गलियां गर्मा गर्म जलेबी और गुलाब जामुन की खुशबू से गुलजार

0: श्रोताओ, आज के इस अंतिम बाइट में हम बात करेंगे साइंस सिटी की। कम लोग जानते हैं ये तथ्य, और अब वो तथ्य जो शायद अंबाला के बाहर बहुत कम लोग जानते हैं। अंबाला को साइंस सिटी ऑफ इंडिया यानी भारत का विज्ञान शहर भी कहा जाता है। जी हाँ, ये सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन अंबाला छावनी में सन 1914 से वैज्ञानिक और सर्जिकल उपकरण बनाने का काम चल रहा है। आज यहाँ 2000 से ज्यादा छोटी बड़ी इकाइयां, माइक्रोस्कोप, ग्लासवेयर, प्रयोगशाला उपकरण और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाती है, जो न सिर्फ भारत के स्कूल, कॉलेजों और अस्पतालों में बल्कि DRDO जैसे संस्थान और दुनिया भर के देशों में भी भेजे जाते हैं। ये उद्योग हर साल लगभग 3,000 करोड़ रुपए का कारोबार करता है और 20,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिलता है। और हाँ, ये जरूर कहना चाहूंगा कि हमें और सभी अंबाला वासियों को इस बात पे गर्व है कि जो गत वर्ष में भारत देश का चंद्रयान मिशन कामयाब हुआ, उसमें भी अंबाला की साइंस सिटी की ओर से कुछ पुर्जे बना के भेजे गए थे।
1: तो दोस्तों, अंबाला सिर्फ छावनी और जंक्शन नहीं, ये विज्ञान और उद्योग का भी एक खामोश लेकिन ताकतवर केंद्र है।
0: तो दोस्तों, ये थी अंबाला के इतिहास की एक झलक। 1857 के विद्रोह की गूंज से लेकर रानी के तालाब की लहरों तक, कोस मीनार के खंडहरों से लेकर पूरन सिंह के ढाबे की खुशबू तक और साइंस सिटी की पहचान तक, ये शहर सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि सदियों की एक जीती जागती कहानी है। आप हमें अपने सुझाव, अपनी यादें और अंबाला से जुड़े किसे भी भेज सकते हैं, जो हम आगे आने वाले एपिसोड्स में आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि ये इतिहास सिर्फ किताबों का नहीं, आप सबका भी है। और ये जानकारी हमने जो हासिल की, अगर इसमें कोई त्रुटि है, उसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। आइए कुछ पंक्तियों से इस इतिहास की जानकारी का हम समापन करते हैं। पंक्तियां यूं है, महाभारत की माटी का जहां गूंजता है गौरव, महाभारत की माटी का जहां गूंजता है गौरव, अंबा देवी के आंचल में महका इतिहास मनोहर, प्रथम क्रांति की ज्वाला बनकर जो भारत पर छाया, उस अंबाला की धरती ने स्वाभिमान सिखाया, उधर दूर कश्मीर घाटी से बहती निर्मल धारा, वितस्ता का रूप मनोहर, पावन बहता खारा, एक तरफ वीरित्व की माटी दूजी और भागीरथ प्रीत, अंबाला और वितस्ता गाए भारत के गीत, इतिहास का शौर्य यहाँ है वहां लहर का संगीत, युगों युगों से चली आ रही संस्कृति की यह रीत, युगों युगों से चली आ रही संस्कृति की यह रीत। मैं भारत सोपुरी आपसे लेता हूं विदा, लेकिन याद रखिएगा, रेडियो वितस्ता FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर हमेशा है आपका हम सफर जिंदगी का। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
1: और मुझे भी दीजिए इजाजत, आशा है आगे भी आप सभी श्रोताओं को अवगत कराते रहेंगे अंबाला के इतिहास के साथ। खुश रहिए और अपने क्षेत्र के बारे में जानते रहिए। नमस्कार।

दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। आपके लिए लाया हूं सूत्र जीवन के, और हम आशा करते हैं कि आपके जीवन को हम सुगम बना सकें। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त विशाल शर्मा।
1: वरना ये दुनिया जीन नहीं देगी, खान नहीं देगी, पीन नहीं देगी, खेल कोई नया सुबह शाम कर प्यारे।
0: आज हम बात करेंगे कि सफल होने के लिए आपको अपनी पसंद और नापसंद से ऊपर उठना होगा। यह कहने का मेरा मतलब है कि आपको सफल होने के लिए अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलना होगा। अगर हम गौर करें तो इंसान आदतन आलसी होता है, उसकी नेचर में ही मस्ती है और मस्ती करने में उसको बहुत मजा आता है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी को कहा जाए 3 घंटे की फिल्म देखने के लिए तो वह बड़ी मस्ती में देखेगा, लेकिन अगर किताब पढ़ने के लिए कहा जाए तो 10 मिनट के अंदर ही उसको नींद आने लगती है, जबकि उसको पता है कि इस किताब में जिंदगी में सफल होने के सूत्र हैं, और यह भी कि इस किताब को पढ़ने से उसको जिंदगी में सफल होने की और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी, लेकिन नहीं, किताब पढ़ते पढ़ते उसको नींद आ जाएगी। इसलिए सफल होने के लिए आपको अपने साथ थोड़ा सा कठोर तो होना ही होगा, क्योंकि अगर आपको कुछ ऐसा हासिल करना है जो आज तक आपने नहीं किया, तो आपको कुछ ऐसे काम भी करने होंगे जो आपने आज तक नहीं किए। बस आज के लिए इतना ही, मिलता रहूंगा आपसे FM 90.0 पर, ताकि आपके दिल को छू सकूं। हमेशा खुश रहिए, खुशहाल रहिए। जय हिंद, जय भारत।

0: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
1: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी? आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 7056413010 7054130010 पर। वितस्ता रेडियो, आपके जीवन का प्रवाह।

सुनिए और सुनाइए, रेडियो विविधता सुनना भूलना चाहिए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।

0: हुआ, परेशान क्यों हो?
1: क्या बताऊं? मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी? आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 7056413010 7054130010 पर। वितस्ता रेडियो, आपके जीवन का प्रवाह।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

रेडियो वितस्ता FM 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामना संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।

0: आपने ट्यून इन किया है एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह जो करता है प्रसारण अंबाला छावनी से। और आज का सफर थोड़ा अलग है। आज हम शहर से बाहर नहीं बल्कि अपने ही शहर की गलियों में, अपने ही अतीत में झांकने वाले हैं। मैं हूं आपका रेडियो हमसफर भरत सोपोरी। मेरा दिल की गहराइयों से सभी अंबाला वासियों को और श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार।
1: मेरा भी प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त अनु। इस सफर में आपके साथ रहूंगी।
0: अंबाला सिर्फ एक कैंट टाउन नहीं, सिर्फ एक जंक्शन नहीं, बल्कि एक ऐसी धरती है जिसने आजादी की पहली चिंगारी देखी, जिसने सैकड़ों साल पुराने तालाबों से शहर की प्यास बुझाई और जिसकी गलियों की खुशबू आज भी पूरे उत्तर भारत को बुलाती है। तो चलिए शुरू करते हैं अंबाला की कहानी अंबाला के शब्दों में। बात करते हैं नाम और नींव, अंबाला कहां से आया। सबसे पहले बात उस सवाल की जो हर अंबाला वासी से कभी न कभी पूछा गया हो, अंबाला नाम आया कहां से। इतिहासकार बताते हैं कि इस शहर को 14वीं सदी में अम्बा राजपूत नाम के एक सरदार ने बसाया था और माना जाता है कि शहर का नाम उन्हीं के नाम पर पड़ा। एक दूसरी मान्यता ये भी है कि ये नाम देवी भवानी अम्बा के नाम से जुड़ा है, जिनका एक प्राचीन मंदिर आज भी इस शहर में मौजूद है। और एक तीसरी दिलचस्प कहानी ये भी कही जाती है कि इस इलाके में कभी आमों के बाग हुआ करते थे।
1: अब ये पूरे यकीन से नहीं कहा जा सकता कि इनमें से कौन सी कहानी 100% सही है। इतिहास में अक्सर कई किंवदंतियां साथ साथ चलती हैं, लेकिन इतना जरूर तय है कि ये धरती बहुत पुरानी है। यहाँ हुई खुदाइयों और मिले पाषाण उपकरणों से इतिहासकार यह मानते हैं कि ये क्षेत्र हड़प्पा सभ्यता के दौर में ही बसा हुआ था और महाभारत काल से भी इसका नाता जोड़ा जाता है। तो दोस्तों, अंबाला की मिट्टी में सदियों की परतें दबी हैं और अब बात करते हैं उस अध्याय की जिस पर हर अंबालावासी को गर्व है।

0: 1857, वो सुबह जो मेरठ से पहले अंबाला में उगी। दोस्तों, स्कूल की किताबों में हमने पढ़ा है कि 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम अंबाला से शुरू हुआ। इसकी शोध में जाने माने इतिहासकार डॉक्टर के सी यादव जैसे शोधकर्ता शामिल है। ये दावा करते हैं कि इस विद्रोह की असली शुरुआत अंबाला छावनी से हुई थी, मेरठ से भी कुछ घंटे पहले। तारीख थी 10 मई 1857, दिन रविवार। कहा जाता है कि सुबह करीब 9 बजे अंबाला में तैनात 60वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों ने खुलेआम बगावत का बिगुल बजा दिया और उसके कुछ घंटों बाद दोपहर में 5वीं नेटिव इन्फेंट्री भी उनके साथ आ खड़ी हुई। ये मेरठ की घटना से करीब 9 घंटे पहले की बात मानी जाती है। हालांकि अंग्रेज फौज सतर्क थी, इसलिए इस विद्रोह को उसी वक्त कुचल दिया गया। बाद में अप्रैल 1858 से मई 1858 के बीच अंबाला में 26 से ज्यादा सिपाहियों और सैनिकों को फांसी दी गई।
1: ये बताना जरूरी है कि 1857 का विद्रोह सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ, ये विषय इतिहासकारों के बीच आज भी चर्चा और शोध का विषय है। और हरियाणा सरकार व कई स्थानीय इतिहासकार अंबाला के इस दावे को मजबूती से आगे रखते हैं। इसी को यादगार बनाने के लिए अंबाला छावनी में जीटी रोड के पास रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर शहीद स्मारक बनाया जा रहा है। 22 एकड़ में फैला यह स्मारक, जिसमें 1.63 मीटर ऊंचा कमल के आकार का टावर है और इसके संग्रहालय में 22 गैलरियों के जरिए 1857 की पूरी कहानी, अंबाला में विद्रोह की शुरुआत से लेकर हरियाणा भर में इसके फैलाव और देश भर के शहीदों तक दिखाई जाएगी।
0: तो दोस्तों, जब भी आप उस शहीद स्मारक के पास से गुजरे, याद रखिएगा, यह सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं बल्कि उन गुमनाम सिपाहियों की कुर्बानी की गवाही है, जिन्हें इतिहास ने अब तक वो जगह नहीं दी जो मिलनी चाहिए थी।
2: 57 की चिंगारी से आज की उड़ान अंबाला तो लिखता रहे।
0: अब बात करते हैं अंबाला छावनी जंक्शन की, पटरियों पर बसा इतिहास। अब बात करते हैं अंबाला की उस पहचान की, जिससे होकर हर दिन हजारों यात्री गुजरते हैं, अंबाला छावनी रेलवे जंक्शन। इस स्टेशन का इतिहास 1891 से जुड़ा है, जब ये अस्तित्व में आया, और तभी से ये उत्तर भारत के सबसे व्यस्त और सबसे पुराने जंक्शनों में गिना जाता रहा है। आज ये हरियाणा का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है और दिल्ली कालका लाइन, मुरादाबाद अंबाला लाइन, अंबाला अटारी लाइन जैसे कई महत्वपूर्ण रेल लाइनों का संगम बिंदु है। 7 प्लेटफॉर्म और 10 पटरियों वाला ये जंक्शन देश के व्यस्ततम स्टेशनों में शुमार किया जाता है।
1: यहाँ एक बात साफ कर देना जरूरी समझती हूँ। अंबाला के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि यह भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है, लेकिन तथ्यों की बात करें तो भारत का सबसे पहला रेलवे स्टेशन 1853 में मुंबई के बोरी बंदर से शुरू हुआ था। अंबाला छावनी जंक्शन जरूर उत्तर भारत के सबसे पुराने और सबसे महत्वपूर्ण स्टेशनों में से एक है और 19वीं सदी के अंत से ही ये इस क्षेत्र का प्रमुख यातायात केंद्र रहा है। लेकिन जब हम इतिहास बता रहे हों तो सही तथ्य बताना ही हमारा फर्ज है, इसलिए हम कहेंगे अंबाला जंक्शन भारत के सबसे पुराने और सबसे व्यस्त रेलवे केंद्रों में से एक है, ना कि सबसे पुराना।

0: अब हम बात करते हैं मंदिर, तालाब और मील के पत्थर की विरासत, जो आज भी जीवित है। अंबाला की विरासत सिर्फ किताबों में ही नहीं, बल्कि आज भी शहर की गलियों में सांस लेती है। चलिए इनमें से कुछ जगहों की आप सभी को सैर कराते हैं। सबसे पहले रानी का तालाब। अंबाला छावनी में स्थित यह लगभग 400 साल पुराना तालाब कहा जाता है, जिसको महाराजा रंजीत सिंह के दौर में बनवाया गया था। कहा जाता है कि उस दौर में दो तालाब खुदवाए गए थे, राजा का तालाब और रानी का तालाब। समय के साथ साथ राजा का तालाब अब पटेल पार्क में बदल चुका है, लेकिन रानी का तालाब आज भी अपने मूल रूप में मौजूद है, जिसके पास शिव मंदिर और देवी मंदिर है और जिसकी देखभाल आज भारतीय सेना करती है। पास ही ठाकुर द्वारा मंदिर भी है, जो सिख गुरु गुरबख्श सिंह की स्मृति में बनवाया गया बताया जाता है, और भगवान वामन का एक मंदिर भी है, जहां दशहरे पर सालाना मेला लगता है। इसके अलावा शहर में भवानी अम्बा माता का मंदिर और अंबिका देवी मंदिर जैसे प्राचीन मंदिर भी है, जो शहर की धार्मिक विरासत की कहानी कहते हैं।
1: अब बात कोस मीनार की। ये मुगल कालीन मील के पत्थर जैसी मीनारें जीटी रोड के किनारे किनारे यात्रियों को दूरी बताने के लिए बनवाई गई थी, और ये परंपरा शेर शाह सूरी के दौर से जुड़ी मानी जाती है। अंबाला में मौजूद यह कोस मीनार आज भी प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम के तहत एक संरक्षित स्मारक है। हालांकि वक्त की मार और आसपास के बाजार के दबाव के चलते इसे बेहतर देखभाल की सख्त जरूरत है।

0: जी हाँ श्रोताओं, आप सुन रहे हैं एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। आज हम आपके लिए ला रहे हैं अंबाला के इतिहास के कुछ पन्ने। आइए आप बात करते हैं अंबाला की थाली की, यानी स्वाद जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। दोस्तों अब बात दिल की, यानी अंबाला के खाने की, क्योंकि किसी भी शहर का इतिहास उसकी थाली में भी बसता है। अंबाला हरियाणा और पंजाब की सरहद पर बसा है, इसलिए यहाँ के खाने में दोनों परंपराओं का खूबसूरत मेल मिलता है। देसी घी, मक्खन और दूध से बनी चीजों की भरमार, यहाँ की मशहूर बाजरे की रोटी और आलू की सब्जी, स्वादिष्ट मिक्स दाल जिसमें अरहर, मूंग, मसूर और चने की दाल का मेल होता है, और बेसन मसाला रोटी जैसे व्यंजन आज भी घर घर में बनते हैं। और अंबाला छावनी के खाने की बात हो और पूरन सिंह का ढाबा का जिक्र ना हो, ये तो मुमकिन ही नहीं। कहा जाता है कि सरदार पूरन सिंह विभाजन के बाद पाकिस्तान से आकर अंबाला में बस गए और रेलवे स्टेशन के पास एक छोटे से टेंट में अपना ढाबा शुरू किया, जहां पर नॉन वेजिटेरियन डिश इतनी मशहूर हुई कि यहाँ तक कहा जाता है कि आशा भोसले जैसी हस्तियां भी यहाँ खाना खाने आई। आज उनके नाम पर अंबाला में कई सारे ढाबे चल रहे हैं। ये उनकी लोकप्रियता का ही सबूत है, भले ही असली पूरन सिंह के ढाबे को लेकर आज भी लोगों में बहस होती रहती है।
1: जीटी रोड किनारे बसे यह ढाबे सदियों पुरानी उस परंपरा का हिस्सा है, जब यह रास्ता व्यापारियों और यात्रियों का मुख्य मार्ग हुआ करता था। और आज भी अंबाला की गलियां गर्मा गर्म जलेबी और गुलाब जामुन की खुशबू से गुलजार।

श्रोताओ, आज के इस अंतिम बाइट में हम बात करेंगे साइंस सिटी की। कम लोग जानते हैं ये तथ्य, और अब वो तथ्य जो शायद अंबाला के बाहर बहुत कम लोग जानते हैं। अंबाला को साइंस सिटी ऑफ इंडिया यानी भारत का विज्ञान शहर भी कहा जाता है। जी हाँ,

0: रोजगार भी मिलता है। और हाँ, ये जरूर कहना चाहूंगा कि हमें और सभी अंबाला वासियों को इस बात पर गर्व है कि जो गत वर्ष में भारत देश का चंद्रयान मिशन कामयाब हुआ, उसमें भी अंबाला की साइंस सिटी की ओर से कुछ पुर्जे बना के भेजे गए थे।
1: तो दोस्तों, अंबाला सिर्फ छावनी और जंक्शन नहीं, ये विज्ञान और उद्योग का भी एक खामोश लेकिन ताकतवर केंद्र है।
0: तो दोस्तों, ये थी अंबाला के इतिहास की एक झलक। 1857 के विद्रोह की गूंज से लेकर रानी के तालाब की लहरों तक, कोस मीनार के खंडहरों से लेकर पूरन सिंह के ढाबे की खुशबू तक और साइंस सिटी की पहचान तक, ये शहर सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि सदियों की एक जीती जागती कहानी है। आप हमें अपने सुझाव, अपनी यादें और अंबाला से जुड़े किसे भी भेज सकते हैं, जो हम आगे आने वाले एपिसोड्स में आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि ये इतिहास सिर्फ किताबों का नहीं, आप सबका भी है। और ये जानकारी हमने जो हासिल की, अगर इसमें कोई त्रुटि है उसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। आइए कुछ पंक्तियों से इस इतिहास की जानकारी का हम समापन करते हैं। पंक्तियां यूं है, महाभारत की माटी का जहां गूंजता है गौरव, महाभारत की माटी का जहां गूंजता है गौरव, अंबा देवी के आंचल में महका इतिहास मनोहर, प्रथम क्रांति की ज्वाला बनकर जो भारत पर छाया, उस अंबाला की धरती ने स्वाभिमान सिखाया, उधर दूर कश्मीर घाटी से बहती निर्मल धारा, वितस्ता का रूप मनोहर, पावन बहता खारा, एक तरफ वीरित्व की माटी दूजी और भागीरथ प्रीत, अंबाला और वितस्ता गाए भारत के गीत, इतिहास का शौर्य यहाँ है वहां लहर का संगीत, युगो युगो से चली आ रही संस्कृति की ये रीत, युगो युगो से चली आ रही संस्कृति की ये रीत। मैं भारत सोपुरी आपसे लेता हूं विदा, लेकिन याद रखिएगा, रेडियो वितस्ता FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर हमेशा है आपका हम सफर जिंदगी का। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
1: और मुझे भी दीजिए इजाजत, आशा है आगे भी आप सभी श्रोताओं को अवगत कराते रहेंगे अंबाला के इतिहास के साथ। खुश रहिए और अपने क्षेत्र के बारे में जानते रहिए।

आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की ओर से सभी सामुदायिक रेडियो को कहा गया कि वो साइबर अपराध पर अपने श्रोताओं को जागरूक करें। ये कार्य हमने पहले भी किया है और आज हम एक बार आपको फिर कुछ जानकारी देना चाहते हैं। आजकल ऑनलाइन निवेश से जुड़ी धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया विज्ञापनों, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए गारंटीड रिटर्न का झूठा वादा करते हैं। कई बार ये लोग मशहूर हस्तियों या नेताओं के डीप फेक वीडियो भी दिखाते हैं। अगर कोई ऑनलाइन दोस्त या डेटिंग ऐप पर मिला व्यक्ति निवेश का ऑफर दे तो तुरंत सतर्क हो जाए। निवेश किसी भी तरह का हो सकता है, शेयर बाजार, क्रिप्टो या सोना। ठग आपसे फर्जी मोबाइल ऐप या वेबसाइट इस्तेमाल करवाते हैं, जहां पैसा बढ़ता हुआ सिर्फ दिखाई देता है लेकिन असल में पैसा धोखेबाजों के पास चला जाता है। याद रखिए, ना कोई सेलिब्रिटी और ना ही सरकार कभी भी निवेश पर गारंटीड रिटर्न दे सकती है। आपको इस विषय पर सतर्क रहना होगा। जो भी हमें इस समय सुन रहे हैं, चाहे वो वृद्ध है चाहे वो युवा है, ये मैसेज सभी के लिए है। अगर युवा सुन रहे हैं तो इस बात को अपने दोस्तों, अपने परिवार में वृद्ध जनों को, सीनियर सिटीजन को या आपके आसपास जितने भी लोग हैं उन्हें भी सचेत करें। भारत सरकार का इनिशिएटिव यही है कि हम सब सतर्क रहें और हमारी मेहनत की कमाई किसी ठग के हाथ में ना चली जाए। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं। हम आपको नंबर एक बार फिर बताते हैं, अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। ये जानकारी आपको हम दे रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के सौजन्य से। होशियार रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहें अपने पसंदीदा गीत।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी। आज वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के अवसर पर हमारे साथ हैं डॉक्टर राजीव भारद्वाज मुलाना से। स्वागत है डॉक्टर राजीव भारद्वाज FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर।
1: थैंक यू सर।
0: मेरा पहला सवाल आपसे होगा, क्या हाइपरटेंशन सच में हार्ट अटैक का कारण बन सकता है?
1: जी, हार्ट अटैक के कारणों को हम दो टाइप से डिवाइड करते हैं। एक तो होता है जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स है, एक नॉन मॉडिफाइबल। तो नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिसको हम कुछ नहीं कर सकते, जैसे मेल सेक्स है, मेल होना ही एक मेन कारण है हार्ट अटैक मेल में ज्यादा होता है। सिमिलरली एज, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती रहती है हमारे हार्ट अटैक का चांसेस बढ़ते रहते हैं। और तीसरा जो है नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर जिसको हम बोलते हैं, वो फैमिली हिस्ट्री। अगर आपकी फैमिली में किसी को हार्ट अटैक हुआ है, आपके हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, पर इनका आप कुछ नहीं कर सकते। दूसरे होते हैं मॉडिफाइबल, जैसे डायबिटीज हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, हाई कोलेस्ट्रॉल हो गया, आपका लाइफस्टाइल हो गया। तो ये सारे सेडेंटरी लाइफस्टाइल जिसमें आप ज्यादा चलते फिरते नहीं है, बैठे रहते हैं, तो ये कारण होते हैं। तो ये जो हाइपरटेंशन है ये मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है, मींस कि अगर आप बीपी कंट्रोल रखते हैं तो आपका जो हार्ट अटैक के चांसेस कम हो जाते हैं।
0: जी डॉक्टर साहब, क्या एनर्जी ड्रिंक और जंक फूड हमारे दिल को नुकसान पहुंचा रहे हैं?
1: बिल्कुल, ये आजकल का लाइफस्टाइल जो है, खासकर हमारे यंगस्टर्स, ये एनर्जी ड्रिंक्स और फास्ट फूड में बहुत विश्वास करते हैं। तो जैसे एनर्जी ड्रिंक से इससे हमारी सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ती है, जिससे ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, हार्ट अटैक का डर बढ़ जाता है, और इसमें शुगर भी ज्यादा होती है, सोडियम भी ज्यादा होता है इनके फास्ट फूड में। जब शुगर ज्यादा होता है तो इनको डायबिटीज होने का डर रहता है, ट्राइग्लिसराइड लेवल भी इनसे बढ़ते हैं, और इसमें रिफाइंड शुगर, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा आता है, जिससे हमारा इमीडिएटली शुगर बढ़ जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है, तो हमें हार्ट अटैक का भी डर रहता है और साथ में ब्लड प्रेशर होने का भी डर रहता है इनसे।
0: जी डॉक्टर साहब, अगला प्रश्न मैं आपसे करूं तो प्रश्न ये है कि कोलेस्ट्रॉल हार्ट अटैक में कैसे योगदान देता है?
1: ये कोलेस्ट्रॉल जो है, हमें अगर आम भाषा में बोले, एक बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, एक गुड कोलेस्ट्रॉल होता है।
0: जी।
1: तो हमारा जो एचडीएल जिसको हम बोलते हैं, वो गुड कोलेस्ट्रॉल है, तो ये हमें हार्ट अटैक से बचाता है। तो जितना ज्यादा हमारा एचडीएल लेवल होगा, उतने ज्यादा हमें प्रोटेक्शन मिलती है हार्ट अटैक से। लेकिन एक एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जिसे हम बोलते हैं, उसे हम आम भाषा में बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल है, ये हमारी जो खून की धमनियां है जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, या और भी धमनियां जो है उनकी, जैसे ब्रेन को ब्लड जाता है, ये इन धमनियों में ये जम जाते हैं, और जिसको ऑक्सीडाइज एलडीएल बोलते हैं, वो हमारा मेन कारण होता है जो प्लाक फॉर्मेशन ब्लड वेसल्स के अंदर जो है वो नैरिंग होती है, और एक मेन कारण जो है इनका नैरिंग होती है, और जब वो हार्ट अटैक होता है तो उस टाइम ये रक्त इंटीमा जो है, जो ब्लड कवरिंग है, ब्लड वेसल की कवरिंग है, वो फटती है, और वो कोलेस्ट्रॉल जो है वो ब्लड वेसल में आ जाता है, उसके ऊपर रेड ब्लड डिपॉजिट होते हैं, क्लॉट बन जाता है और हार्ट अटैक हो जाता है। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो हमारा मेन एम ट्रीटमेंट का, बाकी चीजों के साथ हमें एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बहुत कम करना पड़ता है, बचाने के लिए भी और हार्ट अटैक की ट्रीटमेंट के लिए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगला प्रश्न आपसे करता हूँ, क्या अपनी मर्जी से बीपी की दवा बंद करना खतरनाक है?
1: ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, क्योंकि बीपी एक ऐसी चीज है जिसके बहुत सिम्टम्स नहीं होते।
0: जी।
1: तो अगर किसी चीज के सिम्टम्स, जैसे किसी को आर्थराइटिस है,
0: जी,
1: क्योंकि उसे दर्द होती है, वो मेडिसिन लेता रहता है। जिस पेशेंट को डायबिटीज है, उसको पेशाब ज्यादा आता है, रात रात को उठना पड़ता है, तो वो भी मेडिसिन की, वो भी दवाई लेता रहता है। लेकिन ब्लड प्रेशर के ज्यादा सिम्टम्स नहीं होते, तो अगर हम किसी को प्रिस्क्राइब भी करते हैं, वो थोड़े दिनों बाद छोड़ देता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये, क्योंकि ब्लड प्रेशर को हम साइलेंट किलर बोलते हैं, बीपी हाई होने से आपके हार्ट अटैक का डर होता है, आपको पैरालिसिस का डर रहता है, लॉन्ग टर्म में बीपी हाई रहता है तो आपकी किडनी खराब हो सकती है, आपको ब्लड वेसल में एनरिज्म फॉर्मेशन होती है, तो बहुत रिस्क है ब्लड प्रेशर का हाई होने का। और जो इसलिए ज्यादा रहता है कि हम ब्लड प्रेशर या तो चेक ही नहीं कराते हैं, अगर करवाते हैं तो दवाई अगर हमें प्रिस्क्राइब कर रखी है, उसे अपने आप ही छोड़ देते हैं कि हमें लगता है कि हमें कोई सिम्टम नहीं, इसलिए बीपी कंट्रोल।
0: क्या डॉक्टर साहब, जब हम बीपी की दवाई खाना शुरू करते हैं किसी भी एज में और किसी भी समय, क्या उसको कंटिन्यू रखना बहुत जरूरी है?
1: ये डिपेंड करता है आपका बीपी कितना ज्यादा है। जैसे अगर हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें, फॉर एग्जांपल फैटी फूड है उस पे कंट्रोल करें, और जैसे आपने अभी बताया एनर्जी ड्रिंक्स और फास्ट फूड लेना बंद करें और डेली एक्सरसाइज करें 4 से 6 किलोमीटर प्रतिदिन एटलीस्ट 4-5 times अ डे वीक, तो इससे हमारा ब्लड प्रेशर इन सब चीजों से कम होता है। तो अगर आपका बीपी बॉर्डर लाइन में है, थोड़ा सा ज्यादा है, तो ये भी हो सकता है कि कुछ दिनों तक मेडिसिन लेने के बाद जब आप लाइफस्टाइल में अपना चेंजेस करते हैं तो आपका बीपी कंट्रोल हो जाए और आपको दवाइयों की जरूरत ना पड़े। पर अगर आपका बीपी ज्यादा रहता है तो इन सब चीजों से आपका कुछ बीपी कम होगा, आपकी दवाइयों की रिक्वायरमेंट कम होगी, बट ये बंद शायद ना करनी पड़े।
0: आखिरी प्रश्न मैं आपसे करूंगा, क्या खराब नींद की आदतें समय के साथ दिल को नुकसान पहुंचा सकती है?
1: खराब नींद का भी एक आजकल ये जो है ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज के रिस्क फैक्टर्स में आ गया है। और खराब नींद कई तरह से होती है, नींद ना आना जिसे हम इंसोम्निया कहते हैं, नींद कम आना या बीच में टूट टूट कर नींद आना, कई बार अधिक नींद आना, इन सबसे एक सबसे इम्पोर्टेंट है जिसे हम बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया ये आमतौर पे उन लोगों को होता है जिनमें मोटापा होता है, इनका ब्लड प्रेशर ज्यादा बढ़ता है, ये खराटे ज्यादा लेते हैं, और इसको एक चीज होती है जो जिसे हम बोलते हैं डे टाइम सोमनोलेंस, मीन्स ये बैठे बैठे सो जाते हैं। तो ये जो है इनके इनका बीपी भी ज्यादा होता है, इनको हार्ट अटैक का भी खतरा होता है, सडन कार्डियक डेथ का भी खतरा होता है और हार्ट फेलियर का भी खतरा होता है। और हमारी जिसकी भी अगर 6 घंटे से कम नींद हो तो ब्लड प्रेशर का बढ़ने का चांस होते हैं, शुगर का चांस होता है, मोटापा होने का चांस होता है, और पैरालिसिस डिजीज, सारी चीजें जो है स्लीप डिस्टर्बेंस ये कंट्रीब्यूट कर सकते हैं।
0: डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात की और ये पब्लिक अवेयरनेस इनिशिएटिव फॉर हेल्दी इंडिया है, बहुत बहुत धन्यवाद सर।
1: थैंक यू
0: सो मच।

यू आर लिसनिंग 90.0 FM रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का ए कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज पर। अम्बाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी का आपके जीवन का प्रवाह। आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं एक टाइटल सॉन्ग पलायन यानी विस्थापन। ये गीत वो दर्द बयान करता है जो हर कश्मीरी पंडित का है, मेरा है, जिस कारण हम सबको अपने घर जमीन छोड़ के आना पड़ा था। आए तो कुछ दिनों के लिए, महीनों के लिए थे, पर अब ये विस्थापन यानी पलायन 35 वर्ष पूरे कर चुका है और 36वां वर्ष शुरू हो गया है। आगे कितने साल होंगे पता नहीं। इस टाइटल सॉन्ग को आपके लिए लाए हैं फिल्म इंडस्ट्री में 75 से ज्यादा फिल्मों में चाइल्ड एक्टर के तौर पर काम करने वाले आदरणीय गोपी सप्रू जी। इस टाइटल सॉन्ग पलायन को संगीत दिया है, लिखा है और निर्देशित किया है इसी महान कलाकार ने, जिनको हम गोपी सप्रू जी के नाम से जानते हैं। आइए सुनते हैं ये टाइटल सॉन्ग पलायन और महसूस करते हैं वो दर्द जो हर एक शब्द में कहा गया है, लिखा गया है और तैयार किया गया है।

0: years, they were our own neighbors in that mob who were harassing us, abusing us, and asking us to convert.
1: जो भागे थे कांपते हुए पैर माँ की गोद.
2: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
3: क्या बताओ, मैं चाहता हूँ मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुँचे.
2: अरे तो इसमें चिंता कैसी, आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें. FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है.
3: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ.
2: अभी कॉल करें 7056413010 7056413010 पर.
4: वितस्ता रेडियो, आपकी जिंदगी की रवानी.
5: आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगा हर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह. प्रस्तुत है एक रेडियो रिपोर्ट, विषय है पुस्तक विमोचन, डॉक्टर विनय कुमार मल्होत्रा द्वारा, किंग फिशर अंबाला कैंट में 20 सितंबर 2026 को शाम 5 बजे से. जिन पुस्तकों का विमोचन हुआ वो है कवि हृदय और बहुवर्णी. ये दोनों काव्य संग्रह डॉक्टर विनय कुमार मल्होत्रा द्वारा लिखे गए हैं. इस आयोजन में अंबाला के अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाले लोग उपस्थित रहे. मुख्य अतिथि के रूप में थे खेड़ा दंपति श्री प्रदीप खेड़ा और श्रीमती नीता खेड़ा. कार्यक्रम बहुत ही सफल रहा और समापन पर चाय नाश्ते का प्रबंध किया गया था. प्रस्तुत है विस्तृत रेडियो रिपोर्ट. मंच संचालन किया श्रीमती अंजलि सिफर ने, सहयोग किया डॉक्टर अनुपमा आर्य और डॉक्टर नीना मल्होत्रा ने.
6: वाकई तो अनगिनत है मेरी जिंदगी के, सोच रहा हूँ किताब लिखूं या हिसाब लिखूं. तो हम में से बहुत से लोग हिसाब लिखते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो किताब लिखते हैं. उन्हीं में से एक डॉक्टर विनय मल्होत्रा, राजनीतिक शास्त्र की ज्ञाता, कवि, बल्कि आशु कवि कहें तो बेहतर होगा, लेखक और अंबाला के जाने माने साहित्य एवं समाज सेवी द्वारा रचित पुस्तकें कवि हृदय एवं बहुवर्णी के विमोचन में मैं अंजलि सिफ आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ. सबसे पहले दीप प्रज्वलन के लिए मैं चाहूंगी कि हमारे आज के अतिथिगण सामने आए. असतो मा सदगम्या, तमसो मा ज्योतिर्गम्या, मृत्योर मा अमृतम गम्या. हे ईश्वर, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, असत्य से सत्य की ओर और मृत्यु से अमृतत्व की ओर. ऐसी ही कामना करते हुए हम दीप प्रज्वलन कर माँ सरस्वती का आवाहन करते हैं.

0: डॉक्टर विनय कुमार मल्होत्रा आयोजन के बारे में बताते हुए।
1: आज विमोचन है जी। उसकी बुक रिलीजिंग सेरेमनी है, पुस्तक विमोचन जी। ये पोइट्री के ऊपर है, मेरी कविताओं का संग्रह है और ये रिटायरमेंट के बाद मेरा छठा काव्य संग्रह है जो मैंने लिखा है। और इसमें कवि हृदय को डिफाइन किया है, कवि दृष्टि को डिफाइन किया है पोएटिक फॉर्म में। और इसमें कई प्रकार की कविताएं हैं, राजनीतिक नेताओं पर है जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर है, गीत है उनके ऊपर, अम्बाले के कई व्यक्तियों के ऊपर कविताएं हैं, स्वर्गीय यशपाल दास जी के ऊपर कविता गीत है, प्रोफेसर इकबाल सिंह चौहान जी के ऊपर इसमें एक कविता है, और कई सामाजिक आर्थिक प्रॉब्लम्स जो हैं उनसे रिलेटेड कई पोएम्स हैं।
2: मतलब कि आपने टोटली सारा ही निचोड़ जो है वो इस बुक में दे दिया। तो इसमें मल्होत्रा जी, प्रधानमंत्री जी के बारे में हमने जो कविता लिखी उसकी कुछ लाइनें बताएंगे।
1: बाहर मोदी के काम हुआ, कुछ तारीफ करें कुछ सराहे, बाहर मोदी के काम हुआ।
2: और सर ऐसा है कि इतना व्यस्त होने के बावजूद आपको इतना टाइम मिल जाता है?
1: ये टाइम निकालने पे सब कुछ निकल जाता है, बल्कि रिटायरमेंट के बाद टाइम ही टाइम।
2: जी जी।

और खास इसलिए है कि हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, हमारे हरदेव जी, डॉक्टर विनय मल्होत्रा जी, जिनकी साहित्यिक यात्रा के सुंदर पड़ाव के साक्षी बनने के लिए। ये मात्र उनकी 30वीं पुस्तक नहीं है कवि हृदय या बहुवर्णी, उसका लोकार्पण नहीं है, सिर्फ एक किताब का विमोचन भी नहीं है, बल्कि मैं अगर सच्चे दिल से कहूं तो ये उनके वर्षों की लंबी साधना, संवेदना और सृजन का उत्सव है। ये उत्सव है सोच का, शब्दों का, समाज के प्रति दायित्व का, उनकी साहित्य की खुशबू का। और हम सब ये मानते हैं कि कुछ रिश्ते सिर्फ शब्दों से नहीं, उपस्थिति से पहचाने जाते हैं। और आज आप सब यहाँ उनके एक बुलावे पे उपस्थित हो और एक इस शाम को एक यादगार शाम बनाने के लिए आप सभी का इस आत्मीय अवसर पर पधारने से हमारी खुशी और सम्मान दोनों बड़े हैं। स्वागत के ये अल्फाज चाहे मेरे हैं, पर इसके पीछे भाव, इसके पीछे सोच, इसके पीछे जो वानगी है वो डॉक्टर विनय मल्होत्रा जी और डॉक्टर नीना मल्होत्रा जी की है। कुछ मुलाकातें, जैसे मैंने कहा, महज मुलाकातें नहीं होती, दिल में उतर जाती हैं और एक खूबसूरत, ना भूलने वाली, एक यादगार शाम बन जाती है। तो आज क्योंकि मुझे आदेश हुआ है सभी का, अपनों का स्वागत करने के लिए, आज के इस शुभ अवसर पर मुख्य अतिथि खेड़ा दंपति अपनी मुस्कान, अपनी सौम्य छवि, अपनी आत्मीयता से अपनी पहचान बनाते नीता खेड़ा जी, प्रदीप खेड़ा जी, न जाने कौन सी दौलत है इनके शब्दों में, बात करते हैं दिल ही खरीद लेते हैं। हरियाणा सरकार में बहुत से विभागों पर अपना लोहा मनवाती, बड़ी, मैंने जैसे कहा, बड़ी सौम्य छवि मिसेस अनीता खेड़ा जी। बहुत स्वागत आपका डॉक्टर विनय मल्होत्रा जी की तरफ से। मैं स्वागतार्थी हूँ गेस्ट ऑफ ऑनर रोटेरियन नरेश भारद्वाज जी का, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रोटरी क्लब। बड़े आदर और सम्मान के साथ अपने बड़े भाई का स्वागत करती हूँ। और नरेश जी, जब फोन पे विनय जी ने मुझे बताया कि आपको पता है कि वो डिप्टी डायरेक्टर हैं, तो इनका जो कहने का अंदाज था वो ऐसे था, बड़ा गर्व वाला था कि मेरा भाई तो बहुत, अंबाला का हर व्यक्ति आपसे परिचित है और मैं सदियों से परिचित हूँ क्योंकि मैं आपकी छोटी बहन। और आपका बहुत स्वागत, दिल की गहराइयों से आपका यहाँ पहुंचने पर स्वागत, हमारा ये स्वागत अभिनंदन स्वीकारें। डॉक्टर विवेक मल्होत्रा जी, प्रेसिडेंट रोटरी क्लब ऑफ अंबाला, हमारे लिए बड़े गौरव और गर्व का विषय के विरसे में संस्कार और सादगी लिए डॉक्टर मल्होत्रा। मैं अक्सर इनको कहा करती हूँ, लगातार 3 पीढ़ियों से चिकित्सा के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और अब हम और सौभाग्यशाली हैं कि हमारा बेटा जो है वो भी इसी लाइन में आ गया और 4थी पीढ़ी भी इस सेवा के लिए समर्पित होने जा रही है। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत अभिनंदन। स्वागत है डॉक्टर आर आर सूरी, सचिव रोटरी क्लब ऑफ अंबाला। स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में सिर्फ अक्षर ज्ञान नहीं, वरन डीएवी संस्थाओं में मनोरभव की जो शिक्षा आप दे रहे हैं वो काबिले तारीफ है डॉक्टर साहब। और आपका जो असाधारण व्यक्तित्व है, आपका सादर अभिनंदन है, अभिवादन है। अभिवादन है सुभाष बंसल जी, रोटेरियन। लेकिन मैं अक्सर एक बात कहा करती हूँ, कई सितारों को मैं जानती हूँ बचपन से। डॉक्टर सुभाष जी रोटरी की पहचान है, दिल में स्नेह का स्पर्श लिए हैं, कलम और जंग, अनेक अनकहे अफसाने इनकी जबान पर हैं। सुभाष जी बहुत स्वागत है। और ये स्वागत डॉक्टर विनय मल्होत्रा जी चाहते थे कि एक एक का नाम लेकर स्वागत किया जाए, तो मैं उसी आदेश की पालना करते हुए बीच में अपनी बात इसलिए जोड़ रही हूँ कि आप सब मेरे दिल के बहुत करीब लोग जो यहाँ आमंत्रित हैं। अजय गुप्ता जी, बहुत स्वागत है आपका, अभिनंदन है मल्होत्रा दंपति की ओर से। आप रोटरी का एक ऐसा चेहरा जो बड़ा सजग, बड़ा हसमुख, हर दिल अजीज हैं आप। और जब कहीं मैं देखूं किसी भी गैदरिंग में, आपका परिचय किसी शब्दों का मोहताज नहीं है क्योंकि रोटरी की आपने लगातार बहुत सेवा की है। तो बहुत स्वागत आपका, बहुत

0: अभिनंदन। मिसेस मंजू दास जी, बहुत स्वागत है आपका, बहुत अभिनंदन है। एक ऐसी सौम्य छवि है, हमारे वेदों में कहा गया कि दो हाथ से कमाओ और 100 हाथ से दान करो, और ऐसा दान जो किसी को पता भी ना लगे। तो आपका परिवार जो है एक ऐसा नामी परिवार है अंबाला का, जैसे मैंने अभी कहा कि कोई कई परिवार ऐसे होते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं, कई शख्सियत ऐसी होती है जिनके बारे में अल्फाज कम होते हैं। तो मंजू जी बहुत स्वागत, दिल की गहराइयों से बहुत स्वागत है। डॉक्टर IS चौहान जी मुझे नजर आ रहे हैं मेरे, मैं डॉक्टर साहब अगर आप जानते हो आपके सब्जेक्ट की, और आपसे मैंने बहुत कुछ सीखा जब मेरी नौकरी की शुरुआत हुई थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। विनय जी ने कहा कि डॉक्टर IS चौहान जी आएंगे तो आपको ध्यान होगा, ड्यूटीज के दौरान आपने मुझे ड्यूटी करना सिखाया था। बहुत स्वागत है, और दिल की गहराइयों से विनय मल्होत्रा जी की तरफ से स्वागत है। मुझे जय कुमार जी नजर आ रहे हैं, जय कुमार जी बहुत स्वागत। जब अपनों का स्वागत अपने करते हैं तो बात कुछ और होती है, और जब आप फूल बांटने वाले के साथ खड़े हैं तो खुशबू उनके हाथ में तो है, पर आपके हाथ में भी वो सुगंधी आती है, क्योंकि आपने, मुझे ये लगता है कि विनय मल्होत्रा जी का कोई भी प्रोजेक्ट है, जय कुमार जी आपके बिना वो अधूरा रहता है। तो बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत। नेहा परवीन मुझे नजर आ रही है, समाज सेविका है, इंद्रेश ग्रुप से आप संबंध रखती हैं, और बहुत अच्छा काम आप कर रही हैं आपके ग्रुप में, मैं भी जुड़ी हुई हूँ। बहुत अच्छा लगता है कि अंबाला में इतने छोटे बच्चे, ये जनरेशन जो है, इस तरह की समाज सेवा की काम जो है वो करती है। भारत सपोरी जी, डायरेक्टर रेडियो विदस्ता 90.0 FM, और मैंने अभी इनको कहा कि बहुत अच्छा लगता है अंबाला का इकलौता रेडियो स्टेशन जिसमें कि विनय मल्होत्रा जी बहुत बार गए, मैंने इनकी इंटरव्यूज भी सुनी। बहुत स्वागत है, बहुत अभिनंदन है आपका। इसमें हरीश दत्ता जी भी है, राहुल डारूवराग जी भी है, रेखा गुप्ता जी भी आने वाली है, और जो जो लोग मैं, जो नाम मैं नहीं ले पाई वो शायद मेरी कमी रह गई होगी, लेकिन डॉक्टर साहब ने मुझे पूरी लिस्ट दी थी और बड़ा इंश्योर किया था कि ये नाम जरूर बोलने हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका जो भाव था वो सब तक पहुंच गया है। और अंजलि सिफर जो अभी मंच पर आएंगी, और अभी आई भी थी, और अक्सर मैं इनके बारे में कहती हूँ, कारीगर हूँ, शब्दों की मिट्टी से महफिल सजाती हूँ, और सिफर हूँ, सिफर किसी के साथ बढ़ मिलके उसका भाव बढ़ा देती हूँ, सिफर सिफर हूँ। तो अंजलि जी, अभी हम आपको सुनेंगे, और बहुत अच्छा ये कार्यक्रम आगे चलेगा। मैं बहुत स्वागत करती हूँ, बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ अभय कुमार अरोड़ा जी जो हमारे दामाद हैं, बेटी सोनाली मल्होत्रा, वामिका, क्योंकि ये माहौल जो डॉक्टर साहब को मिला है ये आपकी वजह से मिला है। मैं अक्सर कहती हूँ जिंदगी के जिस पड़ाव पर हम खड़े हैं उसमें अक्सर फिसलकर उम्र के फर्श पर उम्र ढल जाती है, कई बार बिना जिए भी जिंदगी गुजर जाती है, कई बार बिना जिए भी जिंदगी गुजर जाती है। बनमाली जी बहुत स्वागत है, मैं, मेरी आंखें आपको ही देख रही थी, रचना बनमाली और ओम बनमाली जी बहुत स्वागत है मैडम आपका। BD सीनियर सेकेंडरी स्कूल की प्रिंसिपल हैं आप, और बहुत अच्छा काम कर रही हैं, इनर व्हील के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपके स्कूल में होते हैं। आपका डॉक्टर विनय मल्होत्रा जी की तरफ से बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन है। OP बनवाली जी की मैं बात कर रही थी, OP बनवाली जी जो आप मेरे लिए शब्दों का प्रयोग करते हैं वही आदर और सम्मान के साथ आपको वापस लौटा रही हूँ, शब्दों के साधक हैं आप, और अनेक पुस्तकों पर इनके हस्ताक्षर हैं। इनकी लेखनी केवल शब्दों को पिरोती नहीं है बल्कि संवेदना और चिंतन को एक साथ बुनती है, और आप साहित्यिक यात्रा में डॉक्टर विनय मल्होत्रा जी का अभिनंदन स्वीकार करें, क्योंकि आप उनके साहित्यिक यात्रा के बहुत लंबे साथी हैं। बहुत आपका साधुवाद यहाँ आने के लिए डॉक्टर साहब। मैं आपके लिए यही हमारी सबकी तरफ से एक दुआ करूंगी कि आपकी किताबों में जो अभी अंजलि जी पढ़ रही थी, एक सोच की खुशबू है जो आप किताबें, जो 30वीं किताब, मैंने अभी कहा कि लोकार्पण नहीं, ये तो एक उत्सव है, हर पन्ने पर जिंदगी के रंग हैं, शब्दों में बसती आपकी गहरी समझ है, मानो हर पंक्ति एक नया सबक दे रही है, क्योंकि वरना जिस उम्र के ढलान पर हम बैठे हैं, ऐसे लगता है कई बार बिना जिंदगी जिए जिंदगी गुजर जाती है, पर आपके साथ रहकर जिंदगी का हर क्षण बहुत रंगीन हो जाता है। बहुत बहुत अभिनंदन सबका, बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: बहुत शुक्रिया अनुपमा मैम।
2: श्री ओपी बनवाली जी ने पुस्तक कवि हृदय की समीक्षा की।
1: विनय सर की जो आज पहली पुस्तक कवि हृदय, उसकी समीक्षा हेतु मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी ओम प्रकाश बनवाली जी को, जो अपने आप में एक ऐसी शख्सियत हैं जिनके लफ्ज अपने आप कविता का रूप ले लेते हैं, कविता का पैकर ले लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत ओम प्रकाश बनवाली।
3: धन्यवाद। मंच पर विराजमान आज के अतिथि खेड़ा युगल रोटेरियन भारद्वाज जी, प्रोफेसर वीरसेन विनय मल्होत्रा ट्रस्ट के प्रधान सर्वे सर्वा, रोटेरियन डॉक्टर विनय मल्होत्रा जी, रोटेरियन नीना मल्होत्रा जी, मंच संचालिका अंजलि और मेरे समक्ष उपस्थित सभी कला प्रेमी सुधीजन, आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। पुस्तक और उसका रचना का मैं समझता हूं उसमें वो संबंध है जो मां और संतान में होता है। रचनाकार उस शाब्दिक भावनात्मक परस्व वेदना से गुजरता है जब वो रचना कर रहा होता है। विनय मल्होत्रा जी की ये पुस्तक, मुझे कहा गया कि मैं इसकी समीक्षा करूं, तो समीक्षा अपने आप में विशद विषय है, लेकिन इसके जो कुछ पक्ष मेरे सामने आए हैं वो मैं आपसे साझा करना चाहूंगा। कोई भी पुस्तक जब मंजरे आम होती है तो उसको कई कसौटियों पर कसा जाता है, लेकिन ये वो कवि है जो समाज में रहता है, जिसका दिल धड़कता है, और इस किताब के मुख पृष्ठ पर भी कवि के हृदय में दिल के धड़कन जो है वो स्पष्ट रूप से दर्शाई गई है कि वो धड़क रही है या नहीं धड़क रही है। वो किताब के पन्ने पलटेंगे तो हर शब्द में वो धड़कन आपको सुनाई देगी। लोक हिताय इसलिए भी कि वो अलमारी में बंद नहीं रही, किसी किताब में बंद नहीं रही, किसी पन्नों में बंद नहीं रही, वो आपसे साझा की जाती रही, चाहे वो रोटरी का कोई मंच हो, चाहे रेडियो वितस्ता का उद्घाटन हो, या अपने मित्र के साथ। एक इसमें कविता है, तीन मित्रों के बारे में एक कविता है, बिल्कुल 5-7 पंक्तियां हैं, उसको मैं त्रिवेणी कहूंगा। तो लोक हिताय है, मंजरे आम है, लोकार्पण हो रहा है, क्यों जनता से जुड़े हैं, लोक मंगल की कामना की जा रही है, और लोक मंगल में निज हित तो है ही, आत्म आनंद तो है ही, उत्प्राप्ति हो ही रही है, लेकिन जन मानस में समाज में बेहतरी के लिए, लोक मंगल के लिए, सबके कल्याणार्थ जो रास्ता दिखाने का उद्देश्य है छप रही है, तो निश्चित रूप से समाज से जुड़ने के कारण ही छप रही है, पाठक के साथ जुड़ने के कारण ही छप रही है, तो लोक हित का जो कसौटी है उसपे खरी उतरती। दूसरी बात, छप रही है तो किन लोगों के बारे में बात की जा रही है, पात्र कौन है इसके, क्या ये वर्तमान समाज का या अतीत के समाज का या आने वाले समाज का दर्पण है कि नहीं। समाज में जो कुछ घटित हो रहा है साहित्य समाज का दर्पण कहा जाता है, इसके ऊपर वो खड़ी उतरती है कि नहीं। आप इसका कोई भी पन्ना पलटेंगे, कोई भी कविता देखेंगे, तो उसमें जो वर्णन मिलेगा, जो पात्र मिलेगा, वो आज के समाज की हकीकत है, यथार्थ है, वास्तविकता है। उसमें बहु रंग है, कड़वाहट भी है, मिठास भी है, प्रेम भी है, हमारी विषमताएं भी, हमारी कमजोरियां भी हैं, तो समाज का चित्रण करती साहित्य माध्यम है समाज का, वो दर्पण है, क्या उस दर्पण पर वो खरी उतरती है, क्या उन लोगों के बारे में बात है जो हमारे सामने ही नहीं है। तो इसमें एक कविता थीम पे है, कवि हृदय, तीन भाषाएं हैं, देवनागरी में पंजाबी भी है, पंजाबी में भी बहुत खूबसूरत इन्होंने कविताएं लिखी हैं, क्योंकि जिस क्षेत्र में हम हैं वहां हिंदी पंजाबी में विभाजन रेखा बहुत कम है, बहुत थोड़ी है, कोई भी कुछ भी समझ लेता है। तो सहजता सरलता भी एक शर्त है जो इन्होंने खरी उतरी है। कहीं इन्होंने विकास की तारीफ भी की है तो कहीं बाढ़ों के कारण शहर के सत्यानाश होने के लिए भी वो संकोच नहीं किए हैं, पक्षपाती नहीं है, आलोचना भी की है, स्वच्छ आलोचना की है ताकि सरकार की आंख खुले। उसी सरकार को इन्होंने सत्कारा भी है, जम के सत्कारा है। तो दोनों स्थितियां हैं, क्योंकि एक पक्ष होता तो मुझे दिक्कत होती, लेकिन मैं धड़ल्ले से कह सकता हूं कि जिन नेताओं का ये वंदन करते हैं उनकी आलोचना भी करने में संकोच नहीं करते हैं, इस बात के हम गवाह हैं, हमने देखा है। मेरी दृष्टि में उस हिसाब से किताब बहुत सफल है।
2: श्री सुभाष बंसल जी ने पुस्तक बहुवर्णी की समीक्षा की।
1: तो आज इनकी एक नहीं बल्कि दो पुस्तकों का विमोचन है, तो इनकी दूसरी पुस्तक का परिचय देने के लिए मैं आवाज देना चाहूंगी सुभाष बंसल जी को, जो कि लेखकों और कवियों के अल्फाज को उनका घर देते हैं, अल्फाज का घर यानी पुस्तक। तो वे स्वयं लेखक हैं, संपादक हैं, प्रकाशक हैं, जो कि अल्फाज को घर देने का काम करते हैं। बहुत बहुत स्वागत सुभाष बंसल सर।
4: लेखक, कवि, गायक, समाज सेवी, प्राचार्य एवं शिक्षाविद डॉक्टर विनय कुमार मल्होत्रा, PhD, MA गोल्ड मेडलिस्ट का अध्यापन प्रेम जग विदित है। अनुशासन प्रिय, मिलनसार, कुशल वार्ताकार, उत्साही स्वभाव आदि गुण इनके ऐसा बनने में सहायक हुए हैं। हम भी चाहेंगे ये गुण हमने आए। पढ़ना लिखना और समाज सेवा इनके नित्य कर्म का महत्वपूर्ण अंग है, आज भी बदस्तूर जारी है वो। अध्ययन, अध्यापन तथा शोध के सिलसिले में इन्होंने 12 यूरोपीय तथा उत्तरी अमेरिकी देशों का भ्रमण किया। ये अनेक राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के मानद सदस्य हैं, रोटरी क्लब ऑफ अंबाला के पूर्व प्रधान तथा BBM ट्रस्ट के प्रधान हैं। बहुवर्णी नाम की इस पुस्तक को साहित्य कलश पब्लिकेशन पटियाला ने अत्यंत सुरुचिपूर्ण ढंग से प्रकाशित किया है। 100 पृष्ठों के काव्य संग्रह का मूल्य मात्र 250 रुपए रखा गया है। अनुक्रम प्रस्तावना के अतिरिक्त शेष पाठ्य सामग्री को 9 भागों में विभाजित किया गया है। 61 कविताएं हैं। ये गेय कविताएं सरल हिंदी व पंजाबी भाषा में लिखी गई है। इन कविताओं के विषय आम जीवन से लिए गए हैं। पहला भाग व्यक्तित्व नाम से है। इसमें समाज सेवी श्रीमती प्रोमिल चावला, राजनीतिज्ञ एवं मंत्री श्री अनिल विज, प्रोफेसर वी सेन, श्री YP दास, श्री जसवीर जस्सी, श्री सुभाष बंसल, श्री उदय ठाकुर, सुश्री नेहा प्रवीण, माता श्रीमती स्वर्ण तथा दोहती कुमारी गुरमेयर तथा प्रोफेसर इकबाल सिंह चौहान शामिल हैं। इन सभी कविताओं में व्यक्ति विशेष के गुणों, उनकी चारित्रिक विशेषताओं, उनके दैनिक व्यवहार को उजागर करती भाव भंगिमाओं, उनके वैयक्तिक, पारिवारिक व सामाजिक सरोकार आदि को इंगित करते संकेत अत्यंत कुशलता व करीने से पिरोए गए हैं। एक उदाहरण हरियाणा सरकार में मंत्री श्री अनिल विज का देखिए। कोई भी विकास कार्य इसने ना छोड़ा, अपराधी माफिया ने हरियाणा छोड़ा। चौकीदार बन सदर बाजार में बैठता, आम लोगों के साथ चाय पीता, शनि दरबार में शिकायतें सुनता, तभी तो अनिल विज हर दिल में बसता। सबको पता है जो इन्होंने अपनी कविता के माध्यम से व्यक्त किया। विनय जी लेखक के साथ साथ संगीतकार और गायक भी है। ये तुकांत हर प्रकार की लाइनों को खूबसूरती से लय में गा लेते हैं। यदि सांस लय हो तो मेज, हथेली और उंगलियों से उसकी कमी पूरी कर लेते हैं, पर अपनी बात प्रभावी ढंग से कहे बगैर नहीं छोड़ते। पुस्तक का भाग 3 जो देश राजनीति पर है, उसमें एक ओजस्वी कविता प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के कार्यों और उपलब्धियों पर भी है। भाग 5 में रोटरी एवं रोटेरियंस के अंतर्गत रोटेरियन नरेश ढींगरा और रोटेरियन दिनेश सेठी पर भी अति सुंदर कविता है। इसी प्रकार अपने पिता स्वर्गीय प्रोफेसर वीर सेन जी को याद करते हुए कहते हैं, गाना आपको याद आ जाएगा, कभी हम आपसे पढ़ते थे, कभी हम आपसे पढ़ते थे एसडी कॉलेज की क्लासों में। याद आया गाना, कभी हम आपसे पढ़ते थे एसडी कॉलेज की क्लासों में, भरे होते थे हंसी मजाक आपके लेक्चरों में, पढ़ाते थे जो इकोनॉमिक्स वो छात्र याद करते। आगे गाना याद बेदर्दी बालवा। इसी तरह एक कविता शिकंजवी और शराब में मुकाबले पर है। वो कविता तो बहुत आप लंबी है और पढ़कर के देखे, कहां तक गिनाऊं, एक से एक कविताएं हैं। एक शेर याद आ रहा है, खुश्क बातों में कहां है, खुश्क बातों में कहां है शेख कैफ़े जिंदगी, खुश्क बातों में कहां है शेख कैफ़े जिंदगी, वो तो पीकर ही मिलेगा जो मजा पीने में है, वो तो पीकर ही मिलेगा जो मजा पीने में है। अगर किताब का वास्तव में आनंद लेना है तो किताब खरीद कर आराम से पढ़े।
2: डॉक्टर विनय कुमार मल्होत्रा ने अपने अलग अंदाज और तरन्नुम में प्रस्तुत की कुछ कविताएं जो इन दोनों पुस्तकों में लिखी गई हैं। हम गौरवान्वित हैं कि रेडियो वितस्ता को भी जगह मिली पुस्तक कवि हृदय में। प्रस्तुत है आयोजन के कुछ लम्हे और श्रीमती नीता खेड़ा का संबोधन।
5: आज के मुख्य अतिथि मिसेस नीता खेड़ा, स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ हरियाणा, एंड मिस्टर प्रदीप खेड़ा, जिला संचालक आरएसएस और अंबाला के प्रतिष्ठित मेडिसिन्स के व्यापारी, विशिष्ट अतिथि रोटेरियन नरेश भारद्वाज, अंजलि सिफर जी, मैडम नीना मल्होत्रा तथा सभी अतिथिगण। मैं ना तो कोई कवि हूं, ना मेरा कोई महान कवि बनने का इरादा है, और ना ही मैंने कभी कविता लिखने की कोई फॉर्मल ट्रेनिंग कहीं से ली है। जो मन में आया बस लिखता चला गया और ये इस तरह ही लिखी चली, लिखते चले गए, गीत और कविताएं बनती चली गई और वो छपती चली गई। तो अधिकांश वही है जो यहाँ आज बैठे हुए हैं, तो उन पर जो है मैं आपको कुछ एक, सबसे पहले तो हमारे प्राइम मिनिस्टर का जन्मदिन था 17 सितंबर को, और वो जन्मदिन अब हमने एक महीना मनाना है, किसके रूप में, एक संकल्प और सुशासन, सेवा संकल्प और सुशासन मास के रूप में हमने मनाना है। तो पहली कविता जो है मैं उन्हीं पर आपको, गीत है वो उन्हीं पर सुनाता हूं। वाह रे मोदी के काम वाह, कुछ तारीफ करें कुछ सराहें, वाह रे मोदी के काम वाह, कुछ तारीफ करें कुछ सराहें, वाह रे मोदी के अनोखे काम वाह। सारी पोयम नहीं सुनाऊंगा, सिर्फ एक सांझाई। मेक इन इंडिया इन का नारा, आत्मनिर्भर भारत बना सारा, मेक इन इंडिया इनका नारा, आत्मनिर्भर भारत बना सारा, कुछ हम भी तो साथ दें, हम काम अपने करते

काम हुआ क्या? मैंने पूरी गीत नहीं सुनाया, सिर्फ एक स्टांजा सुनाया। हमारे शहर के बहुत बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति थे रोटेरियन, वाईपी दास जी, यश दास जी, मेट्रो मोटर्स वाले। अभी सुभाष बंसल जी का जन्मदिन था, उस पर भी मैंने उनकी एक कविता सुनाई थी उनके जन्मदिन पर। तो ये भी एक कविता मैंने उनके ऊपर लिखी थी 2021 में, जब उनका उपन्यास का विमोचन हुआ था। उनके उपन्यास का नाम था जीना या मरना है, यही था ना टाइटल, उसी पे मैंने कविता लिखी। बड़ी शॉर्ट सी कविता, एक मिनट सुने। जीना यहां, मरना यहां, सुख यहां, दुख यहां, खुशी यहां, गमी यहां, मौज यहां, रोग यहां, रोग यहां, इलाज यहां, किताबें यहां, पढ़ना यहां, पढ़ना यहां, सीखना यहां, सीखना यहां, अनुभव यहां, मुस्कुराना यहां, आंसू यहां, हंसना यहां, रोना यहां, बहार यहां, कैंसर यहां, कैंसर यहां, तिमारदार यहां, कैंसर यहां, रोटरी अस्पताल यहां, और हमने जाना कहां, जीना यहां, मरना यहां। एक कविता मैंने लिखी, मैं जैसे बता रहा था, हमारे प्रतिष्ठित नागरिक थे शहर के श्री यशपाल दास जी, मेट्रो मोटर जो रेलवे रोड पर है उनके स्वामी थे। ये कविता उन पर है इस पुस्तक में, बहुवर्णी गीत है ये, मैं उसका सिर्फ एक स्टांजा ही सुनाऊंगा। ये मैंने उनको ट्रिब्यूट दिया था जब उनकी डेथ के बाद, तब लिखी थी। नैनों से आंसू नहीं रुकते, हो गए सब हैरान, हो नैनों से आंसू नहीं रुकते, हो गए सब

पे आज हमारे में एक बैठी है नेहा परवीनी, छोटी सी लड़की, एक मिनट खड़े होंगे आप देखिए। लेकिन जो जो इसके काम बहुत बड़े हैं, बड़े सोशल सर्विस रोटरी क्लब के काम, एक तरफ इस अकेली का काम है, एक तरफ इतना इसने सोशल सर्विस की है, तो इस पर भी मैंने कविता लिखी है इस पुस्तक में, उसका भी एक स्टांजा ही सुनाऊंगा। इसके कद पे ना जाना, इसकी उम्र पे ना जाना, इसके धन पे ना जाना, इसकी सादगी पे ना जाना, जाना तो जाना इसके कौशल पर जाना, जाना तो जाना इसके कामों पर जाना, जाना तो जाना इसकी भावनाओं पर जाना, जाना तो जाना इसकी सेवाओं पर जाना। अब हमारे प्रोफेसर इकबाल सिंह चौहान बैठे हैं, इनके साथ अपने जीएमएन कॉलेज में 29 साल मैंने काम किया, इनकी गाइडेंस में, इनके इनकी इनकी ब्लेसिंग्स के साथ, और वीके पुरी जी होते थे हमारे कलीग, वो भी इनके बहुत मित्र थे, तो इनके ऊपर भी एक पूरी कविता है पूरे पेज की, मैं उसका सिर्फ दो स्टांजा सुनाऊंगा। हाय रे इंसान की मजबूरियां, पास रहकर भी है कितनी दूरियां, रहते हम पास पास है लेकिन मिलना बड़ी देर बाद होता है। हाय रे इंसान की मजबूरियां, पास रहकर भी है दूरियां, दूरियां नहीं मिटा पाई है यारियां, जहां चाह वहां राह ने खत्म कर दी खवारियां। बनारसी दास स्कूल अंबाला का सबसे पुराना स्कूल है, बड़े बड़े आईएएस अधिकारी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और ये हाई कोर्ट के जजेस, पुलिस के कमिश्नर, पुलिस के सॉरी सेनापति, वो सभी इसी स्कूल से निकले के गए हैं। तो इस स्कूल पर भी एक कविता मैंने लिखी थी, वो आप सुने। है ये अंबाले का सबसे पुराना और हेरिटेज स्कूल है। ना रहे वो राय बहादुर, ना रहे वो बनारसी दास, ना रही वो बातें, ना रहे वो हेडमास्टर। इनके कई हेडमास्टर बड़े पॉपुलर थे, अशवाजी आप उनका नाम लो एक दो दिन, हाँ सबसे ज्यादा तो वो उनका स्टूडेंट नाम लेते हैं, हाँ विशिष्ट जी भी थे, ठीक राइट, हुकमचंद जी का बड़ा नाम लोग स्टूडेंट लेते हैं। ना रहे वो राय बहादुर, ना रहे वो बनारसी दास, ना रही वो बातें, ना रहे वो हेडमास्टर, ना रहे वो मास्टर, ना रहे वो टीचर, बस रह गई है यादें, रह गई ये इमारत जो बन गई है मुसीबत। बस वाजपेयी जी के ऊपर, और एक रेडियो वितस्ता पर है कविता, वो सुने, वो उसके डायरेक्टर बैठे हैं, उसपे मैंने दो तीन कविता लिखी है हिंदी में भी इंग्लिश में भी, रेडियो वितस्ता पर, मैं उसका भी एक स्टांजा सुनाऊंगा। बढ़िया बढ़िया रेडियो वितस्ता, बढ़िया

0: रे काहे तुम भी नहीं सुनते रोज रोज रे। बढ़िया बढ़िया रेडियो वितस्ता, बढ़िया बढ़िया रेडियो वितस्ता। मुझे सुबह सुबह भजनों के संग जगाता, मुझे सुबह सुबह भजनों के संग जगाता। कोई भी इसका प्रोग्राम मैं नहीं छोड़ता। कानों में लगाकर माइक्रोफोन रखता, टीवी को भुला देता, मैं सुनूं इसको रोज रोज रे। काहे तुम भी नहीं सुनते रोज रोज रे। बढ़िया बढ़िया रेडियो भी दस्ता। तो ये रेडियो भी दस्ता पर था।
1: थैंक यू सो मच।
2: स्वागत है उनका जो दिल के पास होते हैं। और नीता जी आइए और अपने कुछ शब्द हमारे आज के प्रोग्राम के लिए कीजिए। आज के इस कार्यक्रम के आयोजक कहूं, आर्किटेक्ट कहूं, या इस कार्यक्रम की जो आज की भावना है, जो आज का ये आयोजन है, उसके मूल तत्व कहूं, आदरणीय विनय मल्होत्रा जी और उनके सब काम में उनकी सहयोगी, उनकी अर्धांगिनी डॉक्टर नीना मल्होत्रा जी आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, आदरणीय प्रदीप खेड़ा जी जिनकी अर्धांगिनी होने का सौभाग्य मुझे मिला हुआ है, नरेश भारद्वाज जी जो आज के इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि थे, किसी कारणवश उन्हें जाना पड़ा, बहुत से सारे रोटेरियन भाई जो यहां उपस्थित हैं। आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत को सबसे पहले चार चांद लगाया अपने शब्दों से, मेरी वो सखी जब मैं कुछ नहीं थी, जब वो प्रधानाचार्य बनी, अध्यापिका थी, उसके बाद वो अब रिटायर्ड है, लेकिन हमारा वो सफर जब मैं एक बीजेपी के मेंबर के जैसे इस कॉलेज में जाती थी और आज तक, तब भी वो मेरी सखी थी, आज भी है और भविष्य में भी रहेगी, ऐसी डॉक्टर अनुपमा आर्य जी। इस पुस्तक जो इन्होंने दो पुस्तकों का आज हम विमोचन कर रहे हैं उस पे विस्तार से चर्चा करते हुए आदरणीय बनमाली जी जिनकी रचनाओं से हम कई बार हम रूबरू हुए विभिन्न विभिन्न कार्यक्रमों में, सौभाग्य की बात है कि उनकी धर्म पत्नी का नाम भी रचना है इनको बहुत बार, आज इन्होंने बहुत विस्तार से पुस्तक के बारे में हम सबको बताया, बहुत अच्छी तरह से उसको वर्णित किया। दूसरी पुस्तक का जो समीक्षा की है वो सुभाष बंसल जी ने, वो भी उन्होंने बड़े विस्तार से बहुत अच्छे से की। मेरा इतना सा कहना, छोटी सी बात आपके बीच में रखूंगी क्योंकि मुझे सिर्फ आशीर्वाद वचन के लिए यहाँ बुलाया गया है, जो मुझे कहा गया था आज किसी भी पुस्तक को हम सिर्फ कागज के पन्ने ना समझें, किसी भी पुस्तक को एक साधारण सी कागज के पन्ने ना समझें। विद्या विनय देती है, हमारे साहित्यकार भी आज विनय के नाम से सुशोभित हैं। विद्या हमें विनय देती है, विनय से पात्रता आती है। तो ये जो शब्दों का समूह ये लोग पिरो के पुस्तक के रूप में हमारे सामने रखते हैं समाज के लिए, वो एक सिर्फ पुस्तक नहीं, सिर्फ कागज का संग्रह नहीं, कुछ शब्दों का संग्रह नहीं, ये कवियों का या किसी भी जो साहित्यकार का, वो उनकी कल्पना, उनके ज्ञान, उनकी दूरदर्शिता, उनके अनुभव, उन सब का एक प्रयोग करके वो शब्दों में पिरो के हम सबके ज्ञान वर्धन के लिए समाज को देते हैं। साहित्य का दीप सदैव प्रज्वलित रहे, आपकी कृतियां ज्ञान प्रेरणा एवं संवेदना के माध्यम से आप हम सब के लिए नई नई पुस्तकें, नई नई अपने एक्सपीरियंस इस समाज को देते रहे, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद नीता जी, इतने खूबसूरत शब्द आपने हमारे लिए बोले और इतनी सुंदर शुभकामनाएं आपने दी। मीठी बातें और चेहरे पे मुस्कान, ऐसे लोग ही तो है हमारे प्रोग्राम की शान। तो आप थोड़ा थोड़ा मुझे लगता है कि कवियों के बीच में बैठ के मेरी भी भाषा जो है वो कवि की तरफ, कविता की तरफ जानी शुरू हो गई है।
1: अंत में मुख्य अतिथि श्री प्रदीप खेड़ा का संबोधन।
3: आज के इस पुस्तक विमोचन के सुअवसर पर मंचा सिंह जो आज के सूत्रधार भी हैं, डॉक्टर विनय मल्होत्रा जी, उनके साथ उनके जीवन में उनके दुख सुख के साथी डॉक्टर नीना मल्होत्रा जी, हमारे जो आज के विशिष्ट अध्यक्ष रहे डॉक्टर नरेश भारद्वाज जी, और मेरे जीवन में मेरे दुख सुख के साथी श्रीमती नीता खेड़ा जी, और आज के इस सभागार में उपस्थित जो समाज का एक एलीट वर्ग है जो अपने आप में कई समूहों को रिप्रेजेंट करता है, दो तीन चार मिनट में अपनी बात को समाप्त करूंगा। आज का जो यह अवसर है केवल दो पुस्तकों के विमोचन का अवसर नहीं है, बल्कि शब्दों के उत्सव और भावनाओं के सम्मान का अवसर है। आज दो पुस्तकें सुंदर कृतियां जो कि डॉक्टर विनय मल्होत्रा जी ने हमारे बीच में रखी, बहुवर्णी एवं कवि हृदय। बहुवर्णी अपने नाम में ही अनेक रंगों को समेटे हुए है, जीवन भी तो बहुवर्णी है, कहीं सुख का उजाला है, कहीं संघर्ष की तपिश है, तो कहीं रिश्तों की मिठास भी है, तो कहीं अनुभवों की कसक भी है। साहित्य इन सभी रंगों को शब्द देता है। मुझे विश्वास है कि जो यह बहुवर्णी पुस्तक है पाठकों के जीवन को इन्हीं अनेक रंगों से परिचित भी कराएगी। दूसरी जो सुंदर कृति है वो कवि हृदय है। कवि हृदय होना अपने आप में एक विशेष संवेदना है। कवि वह नहीं जो केवल सुंदर शब्द दे, कवि वह है जो दूसरों की पीड़ा को अपना समझे, दूसरों की खुशी में अपनी खुशी को महसूस करे, उस समाज के अनकहे शब्दों को वो शब्द दे सके। ये कहा भी गया है कि जब शब्द हृदय से निकलते हैं तो वो हृदय तक जाते हैं, ऐसा हमने महसूस भी किया है। और आज भी हमने, हमारे से पहले चाहे मन संचालिका हो, चाहे जिन्होंने परिचय दिया, डॉक्टर अनुपमा आर्या ने, डॉक्टर विनय मल्होत्रा ने, सुभाष जी ने, सभी ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया वो दिल को छू गए। लेकिन आज मैं एक बात, क्योंकि एजुकेशन से जुड़े हुए यहाँ पर लोग बैठे हैं, तो एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि ये कवि महान क्यों होते हैं। ये इसलिए कि जब लॉर्ड मैकाले 1834 में भारत में आए तो उन्होंने शिक्षा के माध्यम से, हम सभी जानते हैं कि जिस तरह से हमारी संस्कृति को नष्ट करने की योजना बनाई, उस संस्कृति को अगर बचाने का कोई काम किया तो आप जैसे जो साहित्यकार हैं जिन्होंने कि इसको जीवित रखा, ना केवल सजोकर रखा बल्कि उसको आज के इस युग में दोबारा से प्रचलित किया, ये मुझे लगता है कि हमारे लिए भी गर्व की बात है कि अंबाला में ऐसे ऐसे लोग उपस्थित हैं। मैं ज्यादा ना कहते हुए केवल इतना कामना करूंगा कि जो बहुवर्णी और विविध रंगों से पाठकों के जीवन को समृद्ध करे, और कवि हृदय जो है वो अपने संवेदनशील मनुष्यता के भाव को और गहरा करे। अंत में बस इतना ही कहूंगा, जहां शब्दों में संवेदना होती है वहां साहित्य जन्म लेता है, और जहां साहित्य जीवित रहता है वहां समाज की आत्मा जीवित रहती है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं डॉक्टर विनय मल्होत्रा जी को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए कामना करूंगा कि ये जो दोनों पुस्तकें हैं, जैसे इनकी पहले पुस्तकों ने समाज में अपना रंग जमाया, अपनी एक स्थान स्थापित किया, ये दोनों पुस्तकें भी ऐसे ही स्थापित करेंगी, और आने वाले समय में 30 पुस्तकों के बाद भी ना जाने कितनी पुस्तकें हमने डॉक्टर साहब के जो है हाथों से जो लिखी हुई हैं, जो उन्होंने शब्दों को पिरोकर हमारे समक्ष रखा है, उनको पढ़ने का मौका मिलेगा। एक बार दोबारा से डॉक्टर विनय मल्होत्रा, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: रेडियो वितस्ता के फाउंडर डायरेक्टर भारत सुपोरी ने भी वितस्ता का अर्थ बताया।
4: इससे पहले कि हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव की ओर बढ़े, भारत सुपोरी जी से मैं
2: विनती करती हूँ कि वो आकर दो शब्द कहें।
3: थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर मल्होत्रा जी और मेरे सभी दोस्त भी और मेरे जो बड़े हैं जिनसे मुझे आशीर्वाद हमेशा चाहिए। सबसे पहले तो मैं आप सभी का आभारी हूँ और डॉक्टर मल्होत्रा जी का कि वो रेडियो विदस्ता को कहीं ना कहीं अपने मन के साथ रखते हैं। मैंने कई बार देखा है कि घर में रेडियो उनका जो है ऑन होता है और हमें सजेशन भी देते हैं, सहयोग भी देते हैं, खास करके वह थिएटर ग्रुप एंड कल्चरल सोसाइटी जो थिएटर ग्रुप है अंबाला का, पिछले एक दशक से ज्यादा का वही संस्था रेडियो विदस्ता भी चलाती है। मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि जैसे यहाँ पर हिंदी भाषा की बात हो रही है, मैं कश्मीर में जन्मा हूं और उर्दू मैंने स्कूल में पढ़ी है, हिंदी मैंने घर में पढ़ी है। कई बार मेरा उच्चारण भी हिंदी में गलत होता है, बट आज भी हम 100% जो प्रसारण है वो हिंदी में करते हैं और हिंदी में ही बोलने की कोशिश करते हैं। और आप विश्वास करिए कि जो हिंदी पढ़े लिखे हैं शायद कई बार मैं उनकी जो गलती है वो सुधारता हूं, और खास करके उर्दू मैंने पढ़ी है तो जो उच्चारण सही होना चाहिए, जैसे इजाजत होना चाहिए, तो मेरे थिएटर में मेरे रेडियो पर कोशिश यही होती है। आप सभी का प्यार हमें चाहिए जैसे डॉक्टर मल्होत्रा जी देते हैं, हमेशा सहयोग देते हैं। फाइनेंशियल एस्पेक्ट से अगर देखेंगे थिएटर के लिए कोई ज्यादा सहयोग नहीं देते हैं, तो डॉक्टर मल्होत्रा जी हमें हमेशा आगे ले आते हैं। पिछले 36 वर्षों के विस्थापन में मैं यहाँ अंबाला में रह रहा हूँ। अंबाला मेरी कर्म भूमि है, जन्म भूमि कश्मीर की है, दोनों जगह से जुड़ा हूँ। हमारे रेडियो का विदस्ता जो नाम है बस वो बता दूंगा क्या है, कश्मीर में वेरी नाग एक जगह है जहां पर एक चश्मा है, बहुत बड़ा है, वो रिवर जहलिम का स्रोत है। उस स्रोत को हम कश्मीरी में व्यर्थ बोलते हैं। तो हमारा थिएटर ग्रुप व्यर्थ थिएटर एंड कल्चरल सोसाइटी अंबाला रजिस्टर्ड है और व्यर्थ को ही संस्कृत में वितस्ता बोलते हैं। तो मैं चाहता हूं कि जो प्रवाह वितस्ता का सदियों से रहा है वही प्रवाह हमें अंबाला के लोगों का, अंबाला के जीवन का, अंबाला को विश्व पटल पर रखने का जो वितस्ता ने प्रण लिया है उसको हम जारी रखेंगे। आप सभी का सहयोग चाहिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और रेडियो विदस्ता की ओर से आपको शुभकामनाएं। ऐसे ही आप रेडियो विदस्ता पर भी जरूर लिखें, और एक मेरा सुझाव भी है मैडम नीना जी के लिए भी, आप जरूर कविता लिखें, हमें भाव पता चलेंगे कि जिंदगी का जो सफर है वो कैसा रहा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।
2: तो चलिए अब हम आप पहुंचे हैं अपने कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव की ओर। सफर खत्म हो जाता है मगर निशानियां बाकी रहती हैं, ये वो खामोश पन्ने हैं जिनमें सदियों की कहानियां बाकी रहती हैं।
1: ये था इस आयोजन पर एक रेडियो रिपोर्ट। रेडियो वितस्ता हमेशा आप सभी अंबाला वासियों को अवगत कराता रहेगा। दीजिए आज्ञा, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।

0: जी आप सुन रहे हैं एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विद अस्ता हम सफर जिंदगी का। आप सभी श्रोताओं को एक जानकारी हम देना चाहते हैं, आज हमारे इस एरिया में सुबह 10 बजे से लाइट नहीं है और बैकअप पर ये सारी जो ब्रॉडकास्ट है वो चल रही है और कुछ समय से आप फ्रीक्वेंसी यानी रेडियो पर इस प्रसारण को नहीं सुन पा रहे हैं। जैसे ही लाइट आती है और ऐप पर बदस्तूर हमारा जो प्रसारण है वो जारी है और उम्मीद करते हैं कि आप हमारे प्रसारण को सुन रहे होंगे। मुश्किल के लिए हम आपसे क्षमा चाहेंगे और जब ब्रॉडकास्ट बाधित होता है तो हमें भी परेशानी होती है, पर कुछ बदलाव हमारे गली में बिजली की तारें बदली जा रही है जिस वजह से पूरे दिन का काम है, तो उम्मीद करते हैं कि 6:30 बजे तक लाइट आएगी और हम प्रसारण को एज इट इज जारी रखेंगे। सुबह से प्रसारण जारी है ऐप पर और फ्रीक्वेंसी पर भी शुरुआत उसकी होगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए, धन्यवाद। सुनते रहिए एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी का।
1: तो कुछ दिनों के लिए महीनों के लिए थे, पर अब ये विस्थापन यानी पलायन 35 वर्ष पूरे कर चुका है और 36वां वर्ष शुरू हो गया है। आगे कितने साल होंगे पता नहीं। इस टाइटल सॉन्ग को आपके लिए लाए हैं फिल्म इंडस्ट्री में 75 से ज्यादा फिल्म

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ ढाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला कैंट से हमारे प्रसारण सुनते रहिए।

0: सुनते रहो अपने पसंदीदा गीत।
1: नाइन्टी पॉइंट जीरो मेगा हर्ट्स पर आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, सुनते रहिए दिल से।

प्रस्तुत है कार्यक्रम सरगम एपिसोड 11। कार्यक्रम को एडिट रिकॉर्ड किया भारत सोपुरी ने। स्क्रिप्ट निर्देशन और प्रस्तुत करेंगे आरजे किरणी।

आप सभी को मेरी तरफ से यानी किरणी की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। सुरों के इस सिलसिले सरगम में आपका स्वागत है। आज हम यादों की उन गलियों में घूमने निकले हैं जहां हर गाने एक कहानी सुनाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये हसीन सफर। शुरुआत करते हैं उस पुकार से जो दिल की गहराइयों से निकली है, फिल्म गुमराह का ये नगमा जिसे साहिर लुधियानवी ने लिखा, रवि जी ने संगीत दिया और महेंद्र कपूर ने अपनी आवाज दी। गाने के बोल है, आजा आजा रे तुझको मेरा प्यार पुकारी।

मोहब्बत की राहों में सहारा ढूंढती एक आवाज, सुनिए फिल्म हमसफर से मजरू सुल्तानपुरी के लफ्ज, असलम शफी का संगीत और आशा भोसले जी की आवाज में दिल के सहारे कैसे प्यार करें।

वक्त बीतता है पर यादें वही रुक जाती है। साहिर साहब ने लिखा, जावेद ने धुंधी और लता मंगेशकर ने गाया। गाने के बोल है, जाने वाले आजा तेरी याद सताई।

अब पेश है फिल्म साजन का वो धुआंधार गीत जिसे समीर ने पिरोया, नदीम श्रावण ने संगीत दिया और एसपी बालासुब्रमण्यम ने गाया। और गाने के बोल है, बहुत प्यार करते हैं तुझको सनम।

0: लीजिए पेश है फिल्म कश्मीर की कली का ये झूमता नगमा, जिसे SH बिहारी ने लिखा, OP नायर की धुन और मोहम्मद रफी का मस्ताना अंदाज। गाने के बोल है, तारीफ करूं क्या उसकी।
1: ये चांद सा रोशन चेहरा

अगले गाने के बोल है बीगा बीगा प्यार का समा। ये फिल्म सावन से है। इस गीत को हसरत जयपुरी ने लिखा, श्याम जी घनश्याम जी ने संगीत दिया और मोहम्मद रफी ने गाया।

प्रकृति और प्रेम का एक अनोखा संगम सुनिए फिल्म आदमी और इंसान से। साहिर का कलाम, रवि का म्यूजिक और आवाज दी है लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर ने, और गाने के बोल है नीले पर्वतों की धारा।

आप सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता। जारी है कार्यक्रम सरगम। अब जिक्र उनका जिन्हें दुनिया पंचम कहती है। फिल्म यादों की बारात से आरडी बर्मन का म्यूजिक, मजरू के बोल और आशा रफी की जुगलबंदी। गाने के बोल है चुरा लिया है तुमने।

जिंदगी का फलसफा और फिल्म आनंद, योगेश जी के अल्फाज, सलील चौधरी की धुन और मुकेश जी की वो दर्द भरी आवाज। गाने के बोल है कहीं दूर जब दिन ढल जाए।

इश्क में दीवानगी लाजमी है। फिल्म कटी पतंग के लिए आनंद बख्शी ने लिखा, आरडी बर्मन ने संगीत दिया और किशोर कुमार ने गाया। गाने के बोल है, प्यार दीवाना होता है।

नजाकत और पुरानी दिल्ली की गलियां, फिल्म पाकीज़ा, संगीत नौशाद साहब का, बोल मजरू सुल्तानपुरी के, और आवाज दी है लता जी ने, गाने के बोल है इन्हीं लोगों ने।

कार्यक्रम का अगला गाना है आशिकी का ये सुपरहिट गाना, समीर के बोल, नजीम श्रवण का म्यूजिक और कुमार सानू की आवाज। गाने के बोल है बस एक सनम चाहिए।

0: प्रोग्राम की आखिरी कड़ी में सुनिए एक ऐसा नज़्म जो दिल को छू जाए। फिल्म कभी कभी का गाना, साहिर के लफ्ज, खयाम की धुन और मुकेश की आवाज। गाने के बोल है कभी कभी मेरे दिल में। सुरों का ये कारवां आज यही थमता है। उम्मीद है आपकी रेडियो दोस्त कितनी की ये कोशिश आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे किसी और कार्यक्रम में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, संगीत सुनते रहिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।
1: कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नर्म छांव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। ये रंजो गम की स्याही जो दिल पे छाई है तेरी नजर की शुआओं में खो भी सकती थी, मगर ये हो ना सका। मगर ये हो ना सका और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं। गुजर रही है कुछ इस तरह जिंदगी जैसे इसे किसी के सहारे की आरजू भी नहीं। न कोई राह, न मंजिल, न रोशनी का सुराग, भटक रही है अंधेरों में जिंदगी मेरी। इन्हीं अंधेरों में रह जाऊंगा कभी खोकर। मैं जानता हूं मेरी हम नफस, मगर यूं ही कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम सरगम एपिसोड 11, जिसमें आपने पुराने हिंदी फिल्मों के गीत सुने। कार्यक्रम को रिकॉर्ड और एडिट किया भारत सोपोरी ने। स्क्रिप्ट, निर्देशन एवं प्रस्तुतकर्ता आरजे किरणी। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता की प्रस्तुति।

0: कर भरत सोपोरी, मेरा दिल की गहराइयों से सभी अम्बाला वासियों को और श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार।
1: मेरा भी प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त अनु। इस सफर में आपके साथ रहूंगी।
0: अम्बाला सिर्फ एक कैंट टाउन नहीं, सिर्फ एक जंक्शन नहीं, बल्कि एक ऐसी धरती है जिसने आजादी की पहली चिंगारी देखी, जिसने सैकड़ों साल पुराने तालाबों से शहर की प्यास बुझाई और जिसकी गलियों की खुशबू आज भी पूरे उत्तर भारत को बुलाती है। तो चलिए शुरू करते हैं अम्बाला की कहानी अम्बाला के शब्दों में। बात करते हैं नाम और नींव, अम्बाला कहां से आया। सबसे पहले बात उस सवाल की जो हर अम्बाला वासी से कभी न कभी पूछा गया हो, अम्बाला नाम आया कहां से। इतिहासकार बताते हैं कि इस शहर को 14वीं सदी में अम्बा राजपूत नाम के एक सरदार ने बसाया था और माना जाता है कि शहर का नाम उन्हीं के नाम पर पड़ा। एक दूसरी मान्यता ये भी है कि ये नाम देवी भवानी अम्बा के नाम से जुड़ा है, जिनका एक प्राचीन मंदिर आज भी इस शहर में मौजूद है। और एक तीसरी दिलचस्प कहानी ये भी कही जाती है कि इस इलाके में कभी आमों के बाग हुआ करते थे।
1: अब ये पूरे यकीन से नहीं कहा जा सकता कि इनमें से कौन सी कहानी 100% सही है। इतिहास में अक्सर कई किंवदंतियां साथ साथ चलती हैं, लेकिन इतना जरूर तय है कि ये धरती बहुत पुरानी है। यहाँ हुई खुदाइयों और मिले पाषाण उपकरणों से इतिहासकार यह मानते हैं कि ये क्षेत्र हड़प्पा सभ्यता के दौर में ही बसा हुआ था और महाभारत काल से भी इसका नाता जोड़ा जाता है। तो दोस्तों, अम्बाला की मिट्टी में सदियों की परतें दबी हैं और अब बात करते हैं उस अध्याय की जिस पर हर अम्बालावासी को गर्व।

0: 1857, वो सुबह जो मेरठ से पहले अंबाला में उगी। दोस्तों, स्कूल की किताबों में हमने पढ़ा है कि 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम अंबाला से शुरू हुआ। इसके शोध में जाने माने इतिहासकार डॉक्टर के सी यादव जैसे शोधकर्ता शामिल है। ये दावा करते हैं कि इस विद्रोह की असली शुरुआत अंबाला छावनी से हुई थी, मेरठ से भी कुछ घंटे पहले। तारीख थी 10 मई 1857, दिन रविवार। कहा जाता है कि सुबह करीब 9 बजे अंबाला में तैनात 60वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों ने खुलेआम बगावत का बिगुल बजा दिया और उसके कुछ घंटों बाद दोपहर में 5वीं नेटिव इन्फेंट्री भी उनके साथ आ खड़ी हुई। ये मेरठ की घटना से करीब 9 घंटे पहले की बात मानी जाती है। हालांकि अंग्रेज फौज सतर्क थी, इसलिए इस विद्रोह को उसी वक्त कुचल दिया गया। बाद में अप्रैल 1858 से मई 1858 के बीच अंबाला में 26 से ज्यादा सिपाहियों और सैनिकों को फांसी दी गई।
1: ये बताना जरूरी है कि 1857 का विद्रोह सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ, ये विषय इतिहासकारों के बीच आज भी चर्चा और शोध का विषय है। और हरियाणा सरकार व कई स्थानीय इतिहासकार अंबाला के इस दावे को मजबूती से आगे रखते हैं। इसी को यादगार बनाने के लिए अंबाला छावनी में जीटी रोड के पास रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर शहीद स्मारक बनाया जा रहा है। 22 एकड़ में फैला यह स्मारक, जिसमें 1.63 मीटर ऊंचा कमल के आकार का टावर है और इसके संग्रहालय में 22 गैलरियों के जरिए 1857 की पूरी कहानी अंबाला में विद्रोह की शुरुआत से लेकर हरियाणा भर में इसके फैलाव और देश भर के शहीदों तक दिखाई जाए।
0: तो दोस्तों, जब भी आप उस शहीद स्मारक के पास से गुजरे, याद रखिएगा, यह सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं बल्कि उन गुमनाम सिपाहियों की कुर्बानी की गवाही है, जिन्हें इतिहास ने अब तक वो जगह नहीं दी जो मिलनी चाहिए थी।
2: 57 की चिंगारी से आज की उड़ान अंबाला तो लिखता रहे।
0: अब बात करते हैं अंबाला छावनी जंक्शन की, पटरियों पर बसा इतिहास। अब बात करते हैं अंबाला की उस पहचान की, जिससे होकर हर दिन हजारों यात्री गुजरते हैं, अंबाला छावनी रेलवे जंक्शन। इस स्टेशन का इतिहास 1891 से जुड़ा है, जब ये अस्तित्व में आया, और तभी से ये उत्तर भारत के सबसे व्यस्त और सबसे पुराने जंक्शनों में गिना जाता रहा है। आज ये हरियाणा का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है और दिल्ली कालका लाइन, मुरादाबाद अंबाला लाइन, अंबाला अटारी लाइन जैसे कई महत्वपूर्ण रेल लाइनों का संगम बिंदु है। 7 प्लेटफॉर्म और 10 पटरियों वाला ये जंक्शन देश के व्यस्ततम स्टेशनों में शुमार किया जाता है।
1: यहाँ एक बात साफ कर देना जरूरी समझती हूँ, अंबाला के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि यह भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है, लेकिन तथ्यों की बात करें तो भारत का सबसे पहला रेलवे स्टेशन 1853 में मुंबई के बोरी बंदर से शुरू हुआ था। अंबाला छावनी जंक्शन जरूर उत्तर भारत के सबसे पुराने और सबसे महत्वपूर्ण स्टेशनों में से एक है और 19वीं सदी के अंत से ही ये इस क्षेत्र का प्रमुख यातायात केंद्र रहा है। लेकिन जब हम इतिहास बता रहे हों तो सही तथ्य बताना ही हमारा फर्ज है, इसलिए हम कहेंगे अंबाला जंक्शन भारत के सबसे पुराने और सबसे व्यस्त रेलवे केंद्रों में से एक है, ना कि सबसे पुराना।

0: अब हम बात करते हैं मंदिर, तालाब और मील के पत्थर की विरासत, जो आज भी जीवित है। अम्बाला की विरासत सिर्फ किताबों में ही नहीं, बल्कि आज भी शहर की गलियों में सांस लेती है। चलिए इनमें से कुछ जगहों की आप सभी को सैर कराते हैं। सबसे पहले रानी का तालाब। अम्बाला छावनी में स्थित यह लगभग 400 साल पुराना तालाब कहा जाता है, जिसको महाराजा रंजीत सिंह के दौर में बनवाया गया था। कहा जाता है कि उस दौर में दो तालाब खुदवाए गए थे, राजा का तालाब और रानी का तालाब। समय के साथ साथ राजा का तालाब अब पटेल पार्क में बदल चुका है, लेकिन रानी का तालाब आज भी अपने मूल रूप में मौजूद है, जिसके पास शिव मंदिर और देवी मंदिर है और जिसकी देखभाल आज भारतीय सेना करती है। पास ही ठाकुर द्वारा मंदिर भी है, जो सिख गुरु गुरबख्श सिंह की स्मृति में बनवाया गया बताया जाता है। और भगवान वामन का एक मंदिर भी है, जहां दशहरे पर सालाना मेला लगता है। इसके अलावा शहर में भवानी अम्बा माता का मंदिर और अंबिका देवी मंदिर जैसे प्राचीन मंदिर भी है, जो शहर की धार्मिक विरासत की कहानी कहते हैं।
1: अब बात कोस मीनार की। ये मुगल कालीन मील के पत्थर जैसी मीनारे जीटी रोड के किनारे किनारे यात्रियों को दूरी बताने के लिए बनवाई गई थी, और ये परंपरा शेर शाह सूरी के दौर से जुड़ी मानी जाती है। अम्बाला में मौजूद यह कोस मीनार आज भी प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम के तहत एक संरक्षित स्मारक है। हालांकि वक्त की मार और आसपास के बाजार के दबाव के चलते इसे बेहतर देखभाल की सख्त जरूरत है।

0: जी हाँ श्रोताओं, आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। आज हम आपके लिए ला रहे हैं अम्बाला के इतिहास के कुछ पन्ने। आइए आप बात करते हैं अम्बाला की थाली की, यानी स्वाद जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। दोस्तों अब बात दिल की, यानी अम्बाला के खाने की, क्योंकि किसी भी शहर का इतिहास उसकी थाली में भी बसता है। अम्बाला हरियाणा और पंजाब की सरहद पर बसा है, इसलिए यहाँ के खाने में दोनों परंपराओं का खूबसूरत मेल मिलता है। देसी घी, मक्खन और दूध से बनी चीजों की भरमार, यहाँ की मशहूर बाजरे की रोटी और आलू की सब्जी, स्वादिष्ट मिक्स दाल जिसमें अरहर, मूंग, मसूर और चने की दाल का मेल होता है, और बेसन मसाला रोटी जैसे व्यंजन आज भी घर घर में बनते हैं। और अम्बाला छावनी के खाने की बात हो और पूरन सिंह का ढाबा का जिक्र ना हो, ये तो मुमकिन ही नहीं। कहा जाता है कि सरदार पूरन सिंह विभाजन के बाद पाकिस्तान से आकर अम्बाला में बस गए और रेलवे स्टेशन के पास एक छोटे से टेंट में अपना ढाबा शुरू किया, जहां पर नॉन वेजिटेरियन डिश इतनी मशहूर हुई कि यहाँ तक कहा जाता है कि आशा भोसले जैसी हस्तियां भी यहाँ खाना खाने आई। आज उनके नाम पर अम्बाला में कई सारे ढाबे चल रहे हैं। ये उनकी लोकप्रियता का ही सबूत है, भले ही असली पूरन सिंह के ढाबे को लेकर आज भी लोगों में बहस होती रहती है।
1: जीटी रोड किनारे बसे यह ढाबे सदियों पुरानी उस परंपरा का हिस्सा है, जब यह रास्ता व्यापारियों और यात्रियों का मुख्य मार्ग हुआ करता था। और आज भी अम्बाला की गलियां गर्मा गर्म जलेबी और गुलाब जामुन की खुशबू से गुलजार

0: श्रोताओं, आज के इस अंतिम बाइट में हम बात करेंगे साइंस सिटी की। कम लोग जानते हैं ये तथ्य, और अब वो तथ्य जो शायद अंबाला के बाहर बहुत कम लोग जानते हैं। अंबाला को साइंस सिटी ऑफ इंडिया यानी भारत का विज्ञान शहर भी कहा जाता है। जी हाँ, ये सुनने में बड़े ही अजीब लगे, लेकिन अंबाला छावनी में सन 1914 से वैज्ञानिक और सर्जिकल उपकरण बनाने का काम चल रहा है। आज यहाँ 2000 से ज्यादा छोटी बड़ी इकाइयां, माइक्रोस्कोप, ग्लासवेयर, प्रयोगशाला उपकरण और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाती है, जो न सिर्फ भारत के स्कूल, कॉलेजों और अस्पतालों में बल्कि DRDO जैसे संस्थान और दुनिया भर के देशों में भी भेजे जाते हैं। ये उद्योग हर साल लगभग 3,000 करोड़ रुपए का कारोबार करता है और 20,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिलता है। और हाँ, ये जरूर कहना चाहूंगा कि हमें और सभी अंबाला वासियों को इस बात पे गर्व है कि जो गत वर्ष में भारत देश का चंद्रयान मिशन कामयाब हुआ, उसमें भी अंबाला की साइंस सिटी की ओर से कुछ पुर्जे बना के भेजे गए थे।
1: तो दोस्तों, अंबाला सिर्फ छावनी और जंक्शन नहीं, ये विज्ञान और उद्योग का भी एक खामोश लेकिन ताकतवर केंद्र है।
0: तो दोस्तों, ये थी अंबाला के इतिहास की एक झलक। 1857 के विद्रोह की गूंज से लेकर रानी के तालाब की लहरों तक, कोस मीनार के खंडहरों से लेकर पूरन सिंह के ढाबे की खुशबू तक और साइंस सिटी की पहचान तक, ये शहर सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि सदियों की एक जीती जागती कहानी है। आप हमें अपने सुझाव, अपनी यादें और अंबाला से जुड़े किसे भी भेज सकते हैं, जो हम आगे आने वाले एपिसोड्स में आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि ये इतिहास सिर्फ किताबों का नहीं, आप सबका भी है। और ये जानकारी हमने जो हासिल की, अगर इसमें कोई त्रुटि है उसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। आइए कुछ पंक्तियों से इस इतिहास की जानकारी का हम समापन करते हैं। पंक्तियां यूं है, महाभारत की माटी का जहां गूंजता है गौरव, महाभारत की माटी का जहां गूंजता है गौरव, अंबा देवी के आंचल में महका इतिहास मनोहर, प्रथम क्रांति की ज्वाला बनकर जो भारत पर छाया, उस अंबाला की धरती ने स्वाभिमान सिखाया, उधर दूर कश्मीर घाटी से बहती निर्मल धारा, वितस्ता का रूप मनोहर, पावन बहता खारा, एक तरफ वीरत्व की माटी दूजी और भागीरथ प्रीत, अंबाला और वितस्ता गाए भारत के गीत, इतिहास का शौर्य यहाँ है वहां लहर का संगीत, युगों युगों से चली आ रही संस्कृति की ये रीत, युगों युगों से चली आ रही संस्कृति की ये रीत। मैं भारत सोपुरी आपसे लेता हूं विदा, लेकिन याद रखिएगा, रेडियो वितस्ता FM 90.0 MHz पर हमेशा है आपका हम सफर जिंदगी का। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
1: और मुझे भी दीजिए इजाजत, आशा है आगे भी आप सभी श्रोताओं को अवगत कराते रहेंगे अंबाला के इतिहास के साथ। खुश रहिए और अपने क्षेत्र के बारे में जानते रहिए।

सफर है फिल्मी गीतों का, तय करेंगे आप अपने रेडियो दोस्त रमेश मराठा के साथ। नमस्कार, आदाब। शहर होते ही कोई हो गया रुखसत गले मिलकर, फसाने रात की कहती रही टूटी हुई चूड़ी।

जगता है अक्सर दिल के इस नाजुक कोने में, जहां कभी प्यार पलता था सिर्फ तुम्हारे लिए। जहां से तुम्हारा गुजर हुआ, वहां के रास्तों को तुमने महकाया, वहां की वीरानी को गुलजार किया, और वहां के फासलों को तुम्ही ने मिटाया। तुम्ही ने दर्द दिया और तुम्ही ने दबा। अब यहां हमारे तन्हाइयां पलती हैं, थाम लेती हैं रुस्वाइयां दामन, और तुम्हारी याद में ये आंखें अश्कबार रहती हैं। जगता है दर्द अक्सर इस दिल के कोने में।

फिर बरसता, भीग जाती ये खामोश चिनार, शायद बोल भी पड़ते, मुस्कुराते भी, और अपनी चुप्पी तोड़ लेते। मैं इनसे लिपटता, अब की बार इनके सायों में उम्र गुजारता, शायद गुजरे वो पल याद आते जो कभी भुलाए नहीं जाते। क्यों न बिस्तर की सिलवटों को ख्वाबों का पोशाक पहनाए, शायद फिर ये बादल टुकड़े टुकड़े हो जाए।

क्यों लगता है बरसों से शनासाई है, ये मखमली मौसम बेताब है तुम्हारे पैरों की चुभन के लिए। बदलते रुत सरगोशियां करती हवाएं, तुम्हारे दुपट्टे की खुशबू अब एहसास है मेरा। क्या तुम्हें याद है तपती दोपहरी के दामन में, यहां की फिजाओं को इन पानियों में हम बहाया करते थे, इन सूफियाना धुनों में आवाज से आवाज मिलाना, यही हमारी

ये मौसम है तुम्हारी यादों का, सावन का ही महीना था जब तुम लौट आए थे नंगे पांव, भीग चुके थे तुम्हारे कब कपाते होंठ, चेहरे की रौनक और सादगी से भरा कदे आदम जिस्म, धड़कनें उदासी में लिपटी हुई थी, शायद शायद अपना दर्द बयां कर रही थी।

मेरी पनाहगाहों में जो तुम ठहरती ता उम्र, शायद तुम्हारी यादों का मौसम खिल उठता मौसमी बहार की तरह।

जिक्र तेरा ही होता है। इन पानियों में लहरें उठती तो हैं पर अक्स बिखरती नहीं। ये साहिल रहते हैं बेताब इन पानियों को छूने के लिए। यहां शाम होते होते मुरझा गए अब ये भीगे मौसम और छिप गए चुप हो गए बुलबुल। इन काली खामोश घटाओं ने घेरा है सितारों को चांद को मेरी परछाई को और तुम्हारी मुस्कान को।

जय श्रोताओ, आप सुन रहे थे FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता की प्रसारण, और आज के हमारे प्रसारण अब यहीं पर संपन्न होते हैं। हम आपकी सेवा में सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक निरंतर रहते हैं। आप सभी श्रोताओं से हम क्षमा चाहते हैं क्योंकि आज कुछ समय के लिए हमारा जो ब्रॉडकास्ट है वो फ्रिक्वेंसी पर बाधित रहा, क्योंकि आज हमारे एरिया में बिजली की तारें बदलने के लिए सुबह 10 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक लाइट नहीं थी। हमारे प्रसारण आपने हमारे ब्राउजर ऐप पर निरंतर सुने, और 7 बजे के आसपास हमने फ्रीक्वेंसी पर भी प्रसारण शुरू किया। आप सभी से हम इसके लिए क्षमा चाहेंगे क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे हाथ से बाहर है। आज के लिए बस इतना ही। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुहाना सफर, पेश कर रहे थे रमेश मराठा। इस समय स्टूडियो की घड़ी में समय है 9:01 और 2 सेकेंड। श्रोताओं, आज की इस मुलाकात को अब यहीं समेटने का समय आ गया है। उम्मीद है कि ये प्रसारण आपके दिल के करीब रहा होगा और आपके दिन को और खुशनुमा बनाया होगा। दोस्तों, आज का दिन एक खास वजह से भी महत्वपूर्ण रहा। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम मन की बात प्रसारित हुआ। बीते कई वर्षों से यह कार्यक्रम देशवासियों के दिलों से जुड़ने का एक अनोखा और आत्मीय माध्यम बना हुआ है, जिसमें हर महीने प्रधानमंत्री जी आम जनता की उपलब्धियों, प्रेरक कहानियों और सामाजिक सरोकार के विषयों को पूरे देश के सामने लाते हैं। यह कार्यक्रम न केवल जानकारी देता है बल्कि करोड़ों देशवासियों में एकता, आत्मविश्वास और सकारात्मकता की एक नई ऊर्जा भर देता है। आइए आज बात करते हैं आज के विषय पर। आप इसी भावनाओं के साथ दोस्तों आज हम बात करते हैं बेहद प्रेरणादायक विषय पर, जो है जन भागीदारी से ही राष्ट्र निर्माण संभव है। किसी भी देश की असली प्रगति सिर्फ सरकार की नीतियों से नहीं बल्कि हर नागरिक की सक्रिय भागीदारी से होता है। जब आम जनता स्वच्छता, शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक कल्याण जैसे कार्यों में अपना योगदान देती है तो बदलाव और भी तेजी से आता है। छोटे छोटे प्रयास जब लाखों लोग मिलकर करते हैं तो वे एक बड़ी सामूहिक शक्ति बन जाते हैं। मन की बात जैसे कार्यक्रम में हमें यह याद दिलाते हैं कि देश के विकास में हर नागरिक की भूमिका महत्वपूर्ण है, चाहे वो एक छात्र हो, किसान हो, महिला हो, बुजुर्ग हो। जब हर व्यक्ति अपने स्तर पर जिम्मेदारी उठाता है तो पूरे समाज मिलकर, पूरा राज्य मिलकर और पूरा देश एक सशक्त

सशक्त और समृद्ध राष्ट्र का निर्माण करता है। दोस्तों, आइए हम सब ये संकल्प लें कि अपने आसपास सकारात्मक बदलाव लाने में अपना योगदान जरूर दें, क्योंकि जन भागीदारी ही सच्चे राष्ट्र निर्माण की नींव है। दोस्तों, यह था आज का विषय और आशा करता हूं कि ये विषय आपके मन के नजदीक आया होगा और कुछ प्रेरणा भी दे गया होगा। अपना फीडबैक जरूर हमें भेजिएगा हमारे नंबर पर, जो हम आपको इन पंक्तियों के बाद नोट कराएंगे। आज के लिए जो पंक्तियां आपके लिए लाए हूं, आपके नाम है, आपकी नजर है, और पंक्तियां आज की यू है, हर हाथ अगर जुट जाए एक अच्छे काम के लिए, हर हाथ अगर जुट जाए एक अच्छे काम के लिए, तो बदल जाती है तस्वीर पूरे इंतजाम के लिए, तो बदल जाती है तस्वीर पूरे इंतजाम के लिए। वितस्ता भी तो कई धाराओं से मिलकर बनती है, वितस्ता भी तो कई धाराओं से मिलकर बनती है, यही सिखाती है एकजुटता ही राह है आगे बढ़ने के लिए। वितस्ता भी तो कई धाराओं से मिलकर बनती है, यही सिखाती है एकजुटता ही राह है आगे बढ़ने के लिए। जी हाँ दोस्तों, और जाते जाते आपको कल के कार्यक्रमों का विवरण देता हूं। कल 28 सितंबर 2026 सोमवार को जो कार्यक्रम आपके लिए लाए हैं वो इस प्रकार है। सभा की शुरुआत होगी 5:58 पर वंदे मातरम से और लाएंगे आपके लिए एक सुविचार, और पहली आवाज में आप सभी श्रोताओं का स्वागत और अभिनंदन करेंगे पंचांग के साथ। 6 आप सुनेंगे भक्ति संगीत और 7:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। हमारे साथ होंगी डॉक्टर आराधना जिंदल, कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे भारत सोपोरी। 8:30 सकारात्मक कहानियों का एपिसोड 3 होगा, शीर्षक होगा वृद्ध आश्रम, पेश करेंगे नरेश शर्मा। 9:30 सुनहरे पल एपिसोड 5 मुकेश पर तैयार किया गया ये कार्यक्रम, इसको पेश करेंगे आरजी किरनी। और 10:10 पर काव्य गोष्ठी एपिसोड 5, प्रवीण वर्मा खिप्पल हमारे साथ होंगे और पंजाबी में ये प्रसारित होगा कार्यक्रम, पेश करेंगे आरजे सैजल। संगीत की सभा जारी रहेगी 6:30 भक्ति संगीत, 6 भक्ति संगीत, 6:30 शाम गजल और 7 फौजी भाइयों के लिए कार्यक्रम एपिसोड 2 पेश करेंगे नरेश शर्मा, और 8:30 हर दिन की तरह कार्यक्रम सुहाना सफर पेश करेंगे रमेश मराठा, और कल की कड़ी है लम्हे रुक गए। ये था विवरण कल के कार्यक्रमों का। आशा करता हूं कि आपको कल के कार्यक्रम पसंद आएंगे। अपना फीडबैक हमें जरूर भेजेंगे हमारे स्टूडियो के नंबर पर, जो है 7056413010। नंबर एक बार फिर 7056413010। ये सारी जानकारी टीम रेडियो वितस्ता के कैजुअल अनाउंसर अनु ने तैयार की थी। तो श्रोताओं, यही समेटते हैं आज का ये प्रसारण। भरोसा है कि ये वक्त आपके साथ अच्छा बीता होगा और आपके दिन को थोड़ा और मीठा बनाया होगा। मैं अपना रेडियो दोस्त आपका भारत सोपोरी आपसे लेता हूं विदा। FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता के साथ बने रहिए और सुनते रहिए हर दिन सुबह 6 से रात के 9 तक। कल सुबह तक के लिए शुभरात्रि, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।